0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूं कि ईश्वर पर विश्वास रखो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: ओशो, जिनका मूल नाम चंद्रमोहन जैन था, एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक और रहस्यवादी थे। उन्होंने ध्यान, प्रेम, स्वतंत्रता और सक्रिय ध्यान, जिसे कहा जाता है एक्टिव मेडिटेशन, उस पर जोर दिया। वे पारंपरिक धर्मों और रूढ़ियों के आलोचक थे और लोगों को आत्म जागरूकता, वर्तमान में जीने और निर्भीक जीवन जीने के लिए प्रेरित करते थे। ओशो के बारे में कुछ खास बातें। उनका प्रारंभिक जीवन। जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुछ वाड़ा गांव में हुआ था। नाम उन्हें आचार्य रजनीश, भगवान श्री रजनीश और अंततः ओशो के नाम से जाना गया। शिक्षा और पेशा। उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया और जबलपुर विश्वविद्यालय में लेक्चरर रहे। दर्शन। ओशो ने जीवन को उत्सव की तरह जीने, पुरानी परंपराओं को छोड़ने और स्व अन्वेषण पर ध्यान केंद्रित किया। वे ओशो निसर्गा और ओशो मेडिटेशन रिसोर्ट जैसे ध्यान केंद्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। ध्यान विधियां। उन्होंने आधुनिक मनुष्यों के लिए डायनेमिक ध्यान यानी डायनेमिक मेडिटेशन जैसी सक्रिय ध्यान विधियां विकसित की, जो तनाव से मुक्ति में मदद करती हैं। साहित्य। उनके प्रवचनों को हजारों किताबों में संकलित किया गया है, जो हिंदी में भी व्यापक रूप से उपलब्ध हैं, जैसे ध्यान प्रथम और अंतिम मुक्ति और किताबें जो बदल सकती हैं जीवन। यह है ओशो के बारे में, भगवान रजनीश के बारे में संक्षिप्त परिचय। आइए अब सुनते हैं भगवान रजनीश को, अर्थात ओशो को। Why do complications arise in human life? अर्थात मानव जीवन में उलझने क्यों आती हैं? इसी संदर्भ में आइए सुनते हैं आप क्या कहते हैं।
1: मेरे सारे विरोधी वक्तव्यों के बावजूद ही अगर तुम मेरे साथ हो तो ही मेरे साथ हो। इसलिए मैं तुमसे ये भी कह दूं कि मेरे इतने विरोधी वक्तव्यों के पीछे बहुत बहुत कारण हैं। उनमें एक ये भी है कि जो इनके बावजूद मेरे पास होंगे उनको ही मैं चाहूंगा कि मेरे पास हो। जो इनके कारण हट जाएंगे उनकी बड़ी कृपा, उनके पास होने का कोई मूल्य न था। भीड़ बढ़ाने से तो कोई प्रयोजन नहीं, वे समय ही खोते, अपना भी मेरा भी, वे जगह ही भरते। अच्छा हुआ हट गए। दो तरह के लोग हैं। सभी जीवन की घटनाएं दो हिस्सों में बटी होती हैं। मेरे करीब हजारों आने वाले लोगों में जब पुरुष मेरे पास आते तो कहते हैं आपके विचार हमें अच्छे लगते, इसलिए आपसे नाता बनाते। स्त्रियां जब मेरे पास आती वो कहती आप हमें अच्छे लगते, इसलिए आपके विचार भी अच्छे लगते। और ऐसा स्त्री पुरुष का विभाजन बहुत साफ सुथरा नहीं है। बहुत से पुरुष हैं जो स्त्रियों जैसे हृदयवान हैं, बहुत सी स्त्रियां हैं जो पुरुषों जैसी बुद्धिमान हैं। बुद्धि कहती है विचार अच्छे लगते, इससे आपसे लगाव है। हृदय कहता है आपसे लगाव है, इसलिए विचार भी अच्छे लगते। अब थोड़ा सोचो, जो विचार के कारण मुझसे लगाव बनाया है, कल अगर विचार ठीक ना लगे, और ऐसे में हजारों मौके लाता हूं जब विचार ठीक नहीं लगते। मेरे पास बहुत से गांधीवादी लोग थे, फिर मैंने उनसे छुटकारा चाहा। गांधी से कुछ लेना देना ना था, लेकिन गांधीवादियों के कारण गांधी के विपरीत बोला, वो भाग गए। जो उसमें से बच गए उन्होंने सबूत दिया कि उनका नाता मुझसे है। मेरे पास जब मैं गांधी के विपरीत बोला तो सारे मुल्क के समाजवादी, साम्यवादी, उनकी भीड़ बढ़ने लगी। कम्युनिस्ट जो मुझे कभी सुनने ना आए थे वो आने लगे। फिर जब मैं समाजवाद के खिलाफ बोला वो भाग गए, उसमें से कुछ रुक गए। जो रुक गए वही मूल्यवान थे। निरंतर मैं ये करता रहा हूं, निरंतर मैं ये करता रहूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे कारण ही मेरे पास हो, कोई और इतर कारण नहीं। ये संबंध सीधा है, तो ही तुम्हारा यहां होना उचित है, अन्यथा तुम किसी और की जगह घेर रहे हो। खाली करो, कोई और वहां होगा, कोई और लाभ ले लेगा। तुम द्वार पर भीड़ मत करो, अफसोस तुम यहां हो। इसे भूलना मत, इसे सतत स्मरण रखना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है। इसे भी तुम समझ लो कि मैं गांधी के खिलाफ बोला, तुम गांधीवादी थे ही नहीं, इसलिए तुम्हें कोई अड़चन न हुई और तुमने सोचा कि हमारा तो प्रेम का नाता है। मैं समाजवाद के खिलाफ बोला, तुम समाजवादी कभी थे ही नहीं, तुमने कहा हमें इन विरोधी वक्तव्यों से कुछ नहीं लेना, हमारा तो प्रेम का नाता है। थोड़ी प्रतीक्षा करो, कहीं ना कहीं से मैं तुम्हारी जड़ पकड़ ही लूंगा। तुम ज्यादा देर ना बच पाओगे, कहीं ना कहीं से मैं तुम्हारे मत, तुम्हारे शास्त्र पर हमला करूंगा ही, करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक मैं तुम्हें तुम्हारे शास्त्र से मुक्त ना करूं, तब तक मैं तुम्हें तुम्हारी बुद्धि से मुक्त ना कर पाऊंगा। जब तक तुम तुम्हारी बुद्धि से मुक्त ना हो, तब तक अहंकार के नीचे का आधार ना हटेगा, तुम्हारा भवन गिर ना सकेगा। तो मैं खोजे चला जाता हूं, मेरे साथ आखिर में जो बच रहेगा, सभी झंझावातों को सहकर, सभी आंधियों को सहकर, वो परीक्षा में पूरा उतरा। अगर तुम्हें होश हो तो कोई कारण नहीं कि तुम भी परीक्षा में क्यों ना पूरे उतर जाओ। लेकिन जब तुम्हारे मत पे चोट पड़ती है, तब होश खो जाता है, तब आदमी बेचैन हो जाता है। क्योंकि ये मानना कि तुम कोई गलत चीज मानते थे, बड़ा मुश्किल होता है। तुम इतने बुद्धिमान और किसी गलत चीज को मानते थे? तुम्हें अपनी बुद्धिमानी पर शक नहीं आता, और धार्मिक व्यक्ति का वो बुनियादी लक्षण, जिस बुद्धि को अपने पर शक आ गया वो धार्मिक हो गई। क्योंकि जिसे अपने पे संदेह आया, उसने ही अपने को बदला। संदेह ही ना तो बदलोगे क्यों? जिसने पहचाना कि मैं रुग्ण हूं, वही चिकित्सा की खोज में चला, औषधि की तलाश की। दूसरा प्रश्न, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एरिक फ्रॉम ने कहा है कि मनुष्य के मन में झांक कर देखने के बाद मुझे आश्चर्य होता है कि मनुष्य समाज में मैत्री, प्रेम और दयादान के कृत्य भी होते हैं। कृपा पूर्वक बताएं कि मनुष्य की वृत्तियों में कौन ज्यादा बुनियादी और बली, प्रेम या घृणा, हिंसा या अहिंसा, सुख या दुख। इस तरह सोचना कि कौन ज्यादा बलवान है, प्रथम से ही गलत प्रश्न उठा लेना है। और अगर गलत प्रश्न पूछ लिया तो फिर उत्तर गलत होते चले जाते। कहते हैं अच्छे होटलों में बैरा ये नहीं पूछता है कि आप चाय लेंगे या नहीं, बैरा पूछता है आप चाय लेंगे या काफी। फर्क समझे आप? अगर बैरा पूछे आप चाय लेंगे या नहीं, तो 50 मौके नहीं के, 50 मौके चाय के। बैरा पूछता है आप चाय लेंगे या काफी, तो 50 मौके चाय के हैं, 50 मौके काफी के। आपको छूटने का मौका नहीं दे रहा है, आपको नहीं कहने का अवसर नहीं दे रहा है। इसलिए पश्चिम में तो विक्रेताओं को प्रशिक्षित किया जाता है कि ग्राहक से कैसी बात करनी, क्या कहना, क्योंकि तुम्हारे कहने पर उसका उत्तर निर्भर करेगा। अगर तुम खुद ही 50% ना कहने का अवसर दे रहे हो तो तुम काहे के विक्रेता, तुमने आधी दुकान तो बर्बाद कर दी, आधा काम तो तुमने धंधा खराब ही कर लिया। ये तुमने गलत जगह से पूछ लिया, नहीं ऐसा पूछना ठीक नहीं। मनुष्य जाति बहुत से ऐसे प्रश्नों से पीड़ित रही है जो गलत जगह से पूछे गए, बस एक दफा पूछ लिया कि झंझट खड़ी हो जाती। और हमारी आदतें सिखाने की, हमें सिखाया गया हां और ना की आदतें, अंधेरा और उजेला, रात और दिन, मौत और जिंदगी, हम दो हिस्सों में बांट के देखते। जिंदगी दो हिस्से में बटी नहीं है, जिंदगी तो सतरंगी है, इंद्रधनुष जैसी है। अब तुम पूछो इंद्रधनुष सफेद के काला तो क्या कहें? इंद्रधनुष ना काला ना सफेद।

इंद्रधनुष सतरंगी है, तुम्हारे काले सफेद में प्रश्न बनते ही नहीं। ये तो ऐसे ही जैसे कोई आदमी तुमसे पूछे कि हाँ और ना में जवाब दे दे, अपनी पत्नी को अब भी पीटते हैं या नहीं? अगर कहो हाँ तो उसका मतलब अभी भी पीटते हैं, अगर कहो नहीं तो उसका मतलब पहले पीटते थे। उसने छोड़ा ही नहीं अवसर। यह भी हो सकता है कि आप पीटते ही ना हो। प्रश्न पूछा जाता है कि अहिंसा या हिंसा, प्रेम या घृणा, क्रोध या करुणा, ये जीवन को बांटने का गलत ढंग है। जीवन सतरंगा है, हां और नहीं में बटा हुआ नहीं। हां और नहीं के बीच बहुत सी सीढ़ियां हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी। यहां बहुत मात्राएं हैं, यहां ऐसी भी जगह है जहां ना घृणा न प्रेम, उपेक्षा, उपेक्षा भी है, और यहां ऐसी भी घड़ियां हैं जहां घृणा भी और प्रेम भी, दोनों साथ साथ। मनस्वित कहते हैं तुम जिसको प्रेम करते हो उसी को साधारणता घृणा भी करते हो, इसलिए तो पति पत्नियों के इतने झगड़े चलते, जिससे प्रेम उसी से घृणा। अब तुम उनसे कहो इतना झगड़ा चलता है तो छोड़ ही क्यों नहीं देते, तुम बात ही गलत कर रहे हो, प्रेम भी है, छोड़ तो सकते ही नहीं, न छोड़ सकते हैं न साथ रह सकते। पति पत्नी का संबंध ऐसा संबंध है कि बिना भी नहीं रह सकते और साथ भी नहीं रह सकते। पत्नी दूर चली जाती तो याद आती है, पास चली आती है तो छुटकारे की कामना पैदा होने लगती है। अगर तुम जीवन को सीधा सीधा देखो, लेकिन अगर तुमने गणित से बांध लिया, तुमने कहा कि बात सीधी साफ करो, अगर पत्नी से लगाव है तो ठीक साथ रहो, अगर लगाव नहीं तो छोड़ दो, बात खत्म करो। काश जिंदगी इतनी सीधी सीधी होती, ऐसा अंधेरे उजाले की तरह जिंदगी बटी होती। बटी नहीं है जिंदगी, बड़ी मिश्रित है। तुम अगर किसी से पूछो ठीक ठीक कहो प्रेम या घृणा, तो वो भी कहेगा, वो कहेगा पक्का करना मुश्किल, कभी घृणा भी होती है कभी प्रेम भी होता, सुबह घृणा होती शाम प्रेम हो जाता। खोजने से पता चला है कि प्रेम और घृणा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए गलत प्रश्न से शुरुआत हम ना करें। जीवन में जहां जहां अति दिखाई पड़ती हो वहां समझ लेना कि बीच में सेतु भी होगा। रात भी कहीं दिन से अलग है, मौत कहीं जिंदगी से अलग है। मौत कहीं जिंदगी के बाहर थोड़ी घटती, जिंदगी के भीतर ही घटती। मौत आने के पहले मर थोड़ी जाते हो, जिंदे ही रहते हो। जब मौत आती तुम्हें जिंदा ही पाती, ऐसा थोड़ी कि पहले मर गए फिर मौत आती। मौत जिंदगी के भीतर है, बाहर नहीं, और मौत जिंदगी के विपरीत भी नहीं, क्योंकि तुम हटते हो तो किसी के लिए जगह खाली करते हो, कोई और जिंदा हो पाता है। बूढ़ा मरता है तो बच्चा पैदा हो पाता है, पुराने पत्ते गिर जाते हैं तो नए पत्ते निकल आते हैं। पुराने पत्ते न गिरे तो नए पत्ते ना निकलेंगे। तुम थोड़ा ऐसा सोचो, तुम्हारे बुजुर्ग अगर न मरते तो तुम नहीं हो सकते थे, तुम हो क्योंकि उनकी बड़ी कृपा थी, वो मर गए। अगर वो बने ही रहते और अड्डा जमाए बैठे रहते तुम कहां होते। वैज्ञानिक कहते हैं जहां तुम बैठे हो वहां कम से कम 10 आदमियों की लाशें दबी हर स्थान पर, इतने आदमी हो चुके। तुम थोड़ा सोचो कोई मरता ना तो जिंदगी मरने से बदतर हो जाती। सब बूढ़े जरा सोचो तो, कौरव पांडव से लेके सब ऋषि मुनि, सब राक्षस, सब बैठे पृथ्वी पर, तुम भी आ गए। वो गला घोंट देते तुम्हारा, तुम्हारे लिए जगह कहां थी। तुम हो सके हो क्योंकि कोई नहीं हो गया। किसी के नहीं होने से तुम्हारा होना जुड़ा है। अब अगर तुम बहुत जिद करोगे कि मैं सदा ही बना रहूं, तो तुम दूसरों के होने में बाधा बन जाओगे। जब तुम्हारा मौका आए तुम हट जाओ ताकि दूसरे हो सके। जीवन मौत के साथ साथ चल रहा है, मौत जीवन का ही उपाय है।
मौत जीवन का ही हिस्सा है। एक बार तुम्हें यह समझ में आ जाए कि विरोधी जुड़े, फिर जीवन के संबंध में कई बातें साफ हो सकती। पूछा है कि बुनियादी कौन है, बलि कौन है? कोई भी नहीं, दोनों साथ साथ हैं। और अगर छोड़ना हो तो दोनों ही छोड़ने पड़ते हैं। इसलिए तो भारत के मनुष्यों ने कहा कि अगर तुम्हें मौत से बचना हो तो जीवन का त्याग कर देना होगा। इसको तुम थोड़ा सोचो इस तरह से। बुद्ध पुरुषों ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि मौत से छुटकारा हो जाए तो जीवन से छुटकारा चाहिए। जब तक तुम जीवन को पकड़ोगे मौत भी आती ही रहेगी। तुम्हारे जीवन को पकड़ने में ही तुमने मौत को निमंत्रण दे दिया। जीवेषणा मौत को लाएगी और जीवन और मृत्यु का चाक घूमता रहेगा। तुम जीवन को छोड़ो, मौत अपने से छूट जाती। तुमने सम्मान चाहा तो अपमान आता ही रहेगा। तुम सम्मान छोड़ो, अपमान अपने से छूट जाता है। तुमने कुछ परिग्रह करना चाहा तो तुम्हारे जीवन में कभी ना कभी खोने का दुख झेलना ही बड़ा है। तुम खुद ही छोड़ दो, फिर तुमसे कुछ भी छूट नहीं सकता। पकड़ोगे तो छूटेगा, न पकड़ोगे तो छूटने की बात ही समाप्त हो गई। इसलिए पूरब की सारी मनीषा एक बात कहती है, अगर तुम चाहते हो कि दुख मिट जाए तो सुख का त्याग कर दो। इसमें विरोध का नियम काम कर रहा है। तुम चाहते हो सुख तो बच जाए और दुख का त्याग हो जाए, तुम असंभव की कामना कर रहे हो। इसका यह अर्थ हुआ, अगर तुम जीवन से घृणा के रोग को छोड़ देना चाहते हो तो जिसे तुम प्रेम कहते हो उसे भी छोड़ दो। तब तुम्हारे जीवन में एक निष्कलुषता आएगी, जिसमें न तो प्रेम होगा, जिसे तुम प्रेम कहते हो वो नहीं होगा, जिसे तुम घृणा कहते हो वो भी नहीं होगी। कुछ नई ही गंध होगी, कुछ नई ही बात होगी, तुम्हारी भाषा में कहीं भी ना आ सके ऐसी कुछ बात होगी, अनिर्वचनीय कुछ होगा, अव्याक्य कुछ होगा। कुछ नए शब्द खोजने पड़ेंगे। इसलिए हम बुद्ध को प्रेमी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रेम तो बिना घृणा के हो नहीं सकता। इसलिए हमने उनको करुणावान कहा, जरा सा शब्द अलग किया। लेकिन करुणावान भी कहना क्या ठीक है, क्योंकि करुणा भी क्रोध के बिना नहीं हो सकती। मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि बुद्ध के लिए तुम्हारी भाषा का कोई भी शब्द लागू नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी शब्द तुम उपयोग करोगे उससे विपरीत को भी स्वीकार करना पड़ेगा। तुम बुद्ध को त्यागी नहीं कह सकते, क्योंकि त्यागी वो तभी हो सकते हैं जब भोगी हो। तुम उनको ज्ञानी भी नहीं कह सकते, क्योंकि ज्ञानी वो तभी हो सकते हैं जब अज्ञानी भी हो। तुम उन्हें सन्यासी भी नहीं कह सकते, क्योंकि सन्यासी वे तभी हो सकते हैं जब संसारी भी हो। फिर क्या कहो? इसलिए शास्त्र कहते हैं उस संबंध में चुप ही रहा जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता, उस संबंध में मौन ही वक्तव्य है। तो पहली तो ये बात कि दोनों साथ साथ हैं, बराबर वजन के, न तो घृणा ज्यादा है न प्रेम ज्यादा है। और दूसरी बात जीवन के प्रतिपल में स्थिति बदलती रहती। जब तुम जवान होते हो तब मोह ज्यादा लगता है वो जवानी का भ्रम है, प्रेम ज्यादा लगता है वो जवानी का भ्रम है, भोग ज्यादा लगता है वो जवानी का भ्रम है। फिर तुम ही बूढ़े हो जाओगे और त्याग की भाषा बोलने लगोगे, वो बुढ़ापे का भ्रम। इसलिए बूढ़े और जवान में बात बड़ी मुश्किल है, वो अलग अलग भाषा बोलते। बूढ़ा कहता है ये सब सपना है जो तुम बातें कर रहे हो, जवान कहता है ये सब पराजय की बातें, तुम्हारा हारा थकापन। अब तुम बूढ़े हो गए, मौत करीब आ रही है, तुम मौत से घबरा गए हो।
बूढ़ा आस्तिक हो जाता है, ईश्वर को मानने लगता है, जवानी नास्तिक है। जवानी अपने सिवा किसी को भी मानना नहीं चाहती। जवान कहता है बूढ़ा मौत से डर गया इसलिए ईश्वर को मानने लगा, भयातुर है, ये भगवान सब भय से पैदा हुए। और बूढ़ा कहता है ये जवान अभी अंधा है, जवानी अंधी है, और अंधे को सब जगह हरा हरा सूझता है। ये सब उतर जाएगा नशा, ये सब नशा है, तो अकल आएगी। मगर मैं तुमसे कहता हूं ना तो जवान को अकल है ना बूढ़े को अकल का, इससे कोई संबंध ही नहीं जवानी और बुढ़ापे से। जब तक तुम अपने भीतर ऐसी जगह ना खोज लोगे ना जो जवान है ना बूढ़ी, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई बुद्धि का बुद्धि की किरण नहीं हो सकती। जवान जवानी से परेशान है और जवानी की भाषा बोल रहा है, बूढ़ा बुढ़ापे से परेशान है, बुढ़ापे की भाषा बोल रहा है। हालांकि बूढ़े को लगता है मैं ज्यादा समझदार हूं, जवान को भी यही लगता है कि मैं ज्यादा समझदार हूं। इसलिए तो पीढ़ियों के बीच एक दरार पड़ जाती, बाप बेटे को नहीं समझ पाता, बेटा बाप को नहीं समझ पाता। बाप बिल्कुल भूल चुका कि वो भी कभी बेटा था और जवान था और इसी तरह की मूढ़ता की बातें उसने भी की थी, वो भूल ही जाता। मूढ़ता की बातें लोग याद ही नहीं रखते, और जवान भी ये भूल जाता है कि ये बाप भी कभी जवान था फिर बूढ़ा हुआ है। मैं आज जवान हूं कल मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, इसकी बात को ऐसे ही ना ठुकराऊं, ये आज नहीं कल मेरे जीवन में भी आने ही वाली है, इसका ऐसा तिरस्कार ना करूं। लेकिन नहीं, जवान भी अंधे बूढ़े भी अंधे। आंख तो उसके पास होती जो अपने भीतर उस धारा को खोज लेता है जो समय के बाहर है, न जो जवान है न जो बूढ़ी। कल जिस गुलाब की डाली पर बैठी बुलबुल गाती थी गीत जवानी का पंचम स्वर में, हूं देख रहा अब उसकी आंखों में आंसू, दब गया गीत उसका पतझर की हर हर में। जिस पाटल की पलकों की छाया के नीचे थी लगी हाट मदिरा की मधुपों का मेला, है आज पखरियां बिखरी उसकी धरती पर, है खड़ा हुआ छाती पर मिट्टी का ढेला। ये तो रोज ही होता रहा है, अभी क्षण भर पहले जो फूल आकाश में इतराता था क्षण भर बाद मिट्टी में दबा है। अभी क्षण भर पहले जवानी गीत गाती थी क्षण भर बाद बुढ़ापा रो रहा है। मन तो रोज बदलता चला जाता है, कभी एक स्वर महत्वपूर्ण मालूम होता है, कभी दूसरा स्वर महत्वपूर्ण मालूम होता है। मन के साथ तो ये धोखा ये लुका छिपी चलती ही रहती। मन का नियम यह है कि मन पूर्ण को नहीं देख सकता, इसे तुम समझने की कोशिश करो। मन केवल आधे को देख सकता है। जैसे मैं तुम्हारे हाथ में एक सिक्का दे दूं, सिक्का छोटा सा है, क्या तुम दोनों पहलुओं को एक साथ देख सकोगे? जब तुम सिक्के का एक पहलू देखोगे दूसरा दब जाएगा, जब दूसरा देखोगे पहला दब जाएगा। आज तक किसी मनुष्य ने पूरा सिक्का नहीं देखा है। तुम सोचते हो कि तुमने देखा क्योंकि तुम दोनों अलग अलग देखे पहलुओं को कल्पना में जोड़ लेते हो, अन्यथा तुमने पूरा सिक्का नहीं देखा। अगर तुम बहुत तर्कयुक्त हो तो तुम दूसरे सिक्के के संबंध में, दूसरे पहलू के संबंध में कुछ भी नहीं कह सकते। मैंने सुना है एक बहुत बड़ा विचारक विटगेंस्टीन ट्रेन से यात्रा कर रहा था, बड़ा तर्कयुक्त मनुष्य था। पास ही एक मित्र बैठा था, खिड़की से उन्होंने झांक के देखा, सर्दी की सुबह धूप निकली है और एक खेत में बहुत सी भेड़ें खड़ी, उनके बाल अभी अभी काटे गए, वो सर्दी में थरथरा रही, धूप में एक दूसरे से सिकुड़ी खड़ी। मित्र ने विटगेंस्टीन को कहा, देखते हैं मालूम होता है भेड़ों के बाल अभी अभी काटे गए, ठंड पड़ रही,
और भेड़ें ठंड में सिकुड़ रही। बिटकिन्स टीम ने गौर से देखा और कहा, जहां तक इस तरफ दिखाई पड़ने वाले हिस्से

जवानी में मदिरा ले जाता था, बुढ़ापे में मस्जिद जाने लगता है। जवानी में रस राग वैभव विलास, बुढ़ापे में सन्यास की बातें, त्याग विराग, सारी भाषा बदल जाती। पर होता कुल इतना ही है कि सिक्के का दूसरा पहलू सामने आता है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि सिक्के के किसी भी पहलू को जरूरत से ज्यादा मूल्य मत दे देना, दूसरा भी उतना ही मूल्यवान है, दोनों बराबर मूल्य के। और अगर एक साथ तुमने दोनों का बराबर मूल्य आंक लिया, दोनों तुल गए तराजू पर बराबर, तो तुम दोनों से मुक्त हो जाओगे। उस व्यक्ति को ही मैं सम्यक ज्ञान को उपलब्ध कहता हूं जिसने मन के सारे विरोधों को साथ रख के देख लिया, और जिसने चुनाव करना बंद कर दिया, और जिसने कहा ये पूरा मन ही लुका छिपी है, एक सामने आता है दूसरा छिप जाता है, फिर हम धोखे में पड़ जाते। जो धोखे में नहीं पड़ता, जो दोनों को देखकर, दोनों के विरोध को देखकर, दोनों का अनिवार्य सत्संग देखकर, दोनों से छुटकारा पा लेता है, द्वंद से जो मुक्त हो जाता है, द्वैत से दुई से जो मुक्त हो जाता है, वही परम शाश्वतता में ठहरता है, वही स्वभाव को उपलब्ध होता है। आखिरी प्रश्न, भगवान होने का आनंद लेना हो तो इसी क्षण भगवान हो कर लो, क्या यही आपकी देशना है? कल भ्रांति, आज ही सत्य है। आने वाला क्षण भी आएगा या नहीं कोई भी कह नहीं सकता, जो आ गया है बस वही आ गया है। तो कल पर छोड़ कैसे सकते हो? कल है कहां? कल रात यूरोप से एक युवक आया और संन्यास्त हुआ। मैंने उससे पूछा कब तक रुकोगे? उसने कहा कल तक रुका हूं। तो मैंने कहा फिर तुम कभी जा ना सकोगे, क्योंकि कल तो कभी आता नहीं। वो थोड़ा घबराया। अगर कल तक रुके हो तो सदा के लिए रुकना पड़ेगा, क्योंकि कल जब आएगा तो आज हो जाता है, आज होकर ही कुछ आता है। समय का स्वभाव आज अभी है, कल तो मन की कल्पना है, कल तो मन का फैलाव है, कल तो आज से बचने का उपाय है। तो अगर तुम कहते हो कि कल लेंगे भगवान होने का आनंद, तो तुम कभी ना ले पाओगे। भगवान तो अभी है, यही है। सब साज सामान तैयार है, तुम गाना कल पर क्यों छोड़ रहे हो? वीणा सामने रखी है, उंगलियां वीणा पर पड़ी हैं, तुम तार छेड़ना कल पर क्यों छोड़ रहे हो? क्या तुम्हें पक्का है यह हो सकता है वीणा कल भी हो तुम ना हो? कल पर छोड़ने की आदत संसार में खतरनाक से खतरनाक आदत है। आज ही जी लो, लेकिन तुम्हें सदा यही सिखाया गया है कल पर छोड़ो, क्योंकि तुम्हें यह सिखाया गया हर चीज की तैयारी करनी होगी, तैयारी के लिए कल की जरूरत है। आज कैसे भोगोगे? सितार बजानी तो पहले सीखनी भी तो पड़ेगी, सीखने के लिए कल तक ठहरना पड़ेगा। गीत गाना है तो कंठ को साधना भी तो पड़ेगा, आवाज को व्यवस्था तो देनी होगी, तो कल की जरूरत पड़ेगी। मगर मैं तुमसे कहता हूं भगवान को भोगने के लिए कुछ भी तैयारी की जरूरत नहीं, जो बिना तैयारी उपलब्ध है वही भगवान है।

0: जो तैयारी से मिलता है उसका नाम ही संसार है। तुम्हें बड़ी उल्टी लगेगी मेरी बात, मैं तुमसे फिर कहूं, जो साधना से मिलता है उसका नाम संसार है, जो मिला ही हुआ है उसका नाम भगवान है। संसार के लिए कल की जरूरत है, समय की जरूरत है, भगवान के लिए कोई जरूरत नहीं। ये गीत कुछ ऐसा है कि कंठ को साधना नहीं बस गाना है। ये स्वर कुछ ऐसा है कि कोई प्रशिक्षण नहीं लेना, ऐसा ही है जैसे कि मोर नाचता है बिना किसी प्रशिक्षण के, बिना किसी नृत्यशाला में गए पक्षी गीत गा रहे हैं, बिना कंठ को साधे। तुम जैसे हो भगवान वैसे ही प्रकट होने को तैयार है। तुम जैसे हो वैसा ही भगवान ने तुम्हें स्वीकारा है। कल मैं गीत पढ़ता था, मुझे प्रीतिकर लगा, यह बाविकार मुकफ्फिर, यह फलसफी सायर, बहुत बुलंद फिजाओं में फड़फड़ाते, चमन के फूल, हवा का खिराम, गुल की चटक, हर एक जिंदा मसर्रस से खौफ खाते, कभी खुदा न करे मुस्कुराएं भी ये बुजुर्ग, तो किस कमबींद मतानस से मुस्कुराते, रबाबे जीस्त के आतिस मिजाज तारों पर, गिलाफ बर्फ जदा फिक्र के चढ़ाते, है मग्र फिक्र वह मुर्दा बुलंद परवाजी कि जिससे जीस्त के आसाब ऐंठ जाते। दार्शनिक, पंडित, पुरोहित, विचारक, शास्त्रज्ञ बड़ी ऊंची हवाओं की बातें करते हैं, बड़े ऊंचे आसमानों की बातें करते हैं, लेकिन वो बातें उन आसमानों में कभी उड़ते नहीं। जिंदगी उनकी जमीन पर सरकती हुई पाओगे, बातें आकाशों की, वो सिर्फ सपने। और चमन के फूल, हवा का खिराम, गुल की चटक, हर एक जिंदा मसर्रस से खौफ खाते, और तुम सदा पाओगे कि जहां भी कोई जिंदा सुख हो उससे वो घबराते, मरे मराए सुखों की बातें करते हैं या कभी होने वाले सुखों की बातें करते हैं, किन्हीं स्वर्गों की जो होंगे, किन्हीं स्वर्गों की जो कभी थे। चमन के फूल, हवा का खिराम, गुल की चटक, हर एक जिंदा मसर्रस से खौफ खाते, और जहां भी जिंदगी की खुशी दिखाई पड़ती कहीं कोई जिंदा सुख मालूम पड़ता उससे घबराते। मैं तुमसे कहता हूं जो जिंदा सुख से घबराए वो भगवान का दुश्मन है, क्योंकि फूल उसी के, हवा की लहरें उसी की, पक्षियों के गीत उसी के, ये जो नाच चल रहा है चारों तरफ, ये जो जीवन का उत्सव चल रहा है चारों तरफ, ये उसी का है। इससे जो घबराया, इससे जो शर्माया, इससे जो बचा, वो आदमी मुर्दा है, उसका भगवान भी मुर्दा होगा। जिंदा भगवान तो यहां है, मुर्दा भगवान कहीं और, सात आसमानों के पार। कभी खुदा ना करे मुस्कुराएं भी ये बुजुर्ग, तो किस कमीद मतानस से मुस्कुराते हैं, और ऐसे लोग हंसते तो हैं ही नहीं, और भगवान न करे कि कभी वो हंसे भी, क्योंकि वो हंसते हैं तो उनकी हंसी में भी ऐसी घबराहट, ऐसी गंभीरता, ऐसी निंदा, उनकी हंसी में भी हंसी नहीं होती, उनकी हंसी में भी लाश की सड़ांध होती। रबाबे जीस्त के आतिस मिजाज तारों पर, ये पंक्तियां बड़ी प्यारी हैं। जिंदगी के स्वर बड़े गर्म गर्म हैं, जिंदा हैं तो गर्म हैं। रबाबे जीस्त के आतिस मिजाज तारों पर, और ये जिंदगी का बाजा है, जिंदगी का साज है, इसके गर्म गर्म तार हैं, तैयार हैं कि छेड़ो अभी, निमंत्रण है, बुलावा है कि नाचो अभी, गाओ अभी। रबाबे जीस के आतिस मिजाज तारों पर, गिलाफ बर्फ जदा फिक्र के चढ़ाते, और ये जो पंडित हैं, पुरोहित हैं, मौलवी, ये इन गर्म गर्म जिंदगी की वीणा के तारों पर फिक्र और चिंता की बर्फ चढ़ाते, ठंडा कर देते, मार डालते। है मग्र फिक्र वह मुर्दा बुलंद परवाजी। और ये बातचीतें और ये विचारों की उड़ाने सब मरी हुई है कि जिससे जीस्त के आसाब ऐंठ जाते, जिससे जिंदगी ऐंठ जाती, जीवन के अंग ऐंठ जाते। ये सब बातें जिंदगी के विपरीत हैं, मौत की पक्षपाती। तुमने जिन्हें अब तक धर्मों की तरह जाना है, बुद्धों को छोड़ दो, महावीरों कृष्णों को छोड़ दो, उनके धर्म से तुम्हारी कोई पहचान नहीं। उनका तो धर्म यही है कि भगवान अभी हो जाओ। उनका तो सभी का संदेश यही है कि वर्तमान के अतिरिक्त तो और कोई समय नहीं। उनने तो सभी ने कहा है कि इसी क्षण को तुम शाश्वत बना लो, इसी में डूब जाओ। लेकिन उनके नाम पर पंडितों पुरोहितों ने जो संप्रदाय खड़े किए, वो सब तुम्हें कल की तैयारी कहते हैं। वो कहते हैं आज छोड़ो, कल की तैयारी करो। उनकी वजह से ही तुम उदास हो, उनकी वजह से ही तुम्हारी जिंदगी के अंग ऐंठ गए, उनकी वजह से तुम कुछ भी उत्सव नहीं मना पाते। गुरजीएफ कहता था कि सभी धर्म भगवान के खिलाफ है। बड़ा कठिन वक्तव्य है, क्योंकि हमें तो लगता है धर्म तो भगवान के पक्षपाती हैं। गुरजीएफ कहता है सभी धर्म भगवान के खिलाफ। मैं भी कहता हूं धार्मिक व्यक्ति भगवान के खिलाफ नहीं होता, धर्म सभी भगवान के खिलाफ। धार्मिक व्यक्ति तो कभी कभार होता है। जो धर्मों की जमाते वो परमात्मा के विपरीत है। तुम्हारे महात्मा सभी परमात्मा के विपरीत। महात्मा तुम्हें जिंदगी को छोड़ना सिखाते हैं और परमात्मा ने तुम्हें जिंदगी दी है। और महात्मा कहते हैं छोड़ो और परमात्मा कहता है भोगो। जीवन परम भोग है। अगर तुमने मेरी बातों को ठीक से समझा तो मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि तुम अपने परमात्मा को अपने जीवन की ऊंचाई बनाओ। तुम अपने परमात्मा को अपने जीवन के विपरीत मत रखो, अन्यथा तुम अड़चन में पड़ोगे। न तुम जिंदगी के हो पाओगे, न परमात्मा के हो पाओगे। तुम दो नावों में सवार हो जाओगे जो विपरीत जा रहे हैं। तुम परमात्मा को जीवन का स्वर समझो और तुम जीवन के प्रतिपल को प्रार्थना बनाओ। तुम जीवन को इस ढंग से जियो कि वो धार्मिक हो जाए। धर्म के लिए जीवन में अलग से खंड मत खोजो, धर्म को पूरे जीवन पर फैल जाने दो। लेकिन दुखी लोग हैं जो दुख को पकड़ते हैं। वो जीवन में सब तरह का दुख का आयोजन करते हैं। पहले धन के नाम पर दुखी होते, पद के नाम पर दुखी होते, फिर किसी तरह इनसे छुटकारा होता तो भगवान के नाम पर दुखी होते। लेकिन दुख की आदत उनकी छूटती नहीं। तुझको मस्जिद है, मुझको मैखाना, वाइजा अपनी अपनी किस्मत है। कुछ हैं जो जिंदगी को मधुशाला बना लेते, जिनकी जिंदगी एक उत्सव होती, महोत्सव, एक अहिर्निश आनंद। और कुछ हैं जो जिंदगी को मस्जिद बना लेते, चर्च, उदास, मुर्दा, मरघट का हिस्सा मालूम पड़ता है जीवन का नहीं। अपनी अपनी किस्मत, वाइजा अपनी अपनी किस्मत है, हे धर्मगुरु अपनी अपनी किस्मत है। तुम धर्मगुरु बनने की चेष्टा में मत पड़ना, तुम धार्मिक होने की फिक्र छोड़ो, तुम परमात्मा के उत्सव को अंगीकार करो। जो जीवन में मिला है उसे इतनी गहराई से भोगो कि उसकी भोग की गहराई में तुम्हें सब जगह से परमात्मा के दर्शन होने लगे। भोजन भी करो तो ऐसे अहोभाव से कि उपनिषद के वचन सत्य हो जाएं, अन्नम ब्रह्म। सौंदर्य को भी देखो तो इतने अहोभाव से कि सभी सौंदर्य उसी की सौंदर्य की झलक लाने लगे। उठो तो उसमें, बैठो तो उसमें, चलो तो उसमें, जागो तो उसमें, सो तो उसमें, परमात्मा ही तुम्हारा लिबास हो जाए, वो तुम्हें घेरे रहे, तो ही मैं कहता हूं तुम धार्मिक हो पाओगे। धार्मिक होना 24 घंटे का काम है, इसमें छुट्टी का उपाय नहीं, इसमें रविवार का दिन भी नहीं आता। ईसाइयों की कहानी है कि परमात्मा ने 6 दिन संसार बनाया, 7वें दिन विश्राम किया। अब पश्चिम में यूनियनवादी लोग हैं, वो इसके खिलाफ हैं, वो कहते हैं 5 दिन होना चाहिए काम, 7 दिन 6 दिन। मुझे लगता है कि यूनियनवादियों ने ही उसको राजी किया होगा पहले भी कि तू 6 दिन काम कर, 7वें दिन छुट्टी रख, नहीं तो मामला सब खराब हो जाएगा। जहां तक मेरे देखे परमात्मा 7ों दिन काम कर रहा है अहिर्निश। छुट्टी तो कोई तब चाहता है जब काम दुख होता है, जब काम ही आनंद हो तो कोई छुट्टी चाहता है? किसी ने कभी प्रेम से छुट्टी चाही? काम से लोग छुट्टी चाहते हैं क्योंकि काम उनका प्रेम नहीं। तुम परमात्मा से छुट्टी ना चाहो तब तो एक ही उपाय है कि तुम जो करो वो परमात्मा को ही निवेदित हो, समर्पित हो। तुम जो करो उसमें ही प्रार्थना की गंध समाविष्ट होने लगे, प्रार्थना की धूप तुम्हारे जीवन को चारों तरफ से घेर ले, सुवासित कर दे। और अगर तुमने किसी भविष्य के परमात्मा के सामने प्रार्थना की तो वो झूठी रहेगी, क्योंकि परमात्मा सदा वर्तमान का है। भविष्य के परमात्मा तुम्हारी ईजादें, धोखे। और अगर तुमने किसी भविष्य के परमात्मा के सामने प्रार्थना की तो उस प्रार्थना में मस्ती ना होगी, मस्ती तो केवल अभी हो सकती। तेरा इमाम बेहजूर, तेरी नमाज बेसरूर, ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर, न तो तुम्हारी प्रार्थना में मस्ती है, न तुम्हारी प्रार्थना में परमात्मा है। ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर, तेरा इमाम बेहजूर, तेरी नमाज बेसरूर। प्रार्थना को मस्ती बनाओ, अच्छा हो मैं ऐसा कहूं, मस्ती को प्रार्थना बनाओ। नाचो गाओ, इसी क्षण ये हो सकता है। परमात्मा कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है और कब तक प्रतीक्षा करवाओगे? निश्चित ही यही मेरी देशना है कि अगर भगवान को जीना हो तो अभी, न जीना हो तो साफ कहो कि हम जीना ही नहीं चाहते, कल पर क्यों टालते हो? कम से कम ईमानदार तो रहो, इतना ही कहो कि हमें लेना देना नहीं, हमें प्रसन्न नहीं होना, हमें आनंदित नहीं होना, हमें दुखी रहना, होश से दुखी रहो। कम से कम सच्चे तो रहोगे, और जो होश से दुखी है ज्यादा दिन दुखी नहीं रह सकता। आज नहीं कल पहचाने का कि मैं ये क्या कर रहा हूं, एक महा अवसर मिला था गंवाए दे रहा हूं। जहां कमल के फूल ही फूल खिल सकते थे वहां कांटे ही कांटे बनाए ले रहा हूं। नहीं, तुम्हारी तरकीब यह है कि तुम कहते हो नहीं होना तो है प्रसन्न, लेकिन कल, कल के बहाने आज तुम दुखी हो लोगे। तुम कहोगे आज तो कैसे खुश हो सकते हैं, कल होंगे, आज तो दुख में है सो बिता लेंगे किसी तरह, गुजार लेंगे किसी तरह, लेकिन आज के ही गुजरे होने से तो कल निकलेगा। अगर आज दुख में गया तो कल सुखी नहीं हो सकता, इसी दुख से तो आएगा, इसी दुख पर तो बुनियाद पड़ेगी, इसी दुख पर तो कल का मंदिर खड़ा होगा। यही ईंटें तो कल के मंदिर को बनाएंगी जिनको तुम आज का क्षण कह के गंवा रहे हो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं आज ही मंदिर बना लो, मंदिर बना ही है, तुम आज ही प्रार्थना कर लो, कल को कल पर छोड़ो। जीसस का बहुत प्रसिद्ध वचन है, कल कल की चिंता स्वयं कर लेगा। तुम आज जी लो, धार्मिक व्यक्ति मैं उसी को कहता हूं जिसने वर्तमान में जीने को ही एकमात्र जीवन बना लिया। फिर उसे परमात्मा को खोजने नहीं जाना पड़ता। सूफी फकीर अल हिल्लाज मंसूर ने कहा है कि इसमें भी क्या लुत्फ कि हम परमात्मा को खोजने जाएं, ऐसे भी ढंग है कि वो खोजता हुआ आता है। मैं तुम्हें ऐसा ही ढंग दे रहा हूं कि वो तुम्हें खोजता हुआ आए, ये भी कोई मजे की बात है कि तुम खोजते फिरो उसे। खोजोगे भी कहां, उसका कोई पता ठिकाना भी तो नहीं। तुम अगर उत्सव में जियो तो वो तुम्हें खोज लेगा, वो उत्सव का संग साथी है, वो उत्सव को प्रेम करता है। इसलिए तो इतने फूल हैं, इतने गीत हैं, इतने चांद तारे, वो उत्सव का दीवाना है। तुमने उत्सव मनाया कि तुमने पाती लिख दी, तुमने उत्सव मनाया कि तुम्हारी खबर पहुंच गई, तुम नाचो, नाच की ही गहराई में तुम अचानक पाओगे उसके हाथ तुम्हारे हाथ में आ गए, वो तुम्हारे साथ नाच रहा है। पर नाच में ही पाया जा सकता है। ऐसी उदास मुर्दा शक्लें बना के लोग बैठे, परमात्मा भी झिझकता है। उसके साथ होने का एक ही ढंग है कि तुम नाचो।
1: अभी आप सुन रहे थे ओशो की विचार। विषय था व्हाई डू कॉम्प्लिकेशंस अराइज इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में उलझने क्यों आती हैं। आशा करता हूं इन विचारों को बहुत ही ध्यान से आपने सुना होगा। ओशो कहते हैं अतीत से मुक्ति, अर्थात हर कोई अपने भीतर किसी दर्द, स्मृति या अपेक्षा को पकड़े बैठा है। जब अतीत का बोझ गिरता है तभी वर्तमान हल्का हो जाता है। जीवित बुद्ध, अर्थात जीवित बुद्ध हमारे बस में नहीं होते, उनके साथ तो अगर मैत्री बनानी हो तो तुम्हें उनके बस में होना पड़ता है। स्वतंत्रता, अर्थात फ्रीडम, तुम जो भी अर्थ निकालना चाहो निकाल सकते हो, अर्थ तुम्हारे होंगे। ओशो के विचारों को आज भी ध्यान, आत्मविकास और जीवन के रहस्यों को समझने के लिए प्रासंगिक माना जाता है। ऐसे विचारों को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
2: शारदा। हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।
1: जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है, ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा सुनो शारदा 90.8 FM पर।
3: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: राम राम दो सलाम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं नाचीज हरदिल अजीज गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता हूं, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है बिंदास सुबह बिंदास बोल बिंदास बातें होती हैं। आज मेरे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पढ़ाने का जब जिक्र हो ही जाता है तो जाहिर सी बात है कि दिमाग में एक छवि बन जाती है कि कोई हमारे साथ मेंटर जुड़ रहे हैं, गुरु जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर जुड़ रहे हैं। तो चलिए मैं ज्यादा आपको इंतजार नहीं कराता, लेकिन और भी बहुत कुछ क्वालिटीज हैं उनके पास, कि वो 3 बुक्स उनकी पब्लिश हो चुकी हैं। मिसेज इंडिया ब्यूटी क्वीन 2014 में टॉप 10 में आप रह चुकी हैं और आप हैं मेरे साथ डॉक्टर प्रिया सचदेवा। तो मैम सुनो शारदा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच गगन जी फॉर हैविंग मी हियर।
0: ये मेरा सौभाग्य है कि आपसे मेरी मुलाकात हो पा रही है, बातचीत हो पा रही है और अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़कर। मैंने आपके बारे में तारुफ कराया है अपने लिसनर्स को, मुझे लग रहा है कहीं कम तो नहीं है या कुछ और आपने छुपा के रखा हुआ?
1: गगन जी ये तो आपका बड़प्पन है, आपने इतना कुछ बताया मेरे बारे में, बट एट द सेम टाइम यही मैं शेयर करना चाहूंगी कि शुरू से लेकर अंत तक मैंने बहुत ही मेहनत और बहुत ही शिद्दत से अपनी चीजों को चाहा है और इस शिद्दत ने मुझे यहाँ पे लाके खड़ा किया है और कई सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा है ये सब। तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने छोड़ी हो, उसमें गाना गाना, उसमें शोज करना, उसमें पढ़ाई करना, उसमें फर्स्ट आगे दिखाना, उसमें रोल मॉडल बनना दुनिया के लिए, तो ये सब कुछ मैंने करके बहुत ही तरीके से देखा, अंदर घुस के देखा कि वाकई जन्नतें होती क्या हैं।
0: एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो ये जो सफर आपका रहा है, जैसे अभी आपने कहा कि बहुत सालों की मेहनत है, कितने सालों की मेहनत है, कब आपको लगा कि मुझे इस फील्ड में जाना है, कब आपको लगा कि मुझे एक प्रोफेसर बनना है, कब आपको लगा कि मुझे राइटिंग में जाना है, बुक्स लिखनी है?
1: छोटे होते से बड़ा अरमान था कि मैं सर्जन बनूं। तो तब डॉक्टर खेला करते थे, छोटे थे, 11th 12th में मेडिकल लेने की कोशिश की, बट हालात ऐसे बने कि कॉमर्स ली। उसके बाद कॉलेज करने वाले थे, कॉलेज करे तो उसके बाद लगा कि नहीं अब कुछ अपना शुरू करते हैं, या क्योंकि हमेशा से ये जरूर था कि प्रिया सचदेवा से पहले डॉक्टर लगना चाहिए। तो पेरेंट्स ने बोला कि नहीं अभी 10 ईयर्स रुकते हैं, 10 ईयर्स रुकना पड़ेगा, मेडिकल लाइन बहुत ही, यू नीड टू स्टडी वेरी हार्ड, बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो जर्नी वहां से स्टार्ट हुई और आज आप सबके सामने ही है। करते करते करते करते उसमें बस लोगों का साथ मिला, बहुत अच्छे गुरुओं का हाथ मिला और बहुत आशीर्वाद रहे साथ में। वो कहते हैं ना, जब आपको किसी चीज की तहे दिल से चाह होती है तो आपके सामने गुरु अपने आप आ जाता है।
0: बहुत गुँ, बहुत गुँ।
1: तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ और बहुत अच्छे गुरुओं ने मुझे बहुत लंबे समय तक अच्छी गाइडेंस में यहाँ तक पहुँचाया है।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।
1: तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज भी वो जहाँ भी हैं, अगर वो सुन सकते हैं तो उनको और जितने लोगों ने प्यार दिया और अपना साथ दिया, रातों को जाग जाग के वो पढ़ाइयां की हैं जहाँ तक अब आज हम पहुँचे हैं।
0: नाइस नाइस। गुरु और शिष्य का जो एक संबंध है, जो बॉन्डिंग है, उसके बारे में मैं आपसे जरूर जानूंगा, क्योंकि आपने खुद कहा कि मुझे गुरु बहुत अच्छे मिले जिसकी वजह से आप इस मुकाम तक पहुंच पाए। चूंकि आप एक प्रोफेसर हैं, बच्चों से आपका सामना रोज रहता है, तो आपके सामने जो आपके स्टूडेंट हैं उनके साथ कैसी ट्यूनिंग है, मैं इस सवाल का जवाब आपसे जरूर लूंगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। लिसनर्स सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनूं शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। और प्रोग्राम में आपका अपना वही बिंदास, सुबह बिंदास बोल बिंदास बातें होती हैं, मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10। जब अच्छा लगता है सुनकर, ये पता चलता है कि हमारे जो टीचर हैं वो भी मल्टी टैलेंटेड हैं, बहुत सारे उनके पास गुण हैं। और खासकर जब चर्चा होती है तो वो सारी बातें खुलकर आती हैं कि ये इस फील्ड में मैंने हाथ आजमाए हैं, मैंने ये किया है, मैंने बुक भी मेरी पब्लिश रही है। तो ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर प्रिया सचदेवा, मैं आपको बताना चाहूंगा, लिसनर्स हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप जो कि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर प्रिया सचदेवा मिसेज इंडिया ब्यूटी क्वीन 2014 के टॉप 10 में रह चुकी हैं, 3 बुक्स आपकी पब्लिश हुई हैं। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर प्रिया, आपसे बात हो रही थी कि जो एक संबंध है गुरु का और शिष्य का, जो तालमेल है, आपके साथ बहुत अच्छा रहा। आपका किस तरीके से तालमेल रहता है आपके अपने स्टूडेंट्स के साथ?
1: गगन जी, जब मैंने शुरू किया था तो मैंने एक पोस्ट ग्रेजुएशन में कर चुकी थी, तो दूसरी करने में यूनिवर्सिटी गई थी, तो तब मैंने सोचा था रेगुलर करूंगी। तो जब वो ज्वाइन करी तो उसमें भगवान की दया से 100 में से सिर्फ एक ही नंबर कम था। तो जब वो ज्वाइन किया और वहां पर ऐसे हुआ तो यूनिवर्सिटी से कॉल आ गई। तो तब लेक्चरर अपॉइंट हुआ करते थे जमाना पहले, तब प्रोफेसर और इतना एडवांस स्टेट

0: था, तो वहां पर शुरू किया अपना करियर। तो वहां पर करते करते फैशन शोज में जाना शुरू किया एज अ फैकल्टी। वहां पर जबरदस्त शूटिंग होती थी, तो लगता था शायद बच्चे वैसे ही शोर मचाते हैं। तो करते करते करते करते मुलाकात होने लगी जो इंडस्ट्री के लोग हैं, उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया कि आप मॉडलिंग करो, आप यहाँ आओ, आप हमारे एक एक दो दो दिन के वो जो शूट्स होते हैं उनमें आके आप वो करो, सिर्फ अपना यू नो पिक्चर्स शेयर कर दो या फिर आप एक छोटा सा एक्ट कर दो। तो फिर एक सीरियल भी मुझे मिला इंदिरा का।
1: Nice.
0: तो लेकिन वो मैं कर नहीं पाई उस टाइम पे भी, क्योंकि शायद भगवान को मेरे लिए टीचिंग ही बढ़िया लगी।
1: Nice.
0: उसके बाद करते करते फैशन शोज करे, तो वहां पर अपॉर्चुनिटी मिली जब मैं मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड में सिलेक्ट हो गई, मिसेज इंडिया इंटरनेशनल में सिलेक्ट हो गई, मिसेज यूनिवर्स में सिलेक्ट हो गई। फिर फाइनली जो मैंने किया वो मिसेज इंडिया ब्यूटी क्वीन था, क्योंकि सबकी डेट्स एक साथ में थी।
1: Okay. किसी एक का चुनाव करना था, राइट?
0: तो वो किया, उसमें टॉप 10 में थी, जो कि मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन पल थे और उसके थ्रू बहुत अच्छा एक्सपोजर रहा,
1: एक्सपोजर मिला।
0: और उसके बाद अब फिर उसके बाद 3 किताबें अपनी मैंने लॉन्च की और पढ़ते पढ़ाते करते कराते बहुत अच्छा संगम रहा नई नई चीजों का और पढ़ाई का।
1: अच्छा डॉक्टर प्रिया, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि चूंकि हमारा जो कोर्स है, हमारा जो स्कूल है, ग्लैमर इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता है, यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, मॉडलिंग की दुनिया में जाते हैं, कोई एंकर बनता है, कोई आरजे बनता है, चूंकि आप ब्यूटी क्वीन रह चुकी हैं और आपने इसमें पार्टिसिपेशन अपना दिया है, तो किन किन चीजों से लोगों को गुजरना पड़ता है, किस तरीके से अपने ऊपर काम करना पड़ता है, और वो आप हमारे लिसनर्स को बताइए ना प्लीज।
0: ऐसा होता है गगन जी, जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं तो ये इंडस्ट्री बड़ी फैसिनेटिंग होती है, बड़ी इल्यूजनरी होती है, हमें लगता है कि हम यहाँ आकर पता नहीं क्या कर देंगे, लेकिन जब हम इंडस्ट्री में एक्चुअल में जाते हैं तो देखते हैं कि जिंदगी कुछ और है।
1: राइट राइट।
0: लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी कि जहाँ चाह वहाँ रहा, तो तू जो चाहे अगर तेरे कदमों में हो शिखर, तो खुद पर यकीन कर।
1: क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
0: तो अगर आपकी अगर आपके अरमानों में चाहत में इतनी शिद्दत है, तो आप आरजे हो या आप कोई एक्टर हो, आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता।
1: बहुत खूबसूरत।
0: तो जिस एक्सटेंड तक आप मेहनत करेंगे जिस भी एस्पेक्ट में मीडिया की, तो ऑब्वियसली आपको उसमें
1: रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे।
0: और जब मिलना शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली वो चीजें आपको इंटरेस्ट देंगी, आपको बढ़ाएंगी और आपको जिताएंगी।
1: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। लिसनर्स, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहे कुछ भी करना चाहते हैं, चाह रखना बहुत जरूरी है, और जहाँ चाह होती है तो ईश्वर की दुआएं, शुभकामनाएं, बड़े बुजुर्गों का साथ, दोस्तों का प्यार, जब ये सारी चीजें मिलती हैं तो निश्चित तौर पर उसका जो रिजल्ट आता है, परिणाम बहुत सुखद होते हैं, वो आपके फेवर में होते हैं। और अपने ऊपर तो काम तो करना ही पड़ेगा भाई, रिसर्च वर्क करना पड़ेगा, जानना होगा, समझना होगा कि मुझे आरजे बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे मॉडलिंग के क्षेत्र में जाना है तो किस तरीके से अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हमारे साथ हो रही हैं, डॉक्टर प्रिया सचदेवा जुड़ी हुई हैं।
0: मैं यही कहना चाह रही थी कि जब मैंने मॉडलिंग एक्चुअली में की तो आप सोच भी नहीं सकते, आई वॉज टू फैट, आई वॉज हैविंग नियर अबाउट 75 kg ऑफ वेट, नो वन कैन थिंक ऑफ बींग अ मॉडल एट दैट स्टेज बिकॉज आई जस्ट डिलीवर्ड माई फर्स्ट बेबी। पर उसके बाद भी इतनी मेहनत करके आई गॉट इन फर्स्ट 10, दैट वॉज एन अचीवमेंट।
1: एक्सीलेंट एक्सीलेंट।
0: सो इन एवरी एस्पेक्ट इफ यू सी इट वॉज अ हार्ड वर्क विच एक्चुअली पेज।
1: राइट राइट, एब्सोल्युटली राइट। सो लिसनर्स, मैं भी वही बात कह रहा था, इस बात का सार यही निकल कर आता है कि अपने ऊपर अगर आप वर्क करेंगे या अच्छे टीचर आपको मिल जाएंगे तो निश्चित तौर पर रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। फिलहाल एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, आप कहीं जाएगा मत, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुनो शारदा 90.8 FM। प्रोग्राम है आपका अपना भाई बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें, मेरे यानी गगन के साथ।

0: फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं हूं गगन आपके साथ और मेरे साथ स्टूडियो में आज मेरे खास मेहमान हैं, गेस्ट हैं, डॉक्टर प्रिया सचदेवा। तो डॉक्टर प्रिया सचदेवा, एक बार फिर से आपका सुनो शारदा 90.8 एफएम पर बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी।
0: मैम, आपसे मेरी जो बातें हो रही थी कि जहां चाहा वहां रहा, बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी लाइनें हैं। ये सच है कि जिंदगी इम्तिहान लेती है, लोग आपका इम्तिहान लेते हैं, और अगर आप एक दृढ़ निश्चय के साथ चलते हैं तो मैं समझता हूं कि दिक्कतें परेशानियां आती जरूर हैं, लेकिन आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। बुक्स के बारे में थोड़ा आप मुझे बताइए कि आपने जो बुक्स पब्लिश हुई हैं, आपकी तीन बुक्स, जैसे कि आपने हमें बताया, न्यू मीडिया, एडवर्टाइजिंग एंड अफेक्टिवनेस, तो क्या सोच के आपके दिमाग में ये टॉपिक आए कि मुझे ये लिखना है, और क्या अभी आप कर रहे हैं बुक्स के रिगार्डिंग?
1: मैंने जब अपनी PhD कंप्लीट की तो वो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए भी और मेरे पूरे ग्रुप के लिए, क्योंकि मैं ही थी जिसने बहुत कम समय में बहुत अच्छे नंबरों से उस चीज को हासिल किया। चैलेंज ये था कि उस टाइम अगेन थोड़ा सा फैमिली कॉन्स्ट्रेंट्स थे जिसकी वजह से एकदम से वापस जॉइनिंग बैक नहीं कर सकती थी, तो मैंने उस टाइम को भी यूटिलाइज किया। इंस्टेड के मैं उस टाइम को ऐसे वेस्ट कर देती, मैंने उस दौरान 6 महीने में मैंने 3 किताबें लिखी, और मैंने वो 3 किताबें
0: ओह माय गॉड, बहुत बड़ा टास्क और इतने आसानी से ये कैसे कर पाई? अनुभव की वजह से?
1: अनुभव भी और काफी मेहनत और चाह थी, फिर यही कहूंगी, चाह बहुत थी कि ऑथरशिप हो, अपनी हो। तो जब सबको देखा करती थी, गुरुओं को, कि उनकी किताबें छप रही हैं, तो दिल करता था कि अपनी भी हो। तो जब अपना लिखना शुरू किया तो सारे वो लेटेस्ट चीजें जो आने वाले समय में बच्चों को फायदा देंगी। मीडिया एक ऐसी इंडस्ट्री है, ऐसी एक लाइन है जिसके अंदर हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है, तो बच्चों को ये समझने में बहुत आसानी होगी कि हर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एडवर्टाइजिंग की किताब लिखी थी, तो उसमें मैंने जिक्र किया है कि आने वाले टाइम में ये जो एड्स हैं ये क्या उनके लिए लेकर आएंगी और किस तरह की हो जाएंगी वो।
0: मतलब समझा नहीं, क्या लेकर आएंगे? रोजगार की बात कर रहे हैं आप या नजरिया
1: की बात? 10 साल के बाद इसका नजरिया उनके लिए क्या होगा? तो जो पर्सपेक्टिव्स आज से 10 साल के बाद वो सोचेंगे, वो मैंने कोशिश की है कि अपनी समझ से अपनी बुक में रखूं। अब जैसे हमारे जो ये बच्चे हैं, ये मिलेनियल्स हैं, तो अब इनके क्या शौक हैं, क्या ढंग हैं, ये गैजेट्स के साथ पैदा हुए हैं, गैजेट्स ही यूज करते हैं, जबकि हमारी एजुकेशन बहुत डिफरेंट थी। तो आज आने वाले टाइम में ये जो नया मीडिया है ये उसको कैसे चेंज कर देगा, और उनके लिए क्या चैलेंजेस होंगे, क्या थ्रेट्स होंगे, और किस आसानी से वो अडॉप्शन कर पाएंगे उन चीजों का, ये सब मैंने अपनी किताबों में।
0: बहुत खूबसूरत। जितना मैं आपसे बात कर पाया हूँ और जितना मैं समझ पाया हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि इस पे एक डिबेट हो सकती है या इस पे एक और चर्चा हो सकती है आपके साथ। वाकई रियली नाइस टॉक टू यू डॉक्टर। फिलहाल आप मुझे ये बताइए कि फिटनेस के बारे में आप मुझे बता रहे थे, और मैं ये जानना भी बहुत जरूरी है मेरे लिए कि किस तरीके से एक बंदा अपने आप को फिट रख सकता है, किस तरीके से वो अपने आप को आगे लेकर जा सकता है, और आपका फिटनेस का जो राज है वो देख के लगता नहीं कि बस आप मुझे यही बता ही दीजिए कि फिटनेस का राज क्या है।
1: मैं तो यही कहूंगी गगन जी कि फिटनेस के लिए सबसे पहले आपका पॉजिटिव माइंड होना बहुत जरूरी है, और दूसरा आपको अपने आप को ये समझाना बहुत जरूरी है कि जब आप व्यायाम करते हैं, रोज करते हैं, तभी भी कई लोग होते हैं जो अपना वजन कम नहीं कर पाते, उनको 10 तरह की बीमारियां होती हैं। वो इसलिए होती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनका फोकस एक चीज के ऊपर होता है। आपको अपनी मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल हेल्थ, सब चीजें एक साथ में देखनी होती हैं। तो अगर आप अपना डाइट कंट्रोल्स कर रहे हैं तो उसके साथ एक्सरसाइजेस भी जरूरी हैं, एक्सरसाइज के साथ वर्क लाइफ बैलेंस भी जरूरी है। तो अगर आप पर्सनल बैलेंस नहीं लेके चल रहे, सिर्फ वर्कहोलिक हो, तब भी दिक्कत है, क्योंकि भगवान ने ये जो सृष्टि रची है ये सब बैलेंस के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आप अपने सारे एस्पेक्ट्स को, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, सारे एस्पेक्ट्स को अगर आप बैलेंस करेंगे, तो आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइजेस और आप अपने जिमिंग्स पे, अपना वर्क लाइफ बैलेंस पे ध्यान देंगे, तो ऑफकोर्स आप मुझसे भी बेटर फिट होंगे।
0: बहुत खूबसूरत। यानी कि लिसनर्स, कहने का मतलब ये है कि इस बात का अगर हम सार निकालें तो संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, तालमेल बनाना बहुत जरूरी है, चाहे वो पढ़ने पढ़ाने की बात हो, खेलने की बात हो, फिटनेस की बात हो। अति अगर किसी चीज की हो जाती है वो कहीं ना कहीं हानिकारक होती है, हार्मफुल होती है हमारी सेहत के लिए। फिलहाल एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम आपको मिलेंगे यहीं, आप कहीं जाएगा मत। बहुत ही खूबसूरत गाना है कुड़ी मैनू कहंदी, हार्डी संधु की आवाज में ये गाना हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुनो शारदा 90.8 FM, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ मेरे साथ स्टूडियो में आज खास मेहमान हैं, जो कि मिसेज इंडिया ब्यूटी क्वीन 2014 में आपने पार्टिसिपेट किया, टॉप 10 तक आप पहुंची, डॉक्टर प्रिया सचदेवा। सो डॉक्टर प्रिया सचदेवा, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: आपकी बातों में मुझे एक चीज अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि इंसान को जमीन से जुड़े रहना बहुत जरूरी है, हवा में नहीं उड़ना चाहिए। अगर आपने कोई कंपटीशन जीत भी लिया है और आपके जो जज्बात हैं वो काबू में हैं, बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज कहते ना कि छोटी सी ख्वाहिशें अगर इंसान की पूरी हो जाती है तो वो फैल जाता है, आम भाषा में अगर हम इस बात को ऐसे रखें। तो साथ ही साथ आपने ये भी हमें रखा कि डिस्कस किया कि गुरु और शिष्य का जो तालमेल है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि और 19 साल का लगभग आपका एक्सपीरियंस है एकेडमिक का, तो ये जो तालमेल है आपको लगता है कि पहले जैसा रहा है या कुछ और बदलेगा? कहीं ना कहीं हम सम्मान में देखते हैं कि टीचर की बात स्टूडेंट्स नहीं सुनते, स्टूडेंट्स के साथ टीचर की कोऑर्डिनेशन जो है वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ाता हुआ नजर आता है। पहले के समय को अगर हम देखें तो इतनी अच्छी बॉन्डिंग हुआ करती थी कि ऐसा लगता था कि मतलब कुछ कह नहीं सकते कि गुरु के चरणों में हम लौट जाया करते थे, गुरु ने जो कह दिया उस बात को मतलब सचितार्थ है। तो आपको क्या लगता है कि कितना समय बदल चुका है और क्या बदलेगा?
1: मुझे लगता है चाहे वो बच्चे हैं या चाहे बड़े हैं, हर इंसान में कुछ नायाब होता है सीखने के लिए। अगर जैसे हम गुरु हैं लेकिन कुछ चीजें हम भी बच्चों से सीखते हैं, तो बच्चों के साथ जब हम तालमेल बिठाते हैं, मुझे बाकियों का तो नहीं पता बट अगर मैं अपना एक्सपीरियंस कहूँ तो मैं यही कहूँगी कि मैं बच्चों को समझने की पूरी कोशिश करती हूँ और बच्चों ने भी काफी हद तक इतने सालों में बहुत बच्चे पढ़ाए, बहुत बच्चों को गाइड किया, उनकी मेंटर भी रही, उनकी उनको गाइड भी करती रही। तो मैंने यही देखा कि अगर आप बच्चों के एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करें तो चीजें काफी सिंपल हो जाती हैं। इंस्टेड के अगर हम इम्पोज करें उनको कि ये चीजें होनी चाहिए, तो वो चीजें आज के टाइम में नहीं चल पाती, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत अवेयर हैं, बच्चे बहुत समझदार हैं, बच्चे बहुत प्रोग्रेसिव हैं। अब ये जरूरी नहीं कि आप जिस फील्ड में उनको चाह रहे हैं वो उसी में ही राइज करें। उनके जो कैपेबिलिटीज हैं उनको पॉलिश करना एक टीचर का मैं तो कहूंगी धर्म होता है, कि उनको समझना, उनकी काबिलियत को समझना और किस एस्पेक्ट में वो काबिल हैं, उनको पॉलिश करना एक मेंटर की सबसे बड़ी खूबी होती है।
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत आपने इस सवाल का जवाब दिया जो मैं आपसे जानना चाह रहा था। कि फिर भी हम यही कहेंगे कि लिसनर्स, तालमेल होना बहुत जरूरी है। ट्यूनिंग अगर आपकी जबरदस्त है आपके टीचर के साथ, टीचर की आपके साथ, तो निश्चित तौर पर जो आपके काम है वो बिल्कुल नहीं रुकेंगे। मसलन चाहे वो नंबर की बात हो, प्रोजेक्ट्स की बात हो, कुछ भी कोई बात क्यों ना हो, कभी कभी टीचर ऐसे भी मिल जाते हैं कि पर्सनल लाइफ के सजेशन भी आप उनसे मांग रहे होते हैं कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैडम प्लीज आप मुझे गाइड करिए।
1: मुझे तो ऐसा लगता है गगन जी कि शायद बच्चों के साथ आपकी जिंदगी जुड़ जाती है, क्योंकि आप उनके साथ माने ना माने कहीं ना कहीं उनकी कुछ सीखें जो उन्होंने इम्बाइब करी या आपने उनसे ली, वो आपके साथ कहीं ना कहीं जिंदगी भर चलती हैं।
0: बेशक बेशक, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और जब हम ना समझ होते हैं तो उस वक्त हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं, लेकिन जब हमें समझ आती है तो हमें वो टीचर याद आते हैं, हमें वो टीचर वाले जो दोस्त हैं वो याद आते हैं कि यार सर या मैडम हमें बहुत अच्छी वो गाइडेंस दिया करती थी, हमें बताया करती थी कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा। तो खैर डॉक्टर प्रिया सचदेवा, आप हमारे स्टूडियो आई, आपने बहुत सारी बातें पर्सनल लाइफ के बारे में

0: स्टूडेंट्स के बारे में, अपने स्कूल के बारे में, कॉलेजेस के बारे में आपने हमारे श्रोताओं को बताया, इस बात के लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जाते जाते मैं एक छोटा सा संदेश आपसे जानना चाहूंगा, ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं यही कहना चाहूंगी कि तू जो चाहे अगर तेरे कदमों में हो शिखर, तू खुद पर यकीन कर।
0: यकीन कर, यकीन कर, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। कहते ना कि खुद पर और खुदा पर भरोसा है तो निश्चित तौर पर आपको मंजिल मिलेगी जरूर। और जिस तरीके से मैडम ने जो बात कही, एक अनुभव के आधार पर ये बातें आपके सामने रखी है, आप कोशिश करते जाइए, प्रयास करते जाइए और निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। कहते ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती, लहरों से डरकर नौका कभी पार हुआ नहीं करती। तो डॉक्टर प्रिया सचदेवा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी।
0: सो लिसनर्स, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताइएगा जरूर। इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं। फिलहाल मुझे लेनी होगी आपसे अनुमति, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM। टाटा बाय, टेक केयर।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: जी दीदी, जैसे रहुआ कहला रहनी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखे नी, ओकेरा के तुरंत साफ करी नी। जैसे कि पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे, सब के साफ सफाई करी ले हम।
1: और आसपास कहूं भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कौनो भी चीज में पानी जमा

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: हाय, मैं उरन विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM। सुनो
1: शारदा। भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरु शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:08 हो चुके हैं। 6 तारीख है यानी कि मंडे का दिन 6 जुलाई। ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। हंसते खेलते आप आगे बढ़ते रहिए, जिंदगी को सरल सुगम आसान बनाइए, है ना। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर। इंस्टीट्यूट ऑल यू सुरक्षा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ। क्या है खास जानेंगे जरूर, मौसम के मिजाज के बारे में और मंडे मॉर्निंग के बारे में। सो आप सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरक्षा 90.8 एफएम।

0: सुनो शारदा 90.8 एफएम और स्मार्ट खड़े हैं रणभूमि में लेकर जागरूकता की तीर कमान, जो ग्रेटर नोएडा से मिटा देंगे टीबी का नामोनिशान। टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है। प्रत्येक टीबी के मरीज को उपचार के दौरान सरकार द्वारा 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं, जिसके लिए मरीज का एक बैंक अकाउंट नंबर और आधार कार्ड होना जरूरी है। स्वास्थ्य सही लाभ कही, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
2: महावारी के दौरान स्वच्छता का महत्व और बढ़ जाता है। महावारी के दौरान स्वच्छता के लिए आप विविध साधनों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि पैड, टेम्पू, महावारी कप

0: या साफ कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: यदि आप पैड का उपयोग करते हैं तो उसको जितना हो सके उतनी बार बदलें। दिन में कम से कम 2 से 3 बार पैड को बदलना चाहिए।
0: महावारी में सबसे अच्छा संभावित विकल्प महावारी कप है, जिससे पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता है।
1: महावारी कप सैनिटरी पैड और टैम्पोन के मुकाबले 5 गुना ज्यादा खून की मात्रा को एकत्र कर सकते हैं।
0: महावारी कप बैक्टीरिया के संक्रमण के जोखिम को कम कर है।
1: इसका दोबारा प्रयोग भी किया जा सकता है, इसमें खर्च भी कम होता है।
0: महावारी के दौरान साफ कपड़े का भी प्रयोग किया जा सकता है। एक साफ कपड़े को मोड़कर पैंटी में रखें। प्रयोग के बाद उसे साबुन और पानी से अच्छे से साफ करके धूप में सुखाएं।
1: प्रयोग किए गए कपड़े को छूने से पहले हाथों पर दस्तानों या प्लास्टिक की थैली को हाथ में पहन लें।
0: गंदे कपड़े का 1 हिस्सा क्लोरीन और 9 हिस्सा पानी के घोल में कम से कम 20 मिनट तक भिगो कर रखें। अगर क्लोरीन नहीं है तो कम से कम साबुन के पानी में 20 मिनट के लिए भिगो कर रख दें। पानी में साबुन की सही मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए देख लें कि पानी को घोलने और हिलाने पर उसमें बुलबुले हों।
1: हाथों पर दस्तानों या प्लास्टिक की थैली को हाथ में पहनकर गंदे कपड़े को सामान्य तरीके से साबुन और पानी से साफ करें।
0: साफ किए गए कपड़े को धूप में सुखाएं। बचे हुए साबुन के पानी को फेंकने के लिए गड्ढा खोदकर उसमें डाल दें।
1: अपने हाथों से दस्ताने या पॉलिथीन को निकाल दें और हाथों को पानी और साबुन से अच्छे से धो लें।
0: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.
4: बिल्कुल आपने सही सुना कि वसुधैव कुटुंबकम अर्थात ये धरा ये पृथ्वी एक परिवार है और शारदा परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूँ आपके साथ और हमेशा ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। हम ये भी कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सच बात तो ये कि जब विश्व में सुकून होगा, अमन होगा, शांति होगी तो निश्चित तौर पर व्यक्ति कहते ना वो प्रति व्यक्ति दूर दराज बैठा एक व्यक्ति पर उसका फर्क पड़ता है। हमने देखा कि पेट्रोल डीजल की दिक्कतें हमारे सामने बहुत बड़ी थी लेकिन भारत की दृढ़ निश्चय वाली शक्ति के साथ दिक्कतें परेशानियां कम हुई, लेकिन दूर देशों में दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ी। इसलिए अमन की कामना बहुत जरूरी है। सुबह सुबह मैंने एक दृश्य देखा। दृश्य ये था कि एक मैडम आई, अपनी गाड़ी को पार्क किया। मैडम भी वो सामने थी, पुरुषों को हमने देखा, हर कोई मैं भी होता तो शायद वही, पेड़ के नीचे अपनी गाड़ी को पार्क किया। शायद उस पेड़ को सींचा भी ना होगा, उस पेड़ को लगाया भी ना होगा, हो सकता है कि वो दूसरे तीसरे काम ऐसे सामाजिक करते भी होंगे। लेकिन उस सीन को देखकर यही मिला कि हम सुख सुविधाएं चाहते हैं। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको वो सारी चीज़ें नेचर आपको दे देती है, लेकिन अगर हम कुछ अच्छा नहीं कर रहे तो निश्चित तौर पर एक पौधा अपनी माँ के नाम ज़रूर लगाइए। बारिश शुरू होने जा रही है, बारिश जब शुरू होती है तो दिक्कतें परेशानियां भी हमारे सामने बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। हमें गड्ढे नज़र नहीं आते, नाले यूँ समझ लीजिए कि ब्लॉक हो जाते हैं, दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो शासन प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है कि नाले समय पर साफ हो जाएं और हमारा भी फर्ज बनता है कि नालों को हम ब्लॉक ना करें, है ना। और आए दिन हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो हाईवेज़ हैं, जो नए नए हाईवेज़ बने हैं, वो बारिश के पानी की वजह से धस रहे हैं और दुर्घटना ना घटे इसलिए स्लो आप आगे बढ़ेगा। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। और मौसम का जो मिजाज है वो बदल रहा है। सच बात तो है कि कल परसों बारिश हो गई, उसके बाद आज उमस बहुत ज़्यादा है। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, पानी भरपूर पीजिएगा। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। बारिश चाहते हैं लेकिन गाना तो बनता है ना।

वेलकम बैक एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन गिजार। एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि ज्ञान विज्ञान की बातें, पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, तमाम सकारात्मक बातें हम आप तक पहुंचाएं। नकारात्मक बातों से कहीं ना कहीं हमें एक सीख मिलती है कि ये घटना दुर्घटना भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, उस बात का हम ध्यान रखते हुए वो बातें भी हम आप तक पहुँचा रहे होते हैं। वर्तमान समय में सच बात तो है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी के मौसम में दिक्कतें परेशानियां भी हमारे सामने बहुत ज़्यादा आती हैं। उमस जब होती है तो और ज़्यादा दिक्कतें सामने आती हैं, यानी कि स्वास्थ्य आपका गड़बड़ा जाता है, दिक्कतें बढ़ती चली जाती हैं। ऐसे समय में डॉक्टर की राय लेना, सलाह मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ख़ास बात यह है कि फॉलोअप करते रहना, डॉक्टर से मुलाकात करते रहना और समय दर समय वो जो पुड़िया देते हैं, हाँ वो जो खुराक देते हैं, खुराक जो देते हैं उसको समय पर लेंगे तो उसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। और अदरवाइज़ जब डॉक्टर साहब पूछते हैं कि क्या खाया आपने, वो जो कहते हैं वो आपने नहीं खाया दवा ली, वो जो आपको कहा गया कि समय पर दवा लीजिएगा वो जो आपने समय पर दवा नहीं ली, दिक्कतें और बढ़ सकती है। तो कहने का मतलब ये कि डॉक्टर्स का जो दिशा निर्देश है उसको फॉलो करेगा, पानी भरपूर पीजिएगा, बरसात के मौसम में तले बुने जो पदार्थ हैं उनसे आप अपने आप को बचा कर रखिएगा, बासी खाना मत खाएगा, ओ माय गॉड बहुत सारी चीज़ें इनको ध्यान रखिएगा, नज़रअंदाज ना करेगा। और बस सेहत है तो जहान है। और यही बात को ध्यान रखते हुए सुबह 10 बजे एक विशेष कार्यक्रम रेडियो नोएडा के रेडियो ग्रेटर नोएडा, हाँ ग्रेटर नोएडा के माध्यम से हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और सुबह 10 बजे एक विशेष कार्यक्रम होगा, सुनो शारदा 90.8 एफएम पर सेहत सही लाभ गई। अगर आपके शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। खून की कमी ना हो इस बात का ध्यान रखते हुए ये विशेष कार्यक्रम हमने आप तक पहुंचाया, इसका लाभ उठाएगा। और विशेषकर मातृत्व यानी कि जो गर्भवती महिलाएं उनको क्या क्या करें क्या ना करें वो ध्यान देने वाली बात है। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ सिर्फ सोनू शारदा 90.8 एफएम पर।

0: नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है।
1: काकी, आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना?
0: हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है।
1: हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सके, और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी।
0: दुल्हन सुंदर ही नहीं, समझदार भी है।
2: आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
6: नवी नवी आई बी चंडीगढ़ शहर रख सांभ के तू रूप तेरा कत्ते दी दुपहर। नवी नवी आई बी चंडीगढ़।

क्या बात है, इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ 9:36 छह तारीख गुड मॉर्निंग। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में क्या खास हो रहा है वो जानना समझना हमारे लिए, हम सबके लिए बहुत जरूरी है। मैं बात करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि UPMSP ने यूपी बोर्ड की कक्षा 10th और 12th की कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा का स्केड्यूल जारी कर दिया है। अगर आपका बच्चा ये परीक्षा देने जा रहा है तो उसके बारे में मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन के मुताबिक ये जो परीक्षा है, ये जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसकी डेट आ चुकी है, जुलाई है। जुलाई में डेट है 28 जुलाई, यानी कि दिन पड़ रहा है मंगलवार। और कक्षा 10th का कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम सुबह की शिफ्ट में होगा। 12वीं कक्षा का जो एग्ज़ाम होगा वो दोपहर की शिफ्ट में लिया जाएगा। इसके लिए जल्द ही यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए जाएंगे, तो इसके बारे में आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। और डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो गूगल के माध्यम से भी बहुत सारी डिटेल आप ले सकते हैं। लेकिन टाइमिंग सुबह 8:30 से लेके 12:45 बजे तक, दोपहर के वक्त में दोपहर 2 बजे से लेकर 5:15 बजे तक ये परीक्षा रहेगी। और पासिंग मार्क्स का भी इसमें जिक्र किया गया है कि 33 नंबर पासिंग मार्क्स हैं। और इस तरीके से साथ ही साथ प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। कड़ी निगरानी में ये परीक्षाएं होने जा रही हैं। आज मतलब जिनके 32 रह गए तो वो 33 में पास हो जाएंगे ना। हाँ, अगर आप पढ़ोगे तो निश्चित तौर पर पास हो जाओगे। मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती है ना। योग्यता होना बहुत ज़रूरी है, स्किल डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। सिर्फ अगर आप अंकों पर ध्यान देंगे, योग्यता पर ध्यान नहीं देंगे, अपनी जो क्वालिटी है उनको निखारने की कोशिश नहीं करेंगे तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। मेरे ख्वाबों में क्या बात है, ब्यूटीफुल ट्रैक ऑलियो सुरशादा 90.8 एफएम गुड मॉर्निंग। सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। सुरक्षित चले, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। घर में बॉस, हाँ ऑफिस में सुपर बॉस, कहते हैं अभी नहीं आया गगन, कहाँ रह गया, हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो हेलो करके परेशान कर देते हैं। गुड मॉर्निंग।

0: इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरु शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:45:04 हो चुके हैं 6 जुलाई यानी कि सोमवार का दिन। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी, बच्चा लो कमर कस लीजिए क्योंकि 28 जुलाई को आपकी परीक्षा निर्धारित कर दी गई है और ये जो समय 10th का 12वीं कक्षा का कंपार्टमेंट प्लस इम्प्रूवमेंट परीक्षा आपकी होने जा रही है और प्रैक्टिकल की डेट भी आ चुकी है यानी कि 16 और 17 जुलाई को आपकी प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी और परीक्षा में पास होने के लिए छात्रों को हर विषय में 33 नंबर लाना अनिवार्य है।
1: अच्छा तो कुछ लोग फेल भी होंगे?
0: हाँ, कुछ 32.5, कुछ 33। कोशिश करते रहे, कहते कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती। चलिए खास बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। खास बात ये कि अक्सर हमने देखा है कि जब आंधी बारिश तूफान आ रहा होता है, बारिश भी होने जा रही होती है और गरज बरज के साथ बिजली चमकती है तो अक्सर हमने घटनाएं दुर्घटनाएं घटते हुए देखी हैं। मैंने अपने बच्चे को छत पर जाने से रोका क्योंकि मुझे पता है कि जब बिजली कड़कती है, बिजली गिरती है तो बहुत बड़ी घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं। अक्सर हमने ये देखा है कि जब बारिश का मौसम हो रहा होता है तो बिजली गायब हो जाती है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है। तो इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लॉजिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ में निकल कर आती हैं कि होता क्या है कि कुछ डिवाइस यानी कि जब आसमान से बिजली गिरती है तो कभी कभी वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और करंट के चांसेस होते हैं और डिवाइसेस जब अक्सर हमने ये भी देखा है कि एकदम जब लाइट आती है तो कभी कभी आपका फ्रिज फूक जाता है, वोल्टेज फूक गया, मतलब जो वोल्टेज समझ रहे ना, दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप अपनी समझदारी दिखाइएगा और बेवकूफ़ी हम ना करें यानी कि बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, फोन लेकर छत पर चले गए तो अगर संपर्क हुआ हाँ तो हमारा भी आत्मा का परमात्मा से संपर्क हो जाएगा। समझा करो, भावना भावना को समझो, फीलिंग्स। ब्यूटीफुल ट्रैक ऑलियो सुनो शारदा 90.8 एफएम। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूँ गगन आपके साथ सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।

0: इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:52 हो चुके हैं, 6 तारीख है। हमारे आसपास क्या खास है उसके बारे में लगातार मैं आपको बताता रहता हूँ। खास बात ये भी निकल कर सामने आ रही है कि स्वतः ही नवंबर से लेकर 4 महीने तक ग्रैब सिस्टम लागू हो जाएगा दिल्ली के अंदर। तो अगर आपको लगता है कि कोई प्राथमिकता है किसी काम की तो आप पहले उस काम को करा सकते हैं, अदरवाइज दिक्कतें परेशानी आपके सामने बढ़ सकती हैं क्योंकि AQI उस दौरान बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में रहता है और जिस वजह से दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है। हर रोज कुछ ना कुछ खास बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा होता हूं और एक खास बात ये भी है कि एक दूसरे का हमें सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। ऑन रोड छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हमने देखे, लेकिन कहीं इतर विपरीत जब हमने एक वीडियो को देखा कि लोग समझदारी से काम ले रहे हैं कि ऑन रोड झगड़े हो जाते हैं लेकिन अगर हम समझदारी से काम लें तो पुलिस से कोर्ट कचहरी से बच सकते हैं, दोनों ही पार्टियां समझदारी से काम लें तो अपना समय बर्बाद होने से बचा सकती हैं, मुआफ़ी के साथ भी काम चल सकता है कि सर मैं माफ़ी चाहता हूं कि मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से आपका ये नुकसान हो गया और जो है वो मैं पे करने के लिए तैयार हूं। जब ऐसी वीडियो को मैंने देखा तो मुझे लगा क्यों नहीं हम इस पर बात कर सकते, हमें बात करनी भी चाहिए, लेकिन अक्सर हमने ये देखा है कि तूने मुझे हॉर्न क्यों दिया, तूने मुझे साइड क्यों नहीं दी, तूने मुझे ओवरटेक क्यों किया वगैरह वगैरह। दिक्कत है, समस्याएं वहीं से क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। थोड़ी सी समझदारी अगर आप दिखाएंगे तो जिंदगी भर का लाभ पाएंगे।
1: क्या बात है, कितनी अच्छा गाना भी आ गया।
2: प्रोड्यूस्ड एंड अरेंज्ड बाय जैकी वंजारी, सिंगर सोनू निगम एंड ऐश्वर्या भंडारी, लिरिक्स बाय कुमार, म्यूजिक बाय श्रेयस पुराणिक। दो दीवाने शहर में ओनली ऑन सारेगामा, सो लेट्स एंजॉय इट केवल सुनो शारदा 90.8 FM।
0: क्या बात है, सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ।

वक्त का इशारा, मैं होता हूँ 9-11। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। न टेंशन लेने की जरूरत, न किसी को टेंशन देने की आवश्यकता। जिंदगी बहुत खूबसूरत है जनाबे आली, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शारदा 90.8 FM। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूँ आपके साथ, और सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक लगातार हम यहाँ से ऑन एयर होते हैं। ज्ञान विज्ञान पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, ये तमाम बातें हम आप तक पहुँचा रहे होते हैं। तो 120-40-60-205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। इसके अलावा 90.8 FM@sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं। वक्त का इशारा हो रहा है और मैं ले रहा हूं आपसे अनुमति। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार। चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं, लेकिन गड्डी पूरे होशो आवाज

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।
6: मेरा नाम गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग की दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी, और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 सो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
7: स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
8: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपका दोस्त शशि कपूर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या की जो हमारे आसपास बहुत आम है लेकिन कई बार समय रहते पहचान नहीं हो पाती, गर्भावस्था के दौरान खून की कमी यानी एनीमिया। कई बार लोग सोचते हैं कि गर्भवती महिला को कमजोरी, थकान या चक्कर आना तो सामान्य बात है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? क्या इसके पीछे खून की कमी भी हो सकती है? अगर हाँ तो इसे कैसे पहचाना जाए, कब जांच करानी चाहिए और माँ और बच्चे दोनों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सिहतिया सिंह और टीकन देवी जी। तो सबसे पहले आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद कपूर साहब। मैं यानी कि सिहतिया सिंह की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ मेरे श्रोताओं को भी बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार।
0: तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा सिहतिया जी, ये बताइए कि आखिर ये एनीमिया होता क्या है?
1: देखिए शशि कपूर साहब, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा बिकॉज क्योंकि ये जो विषय है हम सब ने बड़ा ही खास सब्जेक्ट चुना है। जैसे कि हम सब जानते हैं, स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक विशेष कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत सही तो लाभ गई। ये एक ऐसा कार्यक्रम है कि हमेशा सुना जा सकता है, किसी खास दिवस का ये कार्यक्रम नहीं है, किसी खास उपलक्ष में कार्यक्रम नहीं है, ये बात है हमारे आपके हम सबके स्वास्थ्य की। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब घर की महिला स्वस्थ होगी तो हम भी स्वस्थ होंगे। अब मैं विषय पर आता हूँ। सरल भाषा में कहें तो जब शरीर में खून की कमी हो जाती है या खून में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तब उसे एनीमिया कहा जाता है।
0: और गर्भवती महिलाओं में ये इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?
1: क्योंकि गर्भावस्था के दौरान माँ के शरीर को अपने साथ साथ बच्चे की जरूरतें भी पूरी करनी होती हैं। ऐसे समय में आयरन और फॉलिक एसिड की जरूरत काफी बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर ये जरूरत पूरी न हो तो खून की कमी हो सकती है।
0: तो क्या सिहतिया भैया, खून की कमी का असर केवल गर्भवती महिला पर पड़ता है?
1: देखिए सवाल बहुत अच्छा है और आपके सवाल का जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर गर्भवती महिला और बच्चे दोनों पर पड़ सकता है। देखिए मैंने इसमें ऐड किया, ध्यान देने वाली बात है कि दोनों पर इसका फर्क पड़ता है, जिसे हम आम भाषा में कहा जाता है जच्चा और बच्चा, दोनों पर इसका फर्क पड़ सकता है। दोस्तों, अगर समय पर पहचान और इलाज न हो तो समय से पहले प्रसव, कम वजन का बच्चा और मां के स्वास्थ्य से जुड़ी कई परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए जितनी जल्दी पहचान होगी उतना बेहतर परिणाम मां और बच्चे दोनों के लिए मुफीद यानी कि लाभकारी होगा। दोस्तों,
0: यानी गर्भवती महिला का स्वास्थ्य सीधे बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ा है।
1: बेशक, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी वजह से विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि हमें केवल बीमारी का इलाज नहीं बल्कि कुपोषण और एनीमिया के दुष्चक्र को भी तोड़ना है।
0: वो कैसे?
1: बिल्कुल सही सवाल आपने किया भाई। जब मैंने इतनी गंभीर बात कर दी तो सवाल तो ये पैदा होता ही है। चलिए मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई गर्भवती महिला खुद कुपोषित है यानी कि उसका खान पान अच्छा नहीं है, पोषण वाला भोजन नहीं ले रही, उसको हम कह रहे हैं कुपोषित, और उसे खून की कमी है तो उसका असर गर्भावस्था और बच्चे के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। बाद में यदि बच्चे को भी पर्याप्त पोषण ना मिले तो वो भी कुपोषण और खून की कमी की समस्या से प्रभावित हो सकता है और इस तरह कुपोषण और एनीमिया का एक दुष्चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। दोस्तों, इसलिए गर्भवती महिला का पोषण, जांच, समय पर इलाज बहुत महत्वपूर्ण है।
0: तो दोस्तों, ये बात सचमुच सोचने वाली है, यानी आज माँ के स्वास्थ्य में किया गया निवेश आने वाले बच्चे के भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है। तो सिहतिया सिंह जी, कई श्रोता सोच रहे होंगे कि खून की कमी के लक्षण क्या होते हैं, तो आप जरा बताइए इसके बारे में।
1: देखिए साहब, अगर आयरन की कमी है, अगर गर्भवती महिला बहुत कमजोर महसूस करती है, अगर उसे चक्कर आते हैं, सांस फूलती है, दिल की धड़कन तेज लगती है या रोजमर्रा का काम भी भारी लगने लगा, तो ये केवल थकान नहीं हो सकती ये आयरन की कमी के लक्षण हो सकते हैं दोस्तों।
0: लेकिन कई बार तो लोग इन बातों को गर्भावस्था का सामान्य हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी टिकन भाभी?
2: हाँ नमस्कार श्रोताओं, मैं टिकन देवी एक बार फिर हाजिर हूँ और आज का जो हमारा विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ हमारे दोनों साथी जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगी कि यही सबसे बड़ी गलती है। हमारे गांव की रीना की कहानी मैं आज आपको सुनाती हूँ। दूसरी बार गर्भवती हुई थी, उसे लगातार कमजोरी रहती थी, घर वाले कहते थे कि गर्भ में बच्चा है, थोड़ा बहुत तो होगा ही। लेकिन एक दिन आशा बहन उसे स्वास्थ्य केंद्र ले गई, वहाँ खून की जांच हुई, पता चला कि उसे एनीमिया है। अगर जांच नहीं होती तो शायद ये बात कभी पता ही नहीं चल पाती।
0: तो फिर क्या रीना ने इलाज शुरू कराया?
2: हाँ बिल्कुल, रीना ने इलाज शुरू कराया। उसने स्वास्थ्य कर्मी की सलाह मानी, नियमित जांच कराई और अपने खान पान पर भी ध्यान दिया। कुछ समय बाद उसकी स्थिति में सुधार आने लगा। यही वजह है कि समय पर पहचान बेहद जरूरी है।
0: यानी केवल लक्षण देखकर अनुमान लगाने की बजाय जांच कराना जरूरी है।
2: बिल्कुल, और इलाज तो तभी संभव होगा ना जब पूरा परिवार गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देगा, जो कि बेहद जरूरी है।
0: तो अब सबसे जरूरी सवाल, गर्भवती महिला को जांच कब करानी चाहिए?
1: देखिए साहब, गर्भ ठहरते ही स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराना बहुत जरूरी है। उसके बाद हर ANC संपर्क पर जांच करवानी चाहिए।
0: ANC यानी गर्भावस्था के दौरान होने वाली नियमित जांच?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और पूरी गर्भावस्था में कम से कम 4 ANC जांच करानी चाहिए।
0: और इन जांचों में क्या क्या देखा जाता है?
1: कई बातें देखी जाती हैं, लेकिन खून की जांच बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि गर्भवती महिला में खून की कमी है या नहीं।
0: तो सिहतिया भैया, अगर जांच में खून की कमी मिलती है तो क्या हर स्थिति एक जैसी होती है?
1: नहीं, खून की कमी अलग अलग स्तर की हो सकती है दोस्तों। अगर हीमोग्लोबिन 10 से 10.9 ग्राम के बीच हो तो इसे हल्का एनीमिया कहा जाता है। 7 से 9.9 ग्राम के बीच हो तो मध्यम एनीमिया, और 7 ग्राम से कम हो तो गंभीर एनीमिया कहा जाता है दोस्तों।
0: मतलब आपके कहने का ये है कि यानी हर स्थिति में एक जैसा इलाज

0: नहीं होता।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: तो सिहतिया भैया, इसके बाद अब बात करते हैं इलाज और बचाव की। अक्सर IFA और MMS का नाम सुनने को मिलता है, आखिर ये दोनों है क्या?
1: बिल्कुल, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। IFA यानी आयरन और फॉलिक एसिड की गोली, और MMS ऐसी पूरक गोलियां हैं जिनमें आयरन के साथ कई जरूरी विटामिन और खनिज भी होते हैं, जो गर्भवती महिला और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं।
0: यानी MMS सिर्फ आयरन नहीं बल्कि कई जरूरी पोषक तत्वों का समूह है।
1: बिल्कुल सही पकड़े।
0: लेकिन क्या केवल गोलियां ही पर्याप्त हैं?
1: ये बात भी बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। नहीं, मैं तो कहूंगा नहीं, पूरक गोलियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके साथ संतुलित और पौष्टिक भोजन भी उतना ही जरूरी है।
2: हाँ बिल्कुल सही, केवल गोली खाने से बात पूरी नहीं होती, घर का भोजन पूरक आहार दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण हैं।
0: तो टीकन देवी जी, किस तरह का भोजन?
2: जब आप भोजन की बात कर रहे हैं तो सुनो शारदा सामुदायिक रेडियो के माध्यम से मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि घर में जो उपलब्ध हो उसमें पौष्टिकता पर ध्यान दें। खासकर प्रोटीन युक्त भोजन बेहद महत्वपूर्ण है। चना, दाल, राजमा, दूध, दही, अंडा, पनीर, स्थानीय रूप से उपलब्ध अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शरीर को ताकत देने में मदद करते हैं।
0: यानी भोजन में केवल मात्रा नहीं गुणवत्ता भी जरूरी है।
2: हाँ बिल्कुल, आपको भोजन का ज्ञान होना भी जरूरी है। गर्भवती महिला को पर्याप्त भोजन, पूरक आहार और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ मिलने चाहिए। परिवार को ध्यान रखना चाहिए कि सबसे आखिर में नहीं बल्कि प्राथमिकता के साथ उसे भोजन मिले।
0: ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण कही टीकन जी आपने। सिहतिया भैया, आजकल एक ऐसा शब्द जिसका नाम लोग बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, वो है IVFCM, ये क्या है?
1: देखिए साहब, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि IVFCM हर गर्भवती महिला के लिए नहीं होता।
0: अच्छा,
1: मैं इस बात को फिर दोहराना चाहूंगा शशि कपूर साहब कि IVFCM हर गर्भवती महिला के लिए नहीं होता। अब आपकी बात पर मैं आता हूँ। हाँ, इसका उपयोग उन गर्भवती महिलाओं में किया जा सकता है जिनमें जांच के बाद मध्यम या गंभीर आयरन की कमी से होने वाला अनीमिया पाया गया हो और डॉक्टर को ये लगे कि तेजी से सुधार की जरूरत है।
0: यानी पहले जांच फिर डॉक्टर की सलाह।
1: बिल्कुल, और भी सरल भाषा में कहें तो ये आयरन शरीर में चढ़ाया जाता है नस के रास्ते, ड्रिप लगाकर। इसका इस्तेमाल उन स्थितियों में किया जा सकता है जहां जांच में आयरन की कमी से होने वाला मध्यम या गंभीर अनीमिया पाया गया हो और डॉक्टर तेज या निगरानी में इलाज को जरूरी समझें।
0: तो लोग अपने मन से इसकी मांग नहीं कर सकते?
1: नहीं, कौन सा इलाज उचित है इसका निर्णय स्वास्थ्य केंद्र की सलाह और डॉक्टर की जांच के आधार पर होता है।
2: हाँ, और एक बात याद रखिए, इलाज का सही रास्ता है जांच, डॉक्टर की सलाह, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और जरूरत होने पर आगे की निगरानी।
0: तो दोस्तों, आज की चर्चा से एक बात साफ हो गई कि कमजोरी को सामान्य मानकर टालना सही नहीं है।
2: बिल्कुल, अगर घर में गर्भवती महिला है तो उसकी जांच समय पर कराइए, उसे पौष्टिक भोजन दीजिए, भोजन में प्राथमिकता दीजिए, पूरक आहार और IFA या MMS जैसी पूरक गोलियां नियमित लेने में मदद कीजिए। स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े रहिए, यही महिला के स्वास्थ्य को आगे लेकर जाएगा।
1: और याद रखिए, जो गर्भवती महिलाएं गर्भ ठहरते ही पंजीकरण करवाती हैं, समय समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाती हैं और पूरी गर्भावस्था में कम से कम 4ANC जांच कराती हैं, उनके स्वस्थ रहने और बच्चे के स्वस्थ पैदा होने की संभावना बढ़ती है। दोस्तों
0: बिल्कुल, तो आज के कार्यक्रम में सिहतिया भैया और टीकन देवी जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो दोस्तों, आज का पहला कदम क्या हो, अगर घर में गर्भवती महिला है तो उससे पूछिए क्या उसका पंजीकरण हुआ है, क्या उसकी खून की जांच हुई है, क्या वो नियमित ANC जांच करवा रही है, क्या वो IFA या MMS जैसी पूरक गोलियां ले रही है, क्या उसे पर्याप्त पौष्टिक भोजन और प्रोटीन युक्त आहार मिल रहा है। याद रखिए, समय पर पहचान, अच्छा पोषण, पूरक आहार और सही इलाज से माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सकता है। इसी संदेश के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले अंक में, जहां हम बात करेंगे मध्यम और गंभीर एनीमिया और IVFCM की भूमिका पर। और अब चलते चलते सिहतिया भैया और टीकन देवी जी, अगर आप हमारे श्रोताओं से कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं।
2: तो नमस्कार श्रोताओं, मैं टीकन देवी आपसे विदा लेती हूं और महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े बहुत से मुद्दे पर हम आपसे बात करते रहेंगे। हमारा सामुदायिक रेडियो स्टेशन और स्मार्ट मिलकर जो कार्यक्रम चला रहे हैं सेहत सही लाभ कई, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम अपने समुदाय के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें।
1: बिल्कुल सही कहा टीकन देवी जी, और साथ ही साथ शशि कपूर साहब, टीकन देवी जी और सभी श्रोताओं को एक बार फिर से मैं अनुमति लेते वक्त दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत आभार धन्यवाद, क्योंकि आपने हमें सुना, बहुत अच्छा विषय हम लेकर आए अपने श्रोताओं के लिए। बस यही कहेंगे कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और कहते हैं कि सेहत सही तो लाभ कई। इन्हीं दुआओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ, आशा के साथ कि एक अच्छा विषय फिर से हम लेकर आएंगे आपके बीच, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं, सुनो शारदा सामुदायिक रेडियो स्टेशन और स्मार्ट मिलकर के स्वास्थ्य जन जागरूकता का कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई। और बहुत सारी जानकारी आज हम डॉक्टर साहिबा से लेंगे और खास करके हम जो गर्भवती महिला हैं, बच्चे हैं, उनके बारे में बात करेंगे और पोषण के बारे में बात करेंगे। और ये देखा भी जाता है कि जो महिलाएं होती हैं परिवार में, परिवार की धुरी होती हैं और वो सबका ख्याल तो रखती हैं लेकिन कहीं ना कहीं अपना ख्याल वो नहीं रख पाती हैं, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें, ये सभी बातें आज हम डॉक्टर बेबी शर्मा जी से करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर बेबी शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत।
1: थैंक यू।
0: खून की कमी की बीमारी अक्सर हम सुनते हैं, देखते हैं कि महिलाओं में ये ज्यादा, खासकर गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें तो ये ज्यादा ही होती है और बच्चों में भी बीमारी देखने को मिलती है, तो इसकी क्या वजह है बीमारी की और किस तरह से जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं?
1: सबसे पहले तो सर, जो आपने ये जागरूकता अभियान चला रखा है इसके लिए मैं आपकी बहुत ही प्रशंसा करना चाहूंगी, क्योंकि आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हमारे आसपास के लोगों के स्वास्थ्य को जागरूक करने के लिए, उनको अपने हेल्थ के बारे में जागरूक करने के लिए आप ये अभियान चला रहे हो, तो ये मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। और इसके लिए मेरी तरफ से जितनी भी अच्छी जानकारी हो पाएगी मैं वो आपको जरूर देने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले तो यही है कि खून की कमी, ये यहाँ के एरिया में तो सर बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ही कॉमन, खासकर बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में। सबसे मेन जो बेसिक रीज़न है वो तो यही है सर कि पोषण की कमी है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, डाइट का और लाइफस्टाइल का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से डे बाय डे आपका HB जो है कम होता जाता है, RBCs है उनकी क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी कम होती जाती है। किसी भी तरह का एनीमिया हो, या तो HB कम होता है या जो आपकी RBC है वो अच्छी तरह से मैच्योर नहीं होती, वो फंक्शन नहीं करती है ढंग से, वो भी एक एनीमिया का ही रूप होता है। तो सबसे जो मेन कारण होता है वो तो आपका यही है कि आपकी जो खान पान है उसमें पूरी तरह से लापरवाही होती है। अच्छा, दूसरा रीज़न क्या होता है, कई लोग कहते हैं कि हम डाइट तो अच्छी लेते हैं लेकिन फिर भी क्यों थकावट रहती है, क्यों एनीमिया रहता है। उसमें फिर हमारा दूसरा जो कंसर्न आ जाता है वो आता है सर मानसिक स्वास्थ्य के। अगर आप अच्छी डाइट लेते हो, देखिए मैं आयुर्वेद की डॉक्टर हूँ, हमारे आयुर्वेद में खाने के टाइम के भी 10-15 रूल्स हैं कि आपको इस तरह से खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और किस मनस्थिति में खाना चाहिए। अगर आप क्रोध में खाओगे, अगर आप अवसाद में खाओगे, दुख में खाओगे, तो आप कितनी भी अच्छी डाइट ले रहे हो वो आपको कोई भी फायदा नहीं करेगी, और डे बाय डे फिर वही किसी ना किसी रूप कमजोरी के रूप में आपका शरीर उसको दिखाएगा, चाहे वो कैल्शियम की कमी हो जाए, हड्डियों में से पोषण चला जाए, या फिर वो एनीमिया के रूप में आपका आएगा। तो सबसे पहला तो आपका रीज़न हो गया कि पोषण की कमी तो है ही है, आपकी डाइट सही नहीं है, आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है। दूसरा है कि आपकी जो मनस्थिति है वो आपकी उसके एक्यूरेट नहीं है, जो आपकी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शन होने चाहिए कि कैसे सेल्स बनती है, कैसे RBC WBC प्लेटलेट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो इस चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो काफ़ी हद तक हम एनीमिया से को कंट्रोल कर सकते हैं।
0: तो बहुत सारी बातें आपने बताई हैं डॉक्टर बेबी शर्मा जी, तो अब बात करते हैं कि जो हम एनीमिया की बात कर रहे हैं तो इसकी कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। मान लीजिए कोई एनीमिया का शिकार हो चुका है, महिलाएं हैं या बच्चे हैं, तो एक तो ये कंडीशन आ गई, दूसरे के निकट भविष्य में ये हमको ना हो, तो दोनों कंडीशनों के बारे में आपसे जानना चाहें, क्या खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं।
1: देखिए सबसे पहले तो अगर आपके आसपास कोई सुविधा है तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले एक बार अपना ब्लड टेस्ट करवा लें। सबसे कॉमन जो बेसिक टेस्ट होता है वो होता है CBC, उससे एक्यूरेट ये पता चल जाता है कि आपका एनीमिया का लेवल किस लेवल तक का है। आपका जो नॉर्मल BP है फीमेल्स में अगर हम बात करें तो 12 से 16 ग्राम होना चाहिए, जो छोटे बच्चे हैं 10 साल तक के उनमें 13 से 17-18 ग्राम तक भी हम नॉर्मल मान के चलते हैं। तो अगर आप आसपास ऐसी कोई सुविधा है तो जरूर से एक बार अपना CBC टेस्ट करा लें, ताकि एक रीजन का पता चल जाए, जब हमें रूट कॉज पता चल जाएगा तो हम उसको आसानी से दूर कर सकते हैं। दूसरी बात, चलो आपके आसपास कोई ऐसी सुविधा नहीं है, ऐसे तो फिर डॉक्टर के पास जाओगे तो वो जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, आपको जैसा आहार विहार बताएंगे आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। दूसरी बात, जो आपको घर पे खुद ध्यान रखनी है, अगर आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो या उनकी भी सारी गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो आपको खुद क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो अपने एक दिनचर्या बनाइए। जब तक आप एक अच्छी दिनचर्या नहीं बनाएंगे तब तक आपकी सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। जैसा हम कई बार सुनते भी हैं कि अगर आप एक मटके को भरना चाहते हो तो उसमें जितने छेद है पहले उन छेद को बंद कर दीजिए, फिर डे बाय डे आपका मटका भर जाएगा। तो आपकी लाइफ में जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो एनीमिया कोज कर रही हैं, पहले तो उनको दूर कर दीजिए। इसके लिए एक संतुलित आहार, संतुलित विहार, दोनों चीज़ें हम मेंशन करते हैं। हमारे आयुर्वेद में देखिए स्वस्थ की परिभाषा होती है, सम दोषः सम अग्निश्चय सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते। मतलब जिसके दोष सम है, जिसकी धातु सम है, जिसकी मल क्रिया यानी जो आपके मल है, यूरिन पास आउट है, स्टूल पास आउट है, वो समय पर हो रही है, जिसकी आत्मा और इंद्रिय प्रसन्न है, सिर्फ उसी को हम स्वस्थ कह सकते हैं। इसमें आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी आ गया, आपका मानसिक स्वास्थ्य भी आ गया। तो अभी हम बात करें सिर्फ एनीमिया के बारे में, तो इसके लिए क्या करना है, एक संतुलित दिनचर्या बनानी है। आपका उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए, उठने के बाद 5-10 मिनट आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस को दीजिए, शांति से बैठिए, अपना शेड्यूल बनाइए कि आज हमें डाइट में ये लेना है। अब घर में अगर आपके बहुत अच्छी डाइट नहीं है, देखो सब तरह की फैमिलीज होती है, बहुत अच्छा अगर आपको पोषण नहीं मिल रहा है तो घर में जो चीज़ अवेलेबल है उनको भी अगर संतुलित तरीके से खाते हैं, अगर आपके घर में दाल है स्प्राउट्स बना सकते हो आप उनके, मल्टीग्रेन आटा यूज कर सकते हो, अगर आपके घर में बादाम नहीं है तो कोई बात नहीं आप मूंगफली का भी यूज कर सकते हो। तो घर में जो चीज़ होती है उसी को संतुलित तरीके से खाकर एक समय पर, ऐसा नहीं है कि लेडीज क्या करती है 12-1 बजे सारा काम हो गया फिर अपना खाना खाएंगी, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। सुबह 7

0: आप भी ले सकते हैं। तो आंवले का यूज, पुनर्नवा मंडूर का यूज और घर पे जितने भी आपके खाने पीने की सुविधा है। देखो फ्रूट्स में तो हम बात करते हैं अनार, गाजर, सेब, चुकंदर, मौसम के अकॉर्डिंग जो भी मौसमी फ्रूट होता है हमें उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। डाइट में जो भी आपके घर में सब्जी बनती है, रोटी बनती है, हरी सब्जियों पर ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिएगा। तो ये हर एक घर के शेड्यूल अलग अलग होता है खान पान का, तो आप उन्हीं संसाधनों में से अपने एनीमिया की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी बात, जब आप उनका बाहर का पैकेज्ड फूड बंद कर दोगे वो ऑटोमेटिकली अपने आप घर का खाना शुरू कर देते हैं। कोई एक दो डेयरी प्रोडक्ट्स और घर में जो भी आपकी सब्जी रोटी बनती है, कोई हम स्पेशल मेंशन नहीं करेंगे कि आप मल्टीग्रेन खिलाओ, ज्वार खिलाओ, बाजरा खिलाओ, जो भी आपके घर की डाइट है, जो भी आपके पुराने टाइम से चलती आ रही है, वो भी अगर आप बच्चों को सही टाइम से सही भूख में दोगे तो उनसे भी एनीमिया की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी।
1: बिल्कुल, तो बहुत सारी बातें आपने बताई हैं किस तरह से एनीमिया की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। अब बात कर लेते हैं जो खासकर गर्भवती महिलाएं हैं तो वो अपने पोषण का ध्यान कैसे रखें ताकि वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके।
0: गर्भवती महिलाओं को तो सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है सर, क्योंकि वो एक अगर हेल्दी बच्चे को पैदा करेंगी तो हमारा समाज, ऑब्वियस सी बात है कि जो फ्यूचर बनेगा देश का वो बिल्कुल हेल्दी बनेगा। और अगर उन्होंने अपने खान पान का ध्यान नहीं रखा तो खुद तो बीमारी से ग्रसित होंगी ही होंगी, परिवार वाले भी दुखी होंगे, साथ ही साथ बच्चा भी कुछ ना कुछ बीमारी लेके आएगा जो कि फिर माँ बाप के लिए भी बहुत ही मतलब टेंशन वाली बात हो जाती है। सबसे पहले तो गर्भ का पता चलते ही आपको पहली विजिट तो डॉक्टर के पास जरूर करनी है। जैसे आप सामुदायिक केंद्र चला रहे हैं तो वहाँ पे जाके जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ पे चेकअप होता है वहाँ भी करवा सकते हैं। सबसे पहली विजिट तो पहले 3 महीने में हो जानी चाहिए डॉक्टर के पास। अगर बाई चांस फिर आप नहीं भी जा पा रहे हो तो कम से कम जो सरकारी जो सुविधा देती हैं, जो टैबलेट देते हैं आयरन की, कैल्शियम की, वो तो आपको टाइम टू टाइम ले ही लेनी चाहिए, लेकिन एक रूटीन चेकअप होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो गर्भवती महिलाएं सबसे पहला तो क्या है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, एक या दो चेकअप तो आपके पहले 3 महीने में ज़रूर से ज़रूर हो जानी चाहिए। दूसरी बात, आपको सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे हम सर्दी के सीजन में हमारी हरी सब्जियों पे ज़्यादा फोकस रहता है, गर्मियों के सीजन में हमारा वॉटरी फ्रूट्स पे ज़्यादा फोकस रहता है ताकि किसी तरह की डिहाइड्रेशन ना हो, बच्चे में कोई कुपोषण वाली बात ना आए, बच्चे में जो पानी है गर्भ में जो लाइकर है वो अच्छी तरह से बनता रहे। जैसे जैसे बच्चे का स्वास्थ्य ठीक होगा वैसे वैसे ही वो बीमारियों से बचा रहेगा। दूसरी बात, जो हम घर पे जो मेन यूज कर सकते हैं छोटी मोटी चीज़ें, एक भुने हुए चने आते हैं और गुड़, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसका हम हर गर्भवती महिला को जरूर से ज़रूर सेवन करना चाहिए। दूसरा, उसको 2 या 3 घंटे से ज़्यादा खाली पेट नहीं रहना है। कभी या तो मन किया कोई फ्रूट खा लिया, कभी मन किया कभी सब्जी रोटी खा ली, जो भी उसका मन करे, और डॉक्टर ने जो मेडिसिन बता रखी है वो तो लेनी ही लेनी है टाइम पे। तीसरी बात, डिहाइड्रेशन से बचना है, क्योंकि जब गर्भ पेट में होता है तो सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चे को भी पानी की ज़्यादा जरूरत होती है। हमारे पास जो ज़्यादा केसेज आते हैं सर, वो कुपोषण के इसीलिए आते हैं क्योंकि गर्भ में पानी खत्म हो जाता है और बच्चे की ग्रोथ डे बाय डे कम होती जाती है, फिर वो ग्रोथ रिटार्डेशन होगा, प्रीमैच्योर बेबी होगा। तो उससे बचने के लिए डॉक्टर से दी हुई मेडिसिन टाइम पे लीजिएगा और घर पे भी अपने स्वास्थ्य का, अपने हार विहार का अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। और फिर वही मैं मेन बात फोकस करना चाहूँगी, मानसिक स्वास्थ्य पे। अगर आपका मन खुश है तो आप कम आहार में भी आप हेल्दी बच्चा कर सकते हो, लेकिन अगर मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो सर आप कितना भी अच्छा खा पी लीजिएगा वो भी आपको कोई फ़ायदा नहीं करेगा। तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का उससे भी ज़्यादा ध्यान रखना है आपको।
1: जो न्यू बॉर्न बेबी हैं तो उनका कैसे ध्यान रखें, जो माता हैं या उनके जो घर वाले हैं, परिवार वाले हैं?
0: देखिए, न्यू बॉर्न बेबी को सबसे पहले तो हमें उसका एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी में सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम है वो होती है जॉन्डिस की, क्योंकि एकदम से बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो बाहर के एनवायरमेंट में उसको सेटल करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए उसके जो RBCs हैं, जो ब्लड है, वो थोड़ा सा हफ्ते या 10 दिन पहले कम होता है। तो सबसे पहले तो न्यू बॉर्न बेबी को जो सुबह की अर्ली मॉर्निंग की जो धूप होती है, जैसे सनराइज होता है, सूरज उगता है, तो मौसम के अकॉर्डिंग करना है। अब सर्दियों में आप सुबह लेके मत बैठ जाइएगा, नहीं तो वो फिर सर्दी से भी ग्रसित हो सकता है। तो जब अर्ली मॉर्निंग की धूप होती है, थोड़ी सी गर्माहट वाली, 20 से 25 मिनट आपको बच्चे को वो दिखानी है जरूर से जरूर। अब ये डिपेंड कीजिएगा, आप अगर बहुत सर्दी है तो थोड़े से कपड़े भी पहना सकते हैं, और मौसम अगर अनुकूल है तो फिर उसको बिल्कुल अनकवर करके उसकी सिर्फ जो टेस्टीज और जो पेनिस होता है वो एरिया आपको कवर करके रखना है, उसकी आँखों को आपके कवर करके रखना है, और सुबह की 15-20 मिनट की आपको धूप जरूर लगवानी है।

0: दूसरा है माँ का दूध। कई बार हो सकता है माँ की लापरवाही या कई बार डॉक्टर्स की भी कुछ लापरवाही होती है कि वो बच्चे को जो फर्स्ट 24 घंटे का दूध है वो थोड़ा अवॉइड कर देते हैं या उनको ध्यान नहीं रहता, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो पहले 24 घंटे का दूध और उसके बाद भी हर 2 घंटे में हर 3 घंटे में बच्चे को माँ का दूध जरूर से जरूर पिलाना है। 6 महीने तक हमें उसको ऊपर का कोई भी आहार नहीं देना है और जैसे ही माँ डाइट खाएगी वैसे ही उसका दूध बनेगा और वैसे ही बच्चे का पोषण होगा। तो पहले 6 महीने में हमें ये नहीं सोचना कि डिलीवरी हो गई है, अब माँ को ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़्यादा पोषण की जरूरत नहीं है। आयरन कैल्शियम पहले 6 महीने में डिलीवरी के बाद भी माँ को लेने जरूरी होते हैं ताकि दूध की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे कोई भी फर्क ना आए।
1: बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है, किस तरह से जो न्यू बॉर्न बेबी है उनका ध्यान परिवार वाले माता हैं वो कैसे रखेंगी। जैसे भी बात आप बता रही थी शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का अच्छा होना बहुत जरूरी है।
0: मानसिक स्वास्थ्य की सर महिलाओं को ही थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है, मेल्स को भी होती है पर वो एक हद तक अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि वो बाहर भी जाते हैं, उनका सर्कल भी अलग होता है, उनका जॉब एरिया होता है। लेकिन फीमेल्स के साथ, जबकि आजकल हमारे यहाँ पे मोस्टली फीमेल्स वर्किंग नहीं होती हैं, घर पे उनका ज़्यादा टाइम बीतता है, तो उनका मानसिक स्वास्थ्य एज कम्पेयर टू मेल्स थोड़ा सा डाउन ही रहता है। और सर मानसिक स्वास्थ्य की तो हम क्या परिभाषा बताएं, हमारे तो यहाँ पे मानसिक बीमारी को बीमारी माना ही नहीं जाता है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, जैसे कोई सास या बहू आई तो सास कहती है कि हमारे घर में कोई कमी नहीं है, खाने पीने को अच्छा है, पहनने ओढ़ने को अच्छा है, पता नहीं किस बात से दुखी रहती है। लेकिन जब हम फीमेल से अकेले में बात करते हैं सर, तब हमें पता होता है कि वो कितनी सारी दुविधा से जूझ रही होती है। और जैसे आपने बताया कि गर्भवती महिलाएं हैं या न्यूबॉर्न बेबी जिनके होता है, उनका तो मानसिक स्वास्थ्य और भी बुरी हालत में है क्योंकि ना तो वो अपने लिए कुछ कर पा रही है, ना वो बच्चे का ढंग से ध्यान रख पा रही है। और मानसिक स्वास्थ्य तो एक ऐसी प्रॉब्लम है सर, अगर आपका मन बीमार है और आपका शरीर तंदुरुस्त है तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका शरीर में कोई प्रॉब्लम है, आप सपोज करो हैंडीकैप, आपके हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, लेकिन अगर आपका मन स्ट्रोंग है तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो सर। और ये हम लाइव एग्जांपल अपने आसपास देखते भी हैं। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन है सर कि मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे समाज में इसको कोई वैल्यू भी नहीं दी जाती है। मानसिक बीमारी को हम बीमारी समझते ही नहीं है जब तक इंसान पागल के लेवल पर ना आ जाए, जब तक वो बिल्कुल ही अपना संतुलन ना खो दे। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं सर। और मानसिक स्वास्थ्य में हम किसी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते, ना कोई दूसरा इसको ठीक कर सकता है, ये हम खुद ही ठीक कर सकते हैं। और इसको ठीक करने के लाखों तरीके हैं सर, आपका जिस साइड इंटरेस्ट है आप उस साइड जाइएगा। मानसिक तनाव होने के भी लाखों रीज़न है, अगर हम काउंट करने बैठेंगे तो घर परिवार ऑफिस बच्चे बहुत सारे रीज़न होते हैं सर। लेकिन अगर हम इसको ठीक भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास लाखों रीज़न है। डिपेंड करता है कि आपका माइंड किस तरफ जाता है। अगर आप बुक पढ़ने में शांति का अनुभव करते हैं तो आप दिन में 15-20 मिनट अपने लिए कोई अच्छी सी बुक पढ़ने के लिए निकालिए। अगर आप घूमने फिरने में अच्छा अनुभव करते हैं तो कोई डेली का आधा घंटा अपने घूमने फिरने के लिए निकालिए। पार्क में जाइए, अकेले बैठिए, कुछ भी करिए। अगर आपको पूजा पाठ या भक्ति करने से अच्छा महसूस होता है तो कोई दिन के 40-45 मिनट आप मेडिटेशन कीजिए, जिसमें आप जिस भी भगवान को जिस किसी को भी मानते हो तो आप उसके साथ अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए। क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य अगर आपका सही है तो आप फिर शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं घबराएंगे सर। अगर आपको एनीमिया भी हो गया या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप आसानी से उसको कवर कर सकते हैं क्योंकि उसको पता है मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे ये दवाई लेनी है, अगर आपका मन स्ट्रोंग है तो। लेकिन अगर मन कमजोर है तो आप ना अपने लिए कुछ कर पाएंगे सर और ना किसी दूसरे के लिए।
1: बिल्कुल, तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है, मन का स्वास्थ्य है, उसका प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर बेबी शर्मा जी आपने आज सुनो शारदा 90.8 FM सामुदायिक रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई है। और जरूर वो आपकी बातों का अनुकरण करेंगे, जीवन में आपकी बातों को धारण करेंगे, अपनाएंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: अरे सुनीता, कैसी है मुनिया?
2: नमस्ते आशा दीदी, बस ठीक है।
1: साफ सफाई का ध्यान रख रही हो?
2: जी दीदी, जैसा आपने बोला था, हर रविवार साफ सफाई की जिम्मेदारी लेते हैं। जहाँ कहीं भी पानी इकट्ठा देखते हैं तुरंत साफ करते हैं, जैसे पानी का ड्रम, कूलर, फ्रिज की ट्रे, सब की साफ सफाई करते हैं।
3: और आसपास कहीं भी टायर, नारियल, खाली बर्तन या किसी भी चीज में पानी जमा होने नहीं देते। दीदी
1: बहुत बढ़िया,

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो।

स्टेशन सुनूं शादा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान। किसान मित्रों, ये तो बात आपको माननी पड़ेगी कि खेत से बढ़िया उत्पादन लेने के लिए खेत की मिट्टी की जांच कराना बहुत जरूरी है। मिट्टी की जांच का मुख्य उद्देश्य खेत की जरूरत के अनुसार उसे पोषक तत्व उपलब्ध करवाना है, जिससे कि आपका उत्पादन बढ़े, साथ ही साथ खेती में जो लागत आ रही है उसमें कमी आए। किसान मित्रों, देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न उत्पादन की मांग को पूरा करना एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इसके लिए मिट्टी का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। जैसा कि किसान मित्रों आप जानते हैं कि पौधे के विकास के लिए कुल 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इन्हीं का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर ये आपकी मिट्टी में संतुलित मात्रा में है तो अच्छी पैदावार होगी। अगर इनका जो संतुलन है कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, कोई पोषक तत्व ज्यादा है कोई कम है, तो मान लीजिए पैदावार उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी आप उम्मीद करके बैठते हैं। तो किसान मित्रों, बात चल रही है पोषक तत्वों की और हमने आपको बताया कि पौधों के विकास के लिए, फसल के विकास के लिए कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें प्राथमिक पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन, जो कि पौधों की वृद्धि, पत्तों के विकास और प्रोटीन संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा है फॉस्फोरस, ये जड़ों के विकास, ऊर्जा भंडारण और फूलने फलने के लिए आवश्यक है। तीसरा जो मुख्य पोषक तत्व है वो है पोटेशियम, ये पौधों के पानी के संतुलन, रोग प्रतिरोधक क्षमता और गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण है। इन तीन पोषक तत्वों के अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, इन तत्वों को द्वितीयक पोषक तत्व माना जाता है और ये पौधे के लिए भी आवश्यक होते हैं। और किसान मित्रों, तीसरी कैटेगरी में आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, जिनमें लोहा, बोरॉन, क्लोरीन, मैग्नीज, जस्ता, तावा, मॉलिब्डेनम और निकल। ये तत्व पौधों के लिए आवश्यक होते हैं लेकिन इनकी सूक्ष्म मात्रा ही आवश्यक होती है। तो किसान मित्रों, आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि जो 17 पोषक तत्व होते हैं वो हमारी फसल के लिए, पौधों के लिए क्यों आवश्यक होते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आज हम बात कर रहे हैं मृदा परीक्षण की, मिट्टी की जांच की, कि क्यों करवाना जरूरी है अपने खेत की मिट्टी की जांच। तो आगे भी इस पर चर्चा हम आपसे करते रहेंगे, आपको जानकारी देते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आपका करवाते हैं मनोरंजन और आपको सुनवाते हैं उपेंद्र राणा से एक उपदेश।

0: तो किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपेंद्र राणा से ये उपदेश। और इस उपदेश से पहले हम बात कर रहे थे कि खेत से अच्छी पैदावार करने के लिए मृदा परीक्षण कराना क्यों जरूरी है। और हमने आपको बताया था कि हमारी फसलों के लिए, हमारे पौधों के लिए 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अधिक पैदावार और लाभ लेने के लिए उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग बहुत जरूरी है। और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करने के लिए मिट्टी का परीक्षण करवाना बहुत जरूरी है। तभी तो हमको पता चलेगा कि किस पोषक तत्व की मिट्टी में कमी है या किसकी अधिकता है। अब मिट्टी की जांच कराने के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने खेत की मिट्टी का नमूना लेना है। और नमूना लेने के बाद आपको अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या जो निकटतम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है वहां पर आप अपना नमूना ले जाके जमा कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रहे, जिस भी पैकेट में आपने नमूना लिया है तो उस पर आप अपना नाम डालें, अपने खेत का नंबर डालें, और जैसे कि खेतों के नाम होते हैं वो आप जरूर डालें ताकि मृदा परीक्षण की जो रिपोर्ट आए वो ठीक आए। और यहाँ पर किसान मित्रों, आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि भारत सरकार की भी एक योजना चल रही है, सोयल हेल्थ कार्ड यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड। तो उस योजना के अंतर्गत भी आप अपनी मृदा का परीक्षण करवा सकते हैं और मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा सकते हैं। क्योंकि मिट्टी की गुणवत्ता यदि अच्छी होती है तो हमारी फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, जिसके लिए जरूरी है कि समय समय पर मिट्टी की आप जांच कराएं। जिस तरह से स्वस्थ शरीर के लिए सही खान पान का होना बहुत जरूरी होता है, उसी प्रकार हमारी जो फसल है, फसल के जो पौधे हैं, उनकी वृद्धि के लिए, विकास के लिए संतुलित पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। और जब हमको पता चल जाता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से कि हमारे जो खेत की मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है या किन की अधिकता है, तो जिनकी कमी होती है उस खाद को हम लगाते हैं, जिनकी अधिकता होती है उसको हम नहीं लगाते। इस तरह से हमारे जो पैसे हैं वो बचते हैं। और जब हम मृदा परीक्षण नहीं कराते तो हमको पता ही नहीं चलता कि किन पोषक तत्वों की कमी है या किन की अधिकता है, और हम अंदाज से ही फसलों में खाद देते हैं। तो इससे एक तो हमारा जो पैसा है वो बर्बाद होता है, और दूसरी बात यह है कि कभी कभी फसल भी बर्बाद हो जाती है। तो जरूर इस बात का ध्यान रखें कि अपने खेत की मिट्टी की जांच करा के ही खाद का प्रबंधन करें ताकि आपको अच्छा, उत्तम, उन्नत फसल उत्पादन मिले और जिसका कि आपको बाजार में अच्छा दाम मिले। तो जरूर इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं कि आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर के अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही मृदा परीक्षण की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं ऋषिपाल खदाना और कोशिंदर खदाना।
1: हम देश के वीर किसान खेत में,
2: सही बात है बिल्कुल।

फौजन भाई, कहिए फौजी भाई, हमें आराम का सोना नहीं मिलता, लेकिन हमको भी नहीं मिलता फौजी भाई, कभी कभी तो वोट

तो किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ऋषिपाल खदाना और कोशिंदर खदाना से ये रागनी। और किसान मित्रों, अब आपसे ये कहना चाहेंगे कि देखिए, खेती से अच्छी पैदावार लेने के लिए हमें अच्छे बीजों का भी उपयोग करना चाहिए। जब आप खेत में अच्छी किस्मों के बीजों से बिजाई करते हैं तो आपको जो फसल का उत्पादन है वो आपको अच्छा मिलता है, गुणवत्तापूर्ण मिलता है। और जब आप अच्छे बीज नहीं खरीदते हैं और ऐसे ही कहीं से लेकर के किसी भी फसल की बिजाई आप करते हैं तो आपको उस तरह की उपज नहीं मिलती है। और फिर कई बार तो हमारे किसान भाई पछताते भी हैं कि इतना समय गया और इतना पैसा भी बर्बाद हुआ, क्योंकि देखिए, आपके पानी में, खाद में, खेत की जुताई में और भी जो कृषि क्रियाएं होती हैं, कृषि यंत्र होते हैं, उनमें पैसा खर्च होता है, दवाइयां लगती हैं उनमें अलग से पैसा खर्च होता है। तो सब बातों का बड़ी बारीकी से ध्यान रखना होता है कि आपकी एक तो मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, जिसका पता हमें चलता है मिट्टी की जांच कराने से। दूसरा, आपके जो बीज हैं, जिस भी फसल की बिजाई आप करना चाहते हैं उनके जो बीज हैं वो उन्नत किस्म के होने चाहिए। और ऐसी जगह से आप बीज खरीदें जो प्रमाणिक हों। कहीं से भी आप बीज खरीद लेते हैं और फिर बड़ी परेशानी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है, फसल तो अच्छी लग रही है लेकिन उस पर फल नहीं आ रहे हैं, कोई उत्पादन नहीं मिल रहा है, तो ऐसा भी हो जाता है। तो ये सब होता है कि जो बीज है वो उत्तम नहीं है। तो आप बीजों का चुनाव करें तो उत्तम किस्मों के बीजों का चुनाव करें। और भी बहुत सारी बातें हैं, मिट्टी का परीक्षण है, उत्तम बीज हैं और समय समय पर जो कृषि क्रियाएं हैं उनका ध्यान रखना है और खरपतवार का नियंत्रण करना है और हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनकी सलाह के अनुसार आपको काम करना है, जैसे वो सलाह देते हैं। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ सरकार की जो कल्याणकारी योजना है उनका आप फायदा लेंगे तो सब चीज मिलके परिणाम फिर अच्छा ही उसका आता है। तो इन सब बातों का आप जरूर ध्यान रखें। और अब देखिए, समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, लेकिन चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं बलराम बैसला।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Chan chan ka rakhe dhyan TB Mukt Bharat Abhiyan.
2: जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना।
3: पहली से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियां टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं, अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
4: ट्रीट एवरी टीबी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
7: The world is here।

ये रोमांटिक प्रोग्राम महाभारत की अजीब कहानी कीचक बात आप चंदा केसिस में सुन रहे हैं। और देखिए अच्छे किस्से, अच्छी कहानियां, रोचक कथा आप सुनेंगे तो चंदा केसिस में। और दोस्तों नकली केसिस से सावधान, चंदा केसिस का निशान देखिए। और खास तौर से कोशिंदर की आवाज में ज्यादा से ज्यादा किस्से जो सुनेंगे आप चंदा केसिस के माध्यम से सुनेंगे, जिसमें साथ हारमोनियम पर हंसराज, नक्कारे पर दादा रिशाल,

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें। जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचें। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: पाँच से नौ साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक गुलाबी गोली। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। एनीमिया फ्री इंडिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: सो वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University।
5: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हिंदुस्तान की परंपरा यही रही है कि हिंदुस्तान में नारियों को पूजा जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। लेकिन जब कहीं कहीं कोई घटना घट जाती है जहां नारी का अपमान होता है तो दिल बहुत दुखित होता है। सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट संस्था मिलकर एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है हिंसा को नो। इसके अंतर्गत बहुत सारे विषय हैं जिसके बारे में हम लगातार बात करते आ रहे हैं और बातें करते रहेंगे। यूं कहें कि कुछ खास बिंदुओं को हमने उठाया है और उस विषय पर हम बातें करेंगे। जैसे बेटियां हैं तो वंश है, प्रजनन अधिकार, इसके अंतर्गत बातें आती हैं भ्रूण हत्या, लिंगानुपात, बेटे होने पर उत्सव और रिवाज। दूसरा विषय बालिका या वधु, इसके अंतर्गत बात आती है बचपन का हनन, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना। तीसरा विषय खतना, धर्म नहीं दर्द, इसके अंतर्गत बातें सामने आती हैं बाल उम्र में शारीरिक दर्द, रिवाज और विश्वास, कानूनी सलाह, पितृ सत्ता, असमान व्यवहार, असमान दीक्षा, बातें होंगी भेदभाव और समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, एक ऐसा विषय है माँ मुझे बाहर जाना है, इसके अंतर्गत बातें आती हैं कि घर और आस पड़ोस के दायरे, घर या घर के बाहर सवालिया सुरक्षा। विषय ये भी है कच्ची उम्र की शिक्षा, यानी बदलती शारीरिक संरचना और किशोरावस्था में अपराधी मानसिकता से बचने हेतु सीखने योग्य बातें, कैसे बचे मनचलों से, बातें होंगी इंटरनेट का जाल, अच्छा स्पर्श, बुरा स्पर्श, ब्लैकमेल, रिश्तेदारों द्वारा छेड़खानी और चुप्पी, ये बातें होंगी कैसे बचे मनचलों के अंतर्गत, दहेज प्रथा या हत्या, इसके अंतर्गत बात सामने आती है दहेज प्रथा के दुष्परिणाम, सामाजिक हैसियत का दिखावा। अगला विषय मेरी पत्नी मेरा अधिकार, यानी वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार, ये कुछ ऐसे विषय है, कुछ ऐसी थीम है जिसके अंतर्गत हम बातें आपके सामने लेकर आएंगे एक रिसर्च के माध्यम से। सुनो शारदा 90.8 FM ने हाथ मिलाया है रेडियो अमेठी के साथ और रेडियो अमेठी ने हाथ मिलाया है हमारे साथ, यानी सुनो शारदा 90.8 FM के साथ एक समझौते के तहत एक दूसरे के कार्यक्रम हम यहां से प्रसारित कर रहे हैं और हमारे कार्यक्रम वो अपने स्टेशन से प्रसारित कर रहे हैं। तो रेडियो एमिटी का धन्यवाद करते हुए आइए सुनते हैं हिंसा को नो के अंतर्गत ये खास कार्यक्रम।

0: खास कार्यक्रम हिंसा को नो, जिसका उद्देश्य है घरेलू हिंसा और महिला उत्पीड़न जैसी कुरीतियों को समाज से दूर हटाना और लोगों को इसके बारे में जागरूक करना।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे सोनिया और आप सभी का स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन आज हिंसा को नो के इस कार्यक्रम में। हम बात करने वाले हैं कि हिंसा के प्रभाव और उसके कारण क्या होते हैं, और इसी पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं श्रेया। श्रेया यहीं पे काम करती हैं और हमारी रेडियो टीम का ही एक पार्ट है। तो श्रेया, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया जी।
1: तो श्रेया, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि महिलाओं के साथ जो हिंसा होती है
0: जी,
1: उसके क्या कारण होते हैं?
0: बिल्कुल, मैं इस बारे में आप सभी को बताना चाहूंगी कि जो घरेलू हिंसा होती है महिलाओं के साथ में, उसके कारण क्या होते हैं। सबसे पहली चीज कि जो पति हैं वो ऐसा समझते हैं कि इस पूरे घर पे या उनकी पत्नी पे हक सिर्फ मेरा है, और पुरुष जो चाहे वो कर सकता है। उनको ऐसा लगता है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ क्योंकि मैं इस घर का मुखिया हूँ, और अपनी पत्नी के साथ किसी भी तरह का व्यवहार कर सकता हूँ, ऐसी सोच रखते हैं पति। और ऐसा चाहते हैं कि पत्नियाँ उनका कहना माने, जो पति कहें पत्नियाँ उनका कहना माने, ऐसा पति चाहते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उनको हिंसा का सामना करना पड़ता है महिलाओं को। पुरुष ऐसा सोचते हैं कि जो महिलाएं हैं या लड़की हैं, इन पे उनका अधिकार है, वो उनकी प्रॉपर्टी है। वो सोचते हैं कि उनके साथ जो वो व्यवहार कर रहे हैं वो एकदम सही है, और अगर जैसे कोई इंसान अगर उनके साथ हिंसा होते हुए देख लेता है, कभी कभार ऐसा होता है सोनिया जी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मतलब घरेलू हिंसा होती है, जैसे अगर एक बिल्डिंग में मतलब लोग रहते हैं और किसी के घर में अगर घरेलू हिंसा होती है तो आसपास के लोग जो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, तो कभी कभार वो ऐसा सोचते हैं कि हमें किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो जबकि ये गलत है, अगर आप इंटरफेयर नहीं करेंगे तो घरेलू हिंसा रुकेगी कैसे। तो अगर लोग ऐसा सोचते हैं कि इंटरफेयर करना गलत है, हाँ इंटरफेयर करना गलत है, लेकिन अगर आप किसी सही चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो वो आप ज़रूर कीजिए। घरेलू हिंसा को नो कहिए। अगर आप घरेलू हिंसा होते हुए देखते हैं तो ज़रूर आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, इंटरफेयर कीजिए। आप लोगों का ऐसा मानना होता है कि मियां बीवी के झगड़े में हम क्यों पड़ें, ये उनके घर का मामला है, वो अपने आप सुलटाएंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी बाहर वाले को अगर इंटरफेयर करने की ज़रूरत है और उससे हिंसा रुक सकती है, तो ज़रूर आप इस पर आवाज़ उठाएँ और हिंसा को नो कहें। कभी कभार ऐसा होता है कि दहेज की मांग पूरी करने के लिए भी हिंसा का शिकार होती है महिलाएं। कैसे, आइए मैं आपको बताती हूँ। बहुत बार ऐसा देखा गया है हमारे समाज में कि पति अपनी पत्नियों से सामान मंगवाते हैं उनके मायके से। ऐसा कहा जाता है कि मतलब बार बार डिमांड की जाती है उनके घर से, कभी एसी की, कभी फ्रिज की, कभी कार की, ताकि पत्नियां लेकर आएं अपने घर से। और अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तब उनके साथ मारपीट होती है। ऐसा भी देखने को मिलता है हमारे समाज में कि अगर जो वाइफ है वो किसी रिच फैमिली से बिलोंग करती है, उसके जो मायके हैं वो पैसे वाले हैं, उनके पास प्रॉपर्टी है, काफ़ी अच्छी मतलब काफ़ी अच्छी खासी उनके पास ज़मीनें हैं, जायदाद हैं, तो पति जो पति हैं वो ऐसा चाहते हैं कि पत्नियों को हिस्सा मिले, और इसके लिए वो बार बार टॉर्चर करते हैं अपनी पत्नियों को। और ये मायके वालों के खिलाफ भड़काया भी जाता है पत्नियों को, ताकि वो अपने मायके से पैसा लेकर आएं और संपत्ति में हक मांगें। तो बेसिकली मैं यही कहना चाहती हूँ कि पुरुष जो हैं वो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि महिलाओं पर मेरा अधिकार है, और इस वजह से उनके साथ हिंसा होती है, महिलाओं के साथ हिंसा होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी सोनिया जी।
1: श्रेया जी, जैसा कि आपने अभी हमको हिंसा के कारण बताए
0: जी।
1: तो महिलाओं के साथ जब हिंसा होती है तो इसका प्रभाव उनके तो मानसिक अवस्था पे भी पड़ता होगा।
0: जी बिल्कुल।
1: तो प्लीज आप हमको उसके बारे में भी कुछ बताइए।
0: बिल्कुल सोनिया जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर कोई महिला हिंसा का शिकार होती है तो ऐसा देखने को मिलता है कि उनके शरीर पर छोटी मोटी चोटें आपको देखने को मिलती होंगी, उनके शरीर पर नील पड़ जाता है और गंभीर हिंसा के कारण उनकी हड्डी भी टूट जाती है, कभी कभार वो अपाहिज भी हो जाती हैं और कुछ महिलाओं की मृत्यु भी हो जाती है हिंसा की वजह से, उनको जला भी दिया जाता है, मैंने ऐसा बहुत बार देखा है। और जहाँ तक आपने बात कही कि शारीरिक ही नहीं मानसिक रूप से भी उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, डिप्रेशन में चली जाती हैं महिलाएं, कभी कभार महिलाएं आत्महत्या करने की भी कोशिश करती हैं हिंसा की वजह से, महिलाओं को नींद कम आती है, निराशा, चिंता, सिर दर्द, ये सभी चीजें महिलाओं को होती हैं अगर वो हिंसा का शिकार हो रही हैं। तो शारीरिक ही नहीं मानसिक रूप से भी महिलाओं के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है हिंसा का। तो अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो कभी कभार उसका अबॉर्शन भी हो जाता है हिंसा की वजह से। अगर बच्चे देख रहे हैं कि महिला के ऊपर हिंसा हो रही है, जैसे कभी कभार क्या होता है कि जो हस्बैंड्स हैं वो अपनी वाइफ को मारते हैं और बच्चे देख रहे होते हैं, तो उनके ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ता है सोनिया जी, वो गुस्सैल बन जाते हैं। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि बच्चे खामोश हो जाते हैं, बोलते नहीं है बिल्कुल, क्योंकि वो डर उनके मन में घर कर जाता है, बिल्कुल सहम जाते हैं बच्चे। ऐसे बच्चे ज्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं, किसी से बात नहीं करते, मिलते जुलते नहीं हैं, ठीक से खाना तक नहीं खाते, उनका विकास ठीक से नहीं होता, डेवलपमेंट उनकी ठीक से नहीं हो पाती है, मानसिक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, स्कूल जाना छोड़ देते हैं, उसकी वजह से उनकी पढ़ाई पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, क्लासेस अटेंड नहीं करते। अक्सर जब कोई महिला घर में हिंसा का शिकार होती है तो इस पर बच्चों का बहुत बुरा असर पड़ता है, जैसे कि अगर मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हस्बैंड्स अपनी वाइफ को मार रहे हैं और बच्चा अगर ऐसा होते हुए देख रहा है तो ये सब चीज़ें उसके मन में घर कर जाएंगी और जब वो बड़ा होगा तो वो भी अपनी वाइफ के साथ ऐसा ही करेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई पेरेंट ऐसा करता है अपने बच्चों के सामने, अपनी वाइफ को मारता या पीटता है, तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि वो आगे जाकर बच्चे यही सब सीखते हैं और अपने वाइफ के साथ या जो भी उनके साथ में रह रहा है उसके साथ भी वो वैसा ही बर्ताव करते हैं।
1: जी श्रेया जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा।
0: अगर किसी महिला के साथ मारपीट होती है और वो इस घर में नहीं रहना चाहती जहाँ पर उसके साथ मारपीट होती है, तो वो महिला क्या कर सकती है, आइए जानते हैं सुमित्रा जी से। तो दोस्तों

0: आपको बताना चाहूंगी कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसको मारता पीटता है और महिला उस घर में नहीं रहना चाहती, तो ये उसका अधिकार बनता है कि दैट शी इमीडिएटली मूव्स आउट ऑफ द हाउस। 100 नंबर डायल करें और अपनी कंप्लेंट पुलिस में रजिस्टर कराएं। यही बताना चाहूंगी, एज पर सेक्शन 498A ऑफ द इंडियन पीनल कोड विच रिलेट्स टू द क्रुएल्टी ऑफ अ वुमन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत, तो नहीं मैं आपको इंडियन पीनल कोड के अंदर बता रही हूँ, एज पर सेक्शन 498A 3 साल की सजा हो सकती है जेल में व्यक्ति को इस क्रुएल्टी के लिए। इसके अलावा एज पर सेक्शन 6 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो ये महिला है, जो पीड़िता है, वो शेल्टर होम्स की भी मदद ले सकती है। उसमें वो एक प्रोटेक्शन ऑफिसर को अप्रोच कर सकती है और पीड़िता जो है या प्रोटेक्शन ऑफिसर उसके बिहाफ पर या किसी सर्विस प्रोवाइडर के बिहाफ पर किसी शेल्टर होम को रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो उस पीड़िता को शेल्टर होम में रहने की इजाज़त दे, और तब वो शेल्टर होम और उसके इंचार्ज बन जाते हैं उस पीड़िता की रखवाली करने के लिए। और यहीं पर बताना चाहूंगी, इस तरह की कोई भी समस्या हो तो आप महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 डायल कर सकते हैं, या फिर अमेठी लॉ स्कूल नोएडा का नंबर 01204392807, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं आपको न्याय जरूर दिलाऊंगी। धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि घरेलू हिंसा के क्या प्रभाव होते हैं महिलाओं पे, उसके क्या कारण होते हैं, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि अगर बच्चों के साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो आप उनको किस तरह से जस्टिस दिला सकते हैं। आगे हम और भी ऐसे ही एपिसोड्स लेके आएंगे आपको जागरूक करने के लिए। हमारे साथ बने रहिए हमारे सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो आमिटी 107.8 पर।
2: मैं आशा करती हूँ कि आपको इस कार्यक्रम हिंसा को नो से बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी और आप लोग इसे अपने समुदाय के साथ भी साझा करेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं।
3: सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट संस्था मिलकर एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है हिंसा को नो। जिस विषय पर आज बात हुई, ऐसी तमाम विषय समय दर समय हम उठाते रहेंगे और आपके बीच लाते रहेंगे। इन खास जानकारियों को सुनना न भूलें। साथ ही साथ हम धन्यवाद कहना चाहेंगे रेडियो अमेठी का, जिसने हमें ये सहयोग दिया, और ये सहयोग हम भी ऐसे ही दूसरे स्टेशनों को समय दर समय दे रहे हैं क्योंकि वो भी हमारे खास कार्यक्रम अपने स्टेशन से प्रसारित कर रहे हैं। तो ये खास जानकारी आपको कैसी लगी, 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। इसके अलावा 90.8 FM@sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहें ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो, फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में यह जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: यह संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
3: शारदा। हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जान है, सारी मुश्किलें आसान है, इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुड़ जाते हैं, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुंचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारा मारी थी, अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप पांच फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे जानते हैं। पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरगंध से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरगंध का सेवन कर सकते हैं। शकरगंध एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की, नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है।
5: नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की, जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है। कैसे, जानते हैं? शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
6: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाएं। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
7: इंसान को अपनी उम्र का एहसास तब होता है जब जिंदगी में उसकी बहुत सी पहलुएं धीरे धीरे बंद होती जाती हैं या ख़त्म होती जाती हैं। और पंचम मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा ही पहलू है। पंचम के साथ क्या रिश्ता था मैं नहीं जानती, या मैं उसे कोई नाम नहीं देना चाहती। पंचम के साथ मैंने बहुत फिल्मों में काम किया।

अभिमान की दो अहमियत है। एक तो ये कि बर्मन साहब के साथ मेरी सबसे आखिरी पिक्चर है और बर्मन साहब की लाइफ की भी सबसे आखिरी पिक्चर है अभिमान। उसके बाद वो फिर रहे नहीं दुनिया में। और उसमें एक गीत था, मुझे वो गीत बस पसंदली बहुत पसंद है, न जाने आप लोगों को पसंद होगा या नहीं, कि तेरे मेरे मिलन की ये रहना नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम कृष्ण कथा।
2: कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भू मां ते संगोस्त्वकर्मणि। अर्थात कर्म करने मात्र में ही तेरा अधिकार हो, फल में कभी नहीं, और तू कर्मों के फल की वासना वाला भी न हो तथा तेरी कर्म न करने में भी प्रीति न हो। श्रीमद् भगवत गीता का यह श्लोक तो तुमने सुना ही होगा। इसमें कर्म का दर्शन समझाया गया है। श्री कृष्ण ने कर्म का उपदेश देकर लोगों के सामने एक नया मार्ग खोला था, इसीलिए उन्हें युग प्रवर्तक माना जाता है। युग प्रवर्तक वो होता है बच्चों जो किसी नए युग की शुरुआत करे। उन दिनों यज्ञ का बोलबाला था। ऐसा माना जाता था कि जो व्यक्ति यज्ञ संपन्न करेगा उसके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी और वो परलोक में भी सुख पाएगा। किंतु यज्ञ के आयोजन में बहुत खर्चा आता, इसलिए निर्धन लोग यज्ञ नहीं कर पाते। श्री कृष्ण को यह परंपरा दोषपूर्ण लगी, इसलिए उन्होंने यज्ञ को एक नया अर्थ देते हुए प्रत्यक्ष कर्म की उपासना पर बल दिया। भागवत पुराण में श्री कृष्ण के बाल्यकाल की एक कथा आती है। एक बार की बात है, ब्रजवासी बड़े जोर शोर से यज्ञ की तैयारी में लगे थे। श्री कृष्ण को जिज्ञासा हुई तो उन्होंने नंद बाबा से जाकर पूछा, बाबा आप लोग किस उत्सव की तैयारी में लगे हैं? नंद बाबा ने उत्तर दिया, इंद्र यज्ञ की तैयारी में बेटा। कृष्ण ने फिर पूछा, इंद्र यज्ञ वो क्यों? नंद बाबा बोले, इसलिए बेटा क्योंकि इंद्रदेव मेघों के स्वामी हैं, उनकी कृपा से ही वर्षा होती है। वो प्रसन्न रहें तो हमारे खेत लहलहाते रहें और जल की कभी कमी न हो। कर्मयोगी कृष्ण को ये बात समझ में नहीं आई। उन्होंने अपने पिता से फिर पूछा, बाबा आप तो सदा यही कहते हैं कि प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही सुख दुख भोगता है। हमारा कर्म है खेती करना, पशु पालना, तब अपना कर्म छोड़कर इंद्र की पूजा करने से क्या लाभ? नंद बाबा अपने लाड़ले के तार्किक स्वभाव से परिचित तो थे ही, इसलिए उन्होंने कहा, बेटा हमारे कुल में न जाने कब से ये परंपरा चली आ रही है, अब अचानक इसे तोड़ना मुझसे तो होगा नहीं। फिर यदि इंद्रदेव रुष्ट हो गए तो पूरी ब्रजभूमि का अमंगल होगा। नंद बाबा ने अपनी ओर से तो बात पूरी कर दी, लेकिन कृष्ण कहां मानने वाले थे। उन्होंने कहा, बाबा मनुष्य को सुख दुख देने वाला उसका कर्म है, कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो कर्म का ही आदर करे, उसी की आराधना करे। किसी अप्रत्यक्ष देवता की पूजा करने से अच्छा है कि प्रत्यक्ष जीविका के साधन की पूजा की जाए। नंद बाबा कृष्ण का तर्क समझ नहीं पाए। उन्होंने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो वत्स? तब कृष्ण ने कहा, बाबा हम तो वनवासी ग्वाले हैं, वन और पर्वत ही हमारे घर हैं, इसलिए हमें अपने गौओं की और गोवर्धन पर्वत की ही आराधना करनी चाहिए। कृष्ण का आग्रह नंद बाबा टाल नहीं सके और फिर वही हुआ जो कृष्ण चाहते थे। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्री जुटाई गई थी उसी से समस्त गांव ने गिरिराज गोवर्धन की पूजा की। पूजा तो संपन्न हो गई, किंतु जब देवराज इंद्र को पता चला तो उनके क्रोध का ठिकाना न रहा। बच्चों, इंद्र को अपने पद का बहुत अभिमान था, वो देवताओं के राजा थे, इसलिए अपने आप को त्रिलोक का स्वामी मानते थे। उन्होंने तुरंत सामवर्तक नामक गण को ब्रज पर चढ़ाई करने का आदेश दिया। सामवर्तक गण प्रलयकारी मेघों के स्वामी माने जाते हैं। बस फिर क्या था, काले घने बादल गिरने लगे, बिजली चमकने लगी, बादलों की गड़गड़ाहट सुन पशु पक्षी कांप गए, प्रचंड आंधी के साथ बड़े बड़े ओले बरसने लगे। इतना पानी बरसा कि ब्रजभूमि डूबने लगी। नंद बाबा तो पहले ही कह रहे थे कि इंद्रदेव को अप्रसन्न करना ठीक न होगा, और अब उनकी बात सच होती दिखने लगी।

0: लेकिन कर्मयोगी कृष्ण बिल्कुल विचलित नहीं हुए। उन्होंने ब्रजवासियों को फिर कर्म का पाठ पढ़ाया और कहा कि यदि ऐसी आपत स्थिति में वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो निश्चय ही डूब जाएंगे। उन्होंने सबको एकत्र किया और गोवर्धन पर्वत की ओर चल दिए। कहा जाता है श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण करके ब्रजवासियों को उस महाविपत्ति से बचा लिया। हो सकता है वो ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत की किसी महागुफा में ले गए हों और वर्षा का प्रकोप उतर जाने के बाद उन्हें वापस ले आए हों। जो भी हो, श्री कृष्ण की बाल्यावस्था की इस कथा से एक बात स्पष्ट समझ में आती है कि उन्होंने लोगों को तार्किक बनना सिखाया था। उन्होंने समझाया था कि परंपराओं का अंधानुकरण उचित नहीं है, बदलते हुए युग की आवश्यकताओं के अनुरूप परंपराओं को नया रूप दिया जाना चाहिए। ऐसा करके ही हम जीवन का प्रवाह बनाए रख सकते हैं। सुख संपदा केवल धनिकों का ही अधिकार नहीं है। जो भी कर्म करेगा उसे उसके अनुरूप फल मिलेगा ही।
1: कृष्ण कथा, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं वाचन स्वर डॉक्टर सुरेश शास्त्री, विषय संयोजन ममता गुप्ता, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े, प्रस्तुति सहयोग वंदना निगम, निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा और परियोजना निर्देशन डॉक्टर एलजी सुमित्रा।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: और डब्बा ले आ। बेटा जल्दी आ, स्कूल को लेट हो रहा है।
1: आई पापा। क्या पापा जगह जगह छुपते रहते हो?
0: वो
1: मैं अपने नए नए दोस्त भी बनाऊंगी। पापा
2: क्या हुआ बेटिया?
3: डॉक्टर साहब,
4: आपकी बेटी को टीबी है और ये आपके ही देन है।
5: मैंने ऐसा क्या कर दिया?
1: पापा आज से आप एक प्रॉमिस करो कि आप थूकोगे नहीं।
3: वादा करता हूँ बेटिया, अब ऐसे कभी नहीं थूकूंगा, प्रॉमिस।
4: पब्लिक प्लेसेस पर थूकना बंद कीजिए, अपनी बुरी आदतें बदलकर एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण कीजिए।
6: बेटर लेट देन नेवर। तो देर भले हो गई हो, लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए।
7: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
2: शारदा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट है 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूलगोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूलगोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूलगोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।
3: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम दामादों की मेहमानी।

0: बहुत पुरानी बात है, एक किसान की चार बेटियां थीं। उन चारों की शादी हो चुकी थी। दिवाली के अवसर पर किसान ने चारों दामादों को निमंत्रित किया। चावल की फसल कटकर आई थी। किसान की गाय ने बछिया को जन्म दिया था। त्योहार का मौका था और फिर चारों दामाद एक साथ पहली बार आए थे, इसलिए किसान और उसकी पत्नी ने उनकी खूब खातिर की।
1: वाह बाबू, खीर तो बहुत ही बढ़िया बनी।
2: अरे भैया, आपने कचौड़ी नहीं खाई। कचौड़ी खाएंगे तो खीर भूल जाएंगे।
3: और भाई रामलाल, सब खाना शुद्ध घी में पका है। वाह भाई वाह।
1: भैया मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं। पेट फटने को हो रहा है लेकिन तबीयत नहीं भरी।
4: अरे बेटा आराम से खाओ, आराम से खाओ हीरा लाल। अरे ना हो तो शाम को खा लेना, बहुत खाना पकाया है हम लोगों ने बेटे।
5: अरे अभी तो कल तुम्हारी सास गन्ने के ताजे रस की खीर पकाकर विदा करेंगी। जरा उसके लिए भी पेट में जगह रखो भाई।
3: ससुर जी, सास जी, आप लोग इतना माल खिला रहे हैं, इतना माल खिला रहे हैं कि मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा।
2: तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अरे अपने राम तो अब एक हफ्ता यहीं रहेंगे।
4: अरे बेटा रामलाल, तुम्हारा ही घर है ये भी। हम तो कहते हैं जब तक चाहो रहो। पर परसों भैया दूज है, तुम लोगों की बहनें तुम्हारा इंतजार करेंगी। जाना तो पड़ेगा, साल भर का त्योहार है।
5: भगवान बड़ी भोली हो। अरे ये खुश समझदार है, भला दामाद कहीं ससुराल में ज्यादा रुकते हैं?
4: और क्या,
5: वो तो एक दिन आए दूसरे दिन गए।
4: ये तो है ही,
1: समझ नहीं आया।
3: तो जाना ही पड़ेगा।
0: लेकिन चारों दामादों को ससुराल की दावतें ऐसी भाई ऐसी भाई कि चारों वहीं जम गए। किसान और उसकी पत्नी दामादों की खातिर करते करते दुखी हो चले।
4: अजी सुनते हो, ये चारों निकम्मे तो यहीं जम गए, ऐसे आए कि जाने का नाम ही नहीं लेते। इतने दिन हो गए हैं।
2: धीरे धीरे बोल भगवान, धीरे धीरे।
4: क्यों बोलूं धीरे धीरे, कोई चोरी की है क्या? खुद अपने घरों में तो मेरी बेटियों को सब्जी रायते को भी तरसा देते हैं ये निकम्मे, और यहाँ पूरियां ढकारते शर्म नहीं आती। हाय मेरी बच्चियां,
2: क्या करूं, दिल तो मेरा भी जलता है। बेटियों का ख्याल न होता तो इन निकम्मों को कान पकड़ कर चलता कर देता। तुम एक काम करो।
4: बोलो जी क्या।
2: कल से घी में खाना पकाना बंद कर दो, समझदार को इशारा काफी।
4: ठीक कहते हो जी, कल सारा खाना तेल में ही पकाऊंगी।
0: अगली सुबह कलावती ने तेल में खाना पकाया। सबसे बड़े दामाद रामलाल ने समझ लिया कि अब और रुकना ठीक नहीं। उसने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और चल दिया अपने घर को। लेकिन श्यामलाल, किशनलाल और हीरालाल वहीं डटे रहे।
1: अरे भैया, हमें तो समझ में नहीं आया कि रामलाल जी वो अचानक कैसे चल रही है।
3: हाँ भैया हीरालाल, मैंने बहुत पूछा, बस यही बोले अब और रुकना ठीक नहीं है।
1: अच्छा,
3: अरे भैया सास जी ससुर जी इतने प्यार से खाना खिलाते हैं।
2: और सबसे बड़ी बात कि यहाँ काम भी नहीं करना पड़ता। अपने यहाँ तो हल चलाओ, फसल काटो, खेत सींचो और घर लौट कर वही टिक्का खाओ।
1: या तो बड़ा मजा है, बड़ा मजा। सच बताऊं, मेरा तो मन ही नहीं करता यहाँ से जाने को।
3: और भैया इरादा मेरा भी नहीं करता,
1: मेरा भी नहीं करता।
0: दो चार दिन यूं ही बीते। फिर एक दिन कलावती ने सुबह खाना ही नहीं पकाया, रात की ही बासी पूरियां और सब्जी परोस दी किशनलाल, श्यामलाल और हीरालाल के सामने।
3: आओ हम बैठे खाना खाएं। अरे आज ये क्या हुआ?
2: अरे क्या हुआ भाई? ठीक तो है सब?
3: अरे ठीक तो है। देखो ना, देखो ये कद्दू की सब्जी, ये पालक का साग, ये तो रात की बची है, और ये ये पूरिया भी वही है, रात की बासी।
2: अरे भैया अपने आराम तो लक्का हजम पत्थर हजम है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
1: सच बताऊं, मुझे तो बासी पूरिया बहुत अच्छी लगती है भैया, बस साथ में आलू की भुजिया हो और आम का अचार, पर कद्दू की सब्जी भी पूरी नहीं है।
3: नहीं भैया हीरालाल, नहीं अब और रुकना ठीक नहीं है, मैं तो दोपहर को ही अपने घर निकल चलूंगा। हाँ और सुनो, तुम दोनों भी भला चाहो ना तो तुम भी निकल चलो। हाँ
2: अरे भैया बासी पूरी सब्जी से घबरा गए, अपने राम तो अभी यही डटेंगे क्यों हीरालाल?
1: ठीक है श्यामलाल भैया, मैं तो कहीं नहीं जाने वाला।
3: ठीक है तुम लोग यहीं रहो, मैं तो चला।
1: अच्छा
0: तेल में खाना पका तो रामलाल गया, बासी खाना परोसा गया तो किशनलाल विदा हुआ। अब देखें हीरा लाल और श्यामलाल का क्या हुआ।
4: अरे हीरा लाल
3: जी अम्मा,
4: अरे हीरा लाल आज मैंने बड़ा बुरा सपना देखा बेटे।
1: क्या देखा अम्मा जी आपने?
4: अरे भैया मैंने देखा कि तुम्हारी अम्मा बहुत बीमार है।
1: अम्मा बीमार है?
4: ब्याज जी कह रहे हैं, अब क्या बताऊं, क्या इनका बचना ही मुश्किल है।
3: किस समय देखा तुमने ये मनुष्य सपना?
4: अच्छी अब क्या बताऊं, सपना देखते ही मेरी आँख खुली और चिड़िया चहचहाई।
3: बाप रे, यानी कि भोर का सपना।
4: हाँ भोर का सपना था।
3: राशि मीन, रुद्र, धन, शुक्र, भोर। ये तो सच्चा लगता है।
4: क्या कहूँ जी, मेरे सपने तो बड़े सच्चे होते हैं। याद है जब बच्चों की नानी मरी थी, मुझे चार दिन पहले ही सपना आ गया था।
3: अरे हाँ याद आया, मेरी भी आँख कल से फड़क रही है। बेटा हीरा लाल
1: जी, सदूर जी
3: कैसे कहूँ, अपने मुँह से तो कहा भी नहीं जाता, पर कहना ही पड़ेगा बेटा।
4: बेटे
3: मेरे ख्याल से तो तुम घर जाओ।
4: हाँ बेटा तुम घर जाओ,
3: अगर तुम्हारी अम्मा को कुछ हो गया तो।
1: मन तो नहीं कर रहा पर जाना ही पड़ेगा ससुर जी।
4: जाना ही पड़ेगा।
1: अम्मा जी
4: बेटे,
1: क्या आपके सपने हमेशा सच निकलते
3: हैं? एकदम सच। अरे अपनी सास के सपनों की ना पूछो। देखो बेटा अब देर न करो, जल्दी जाओ।
0: रामलाल गया, किशनलाल विदा हुआ, हीरा लाल भी रवाना कर दिया गया, पर श्यामलाल, श्यामलाल दूसरी ही मिट्टी का बना था, वो तो जमा ही रहा।
4: जी सुनो जी, इन तीनों से तो छुटकारा मिला।
3: लेकिन ये श्यामलाल तो बड़ा ही बेशर्म है जी।
4: हाँ देखो ना, बाकी तीनों तो चले गए पर ये जाने का नाम नहीं ले रहा।
3: जाए भी क्यों, डट कर खाता और लंबी तान कर सोता है।
4: अजीब बेहया है, काम का नकाज का, ढाई मन अनाज का, इसका तो जी एक ही इलाज है।
3: क्या भला, मैं भी तो सुनूं।
4: इसे तो गर्दन से पकड़ कर बाहर कर दो।
3: ठीक कहती हो, खुद तो ये जाएगा नहीं, मैं ही इसे बाहर निकालूंगा।
4: अरे दामाद ना हुआ बला हो गया, अब की बार जान छुड़ाऊं फिर तो इसे कभी नहीं बुलाऊंगी।
3: ठीक है मैं देखता हूँ इसे।
4: और क्या,
3: ये आप क्या कर रहे हैं ससुर जी? अरे मेरी गर्दन क्यों पकड़ रहे हैं जी? आप ये भूल रहे हैं जी कि मैं आपका दामाद हूँ। श्यामलाल आपने मुझे निमंत्रण दिया था जी, तभी तो मैं यहाँ आया जी।
2: तो क्या तुम कभी न जाने के लिए आए थे? एक महीना हो गया जाने का नाम ही नहीं, अब तो मैं तुम्हें निकाल कर ही जाऊंगा। चल चल
3: खाना तो खिला दो।
0: आखिर श्यामलाल भी गया, लेकिन धक्के खाकर। लेकिन क्या करें, भाई दो दिन मेहमान, तीसरे दिन शैतान, चौथे दिन मुसीबत। और मुसीबत को तो घर से बाहर करना ही पड़ेगा, और वो भी गर्दन पकड़कर। क्यों?
6: दामादों की मेहमानी। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख मधु बी जोशी, विषय संयोजन ममता गुप्ता, कलाकार कुक्कू माथुर, सोमनाथ नागर, मनोज प्रभाकर, दिनेश वर्मा, बी आर एल सक्सेना, कमला कुमारी चोपड़ा और जैमिनी कुमार वीरेंद्र। ध्वनियांकन सतीश लाड़े। निर्माण सहयोग वंदना निगम। निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा तथा परियोजना निर्देशन डॉक्टर एल जी सुमित्रा।

0: बीवी न छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं। कहीं आपको बिगड़ी हुई टीवी यानी MDR टीवी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: महावारी के दौरान क्या करें और क्या ना करें। महावारी के दौरान एक ही पैड का लंबे समय तक बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए।
3: आप किसी भी ब्रांड के सैनिटरी पैड का उपयोग कर सकते हैं। महावारी के समय दिन भर में कम से कम 2 से 3 बार सैनिटरी पैड को बदलना चाहिए। पैड को ज्यादा गीले होने पर वो फट सकता है, जिससे सैनिटरी पैड में मौजूद हानिकारक रसायन आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
2: याद रखें, महावारी के दौरान स्वच्छता का महत्व और बढ़ जाता है। गंदे, मलिन, अस्वच्छ हाथों से सैनिटरी पैड बदलने से हेपेटाइटिस बी जैसे वायरस और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।
3: कभी कभी योनि पर पानी का अत्यधिक छिड़काव उसे बैक्टीरिया के संपर्क में ला सकता है। योनि एक ऐसा अंग है जो खुद को स्वयं साफ कर सकता है, इसलिए उसे ऐसे ही छोड़ दें।
2: असुरक्षित यौन संबंध अपने आप में बहुत जोखिम भरा है और ऐसे में रक्त स्राव का मिलना और जोखिम भरा हो जाता है। महावारी के दौरान यदि महिलाएं असुरक्षित यौन संबंध बनाती हैं तो यौन जनित रोग हेपेटाइटिस बी और HIV का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।
3: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
2: ये खास जानकारी आप सुन रहे थे सुनो शारदा 90.8 FM पर यूनिसेफ के सहयोग से।
4: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

धरती मेरी धरती प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की कड़ी। कौन करता काम? श्रोताओं, हवाओं और पानी का चक्र जीवन को अपने विभिन्न रूपों में बनाए रखने के लिए बेहद आवश्यक है। कैसे हवा अपना काम करती है और महासागर अपना, कैसे धरती में ऊष्मा का संचरण होता है, क्या धरती वाकई में एक चुंबक है, इन्हीं सब विषयों में उलझे मानव के सवालों का जवाब देगी हमारी आज की कड़ी। शीर्षक है

0: मानव मानव
1: जी भैया,
0: मानव जरा पानी देना।
1: अभी ना है भैया।
2: सृष्टि, पापा विनोद अंकल को लेकर कब तक आने को कह गए हैं?
3: 8 बजे की ट्रेन थी, 9 बजे तक आ जाना चाहिए। अब ये विनोद अंकल कौन है? अरे विनोद अंकल पापा के बचपन के दोस्त हैं। आज रात को कोई लेक्चर देने विदेश जा रहे हैं, इसलिए दिल्ली आ रहे हैं और रात की फ्लाइट से जाएंगे। पर वो विदेश में क्यों लेक्चर देंगे?
2: अरे मानव, हमारे विनोद अंकल राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्था गोवा में वैज्ञानिक हैं और आजकल महासागरों के बढ़ते तापमान का धरती पर क्या प्रभाव है इस पर काम कर रहे हैं।
3: तो फिर वो बाहर क्यों जा रहे हैं?
2: अरे भाई, अपने काम को पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों से बांटने जा रहे हैं। कुछ उन्हें बताएंगे और कुछ उनसे जानेंगे।
3: अच्छा,
2: एक मिनट मानव, मैंने तुझसे पानी मांगा था, तू लाए नहीं अभी तक।
3: वो मैं तो भूल ही गया भैया, अभी अभी अभी लेके आया। भूल गया क्या भैया? ये मानव घर का कुछ भी काम नहीं करता।
1: ठीक कहा सृष्टि, इसे कब से कह रही हूँ, जरा दुकान से जाकर चीनी लेकर आ, मेहमान आ रहे हैं। पर ये है कि टालता ही जा रहा है। ले विवे पानी
2: लाओ। पर मम्मी, ये बात बहुत गलत है। मैंने मानव को पानी लाने को कहा था, आप क्यों ले आई? आप ही इसे बिगाड़ रहे हो, घर का कोई काम नहीं करता ये।
1: अरे कोई आया है।
3: अरे लगता है पापा आ गए।
1: हाँ देखो बेटा,
2: मम्मी एक काम नहीं करता।
4: अरे आंटी आप,
1: अरे छोड़ दो बेटा।
4: मम्मी मल्होत्रा आंटी आई है।
1: ओ अरे भाभी जी आई आई है।
5: वसुधा थोड़ी चीनी चाहिए थी।
1: लो आप बैठिए ना। मैं विवेक, ए विवेक बेटा जरा जाके चीनी तो लेकर आना फटाफट।
5: ओए वसुधा, घर में नहीं है तुम रहने दो, मुझे तो बस थोड़ी सी चाय के लिए चाहिए थी। ठीक है, मैं मिसेस गुप्ता के यहाँ से ले लेती हूँ।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, ये सामने तो दुकान है, विवेक जाएगा फट से ले आएगा। विवेक जा रही अब।
2: जा रहा हूँ ना मम्मी।
3: हाँ हाँ विवेक भैया ले आएंगे, पर ये मानव नहीं लाएगा, कुछ काम नहीं करता ये।
5: ओए अभी बच्चा है पुत्र, बड़ा होके तो काम करना ही है ना।
3: नहीं आंटी, ये तो घर पर पानी भी खुद नहीं लेता, बड़ा होगा तो सभी को परेशान करेगा। काम की आदत तो बचपन से ही होनी चाहिए।
5: ओए ये बात भी ठीक कही पुत्र, और वैसे भी घर के छोटे मोटे काम तो सभी को करने चाहिए।
1: ठीक ही कहा आपने मिसेस मल्होत्रा, पर मानव है कि सुनता ही तो नहीं।
3: पर ये मानव अब गया कहाँ?
6: मैं यहाँ हूँ दीदी, आपकी बातें सुन रहा हूँ।
1: अरे सुन रहा है या कुछ सीख भी रहा है?
2: मम्मी
1: हाँ,
2: ये लो चीनी।
1: ला बेटा।
5: वसुधा
1: हाँ?
5: तुम्हारे घर कोई आ रहा है क्या?
1: हाँ इनके दोस्त है ना विनोद जी, वो आ रहे हैं, वैज्ञानिक हैं वो। लीजिए मिसेस मल्होत्रा, ये लीजिए एक कटोरी चीनी। अरे शायद आ भी गए, देखती हूँ।
7: नमस्ते भाई साहब, आइए
8: ना। नमस्ते भाभी।
1: नमस्कार
9: सूर्य प्रकाश। भाई ये तो विवेक है।
10: हाँ, ये बड़ा वाला है। हाँ,
9: और ये सृष्टि है,
10: ये भी है।
9: और ये छुटकू सा मानव है।
10: विनोद तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। और ये हमारी पड़ोसन मिसेस मल्होत्रा।
5: भाई नमस्ते जी।
9: जी नमस्ते।
5: बस चीनी लेने आई थी, चलती हूँ।
1: अरे मिसेस मल्होत्रा बैठिए ना, चाय बस तैयार है।
9: हाँ वसुधा भाभी, चाय की सच में जरूरत है।
10: सही बात है, बहुत अच्छा।
1: मानव जरा पापा और अंकल को पानी तो दे दो।
3: अरे मम्मी मानव कहाँ लाएगा, मैं लाती हूँ।
9: अरे मानव जाओ ना बेटे, मम्मी की मदद करो ना जाकर।
3: जी अंकल।
2: अंकल आपका लेक्चर गर्म होते महासागरों पर है ना?
9: हाँ विवेक बेटा, असल में कॉन्फ्रेंस पूरी गर्माती धरती को ही लेकर है।
5: ओ जी, ये सब गर्म और ठंडा कैसे हो जाता है?
9: देखिए भाभी जी, इसमें कई सारे बल मिलकर काम करते हैं। महासागर, वायुमंडल, भूमि, इन सब में ऊष्मा का संचरण एक बहुत ही रोचक विषय है।
1: लीजिए भाई साहब, बातें तो चलती रहेंगी, चाय और बिस्किट।
9: अरे वाह,
1: नमकीन लाना तो मैं भूल ही गई। मानव
3: जी
1: जरा जाके अंदर से नमकीन लेकर आए फटाफट। जा
3: ठीक, मैं लाती हूँ मम्मी।
9: भाई मानव जी, लोग आपको काम के लिए कहते हैं और उसे पूरा आपकी सृष्टि दीदी करती हैं, ऐसा क्यों है भाई, ये बताओ।
3: नहीं अंकल, वो ऐसा नहीं है।
9: देखो मानव, जैसा अभी मल्होत्रा भाभी पूछ रही थी कि ये धरती में अलग अलग मौसम, जलवायु, गर्मी सर्दी, ये सब कैसे होता है, तो ये तुम जानोगे?
3: हाँ हाँ हाँ अंकल जरूर। वैसे आपने कहा था कि कई सारे बल काम करते हैं।
9: हाँ बेटा, और ये बल लगातार काम करते हैं जिस कारण इस धरती पर जीवन बसता है।
3: लीजिए अंकल नमकीन।
9: शुक्रिया बेटा। अब मैं अकेला ही थोड़ी खाऊंगा सूर्य प्रकाश।
3: विवेक भैया मुझे भी दो ना थोड़ा सा। खाइए ना आंटी।
10: खाने के मामले में तो
9: सूर्य प्रकाश बच्चों को ऐसा नहीं कहा।
10: अरे नहीं ये तो देख रहे हो कितना मोटा हो रहा।
9: अरे चाय पीजिए ना।
3: अरे बाबू जी आप भी लीजिए ना।
5: हाँ लेते हो।
9: हाँ तो मिसेस मल्होत्रा जी देखिए, सब जानते ही हैं कि सूरज से आने वाली ऊष्मा ही महासागरों वायुमंडल भूमि आदि में गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत है।
3: हाँ अंकल ये तो हमें भी लगता है क्या मानव ऐसा ही है।
9: ठीक कहा सृष्टि। अच्छा पर क्या तुम बता सकती हो कि सूरज से आने वाली ऊष्मा किस किस प्रकार से महासागर और वायुमंडल में हस्तांतरित होती है।
3: अंकल मुझे थोड़ा बहुत पता है पर आप बताइए ना ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा।
2: वैसे अंकल मैं बताता हूँ। मेरे हिसाब से ऊर्जा हस्तांतरण के तीन तरीके हैं। पहला रेडिएशन यानी विकिरण, दूसरा कंडक्शन यानी चालन, और तीसरा कन्वेक्शन यानी संवहन।
10: हाँ, इसी बात पे तो एक बिस्किट और ले लेना।
9: अच्छा सूर्य प्रकाश अगर मैं अच्छी बात बताऊंगा तो मुझे चाय पीने के लिए कहोगे। वैसे एक बात कहूं कि विवेक ने बहुत सही बात कही है। तुमने बिल्कुल ठीक बताया। शाबाश शाबाश।
5: हो जी हमारी कॉलोनी का सबसे होशियार लड़का है विवेक
3: पुत्र। क्या बात है
9: जी। तो रेडिएशन यानी विकिरण के कारण ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड तक विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा पहुंचती है।
2: मानव पता है माइक्रोवेव ओवन में जो खाना गर्म होता है वो इन्हीं विद्युत चुंबकीय तरंगों यानी माइक्रोवेव द्वारा ही होता है, पता है तुझे?
3: अच्छा तभी बड़ी जल्दी खाना गर्म हो जाता है।
10: और तुम जल्दी से खा भी सकते हो। और मानव ये जो तुम रिमोट से टीवी पर चैनल बदलते रहते हो वो सब भी इन्हीं विद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण ही होता है।
3: और पापा ये रेडियो बिना तार का फोन ये सब भी तो इन्हीं तरंगों से चलते हैं ना। यानी ये धरती भी सूरज से आने वाली इन्हीं विद्युत चुंबकीय तरंगों से ही गर्म होती है ना अंकल?
9: हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बेटा। असल में सूरज जैसे गर्म पिंड विकिरण अधिक तीव्रता से उत्सर्जित करते हैं और ज्यादातर ये छोटी तरंग दैर्ध्य वाली ही तरंगें होती हैं। और जब ये तरंगें ठंडी धरती से टकराती हैं तो धरती लंबी तरंग दैर्ध्य की तरंगें वापस भेजती है।
10: हाँ, यानी धरती तीव्र ऊर्जा वाली तरंगें सोख कर हल्की तरंगें वापस छोड़ती है। एग्जैक्टली विनोद ना?
9: कुछ कुछ ऐसा ही है सूर्य प्रकाश।
10: ऐसा ही है।
3: अंकल कंडक्शन की प्रक्रिया तो तब होती है ना जब कोई गर्म पिंड किसी ठंडे पिंड के संपर्क में आता है। जैसे मम्मी गर्म कुकर को स्टील के स्टैंड पर रखती है तो वो भी गर्म हो जाता है।
9: बहुत बढ़िया सृष्टि, तुम तो बहुत कुछ जानती हो बेटा। देखो तुम करते हो पता है तुम्हारी बेटी है।
10: थैंक यू यार।
9: देखो बेटा कंडक्शन में तापन की दर यानी गर्म करने की दर तापमान के अंतर के अनुसार बढ़ती जाती है। मतलब जितना तापमान में अंतर उतना ही ऊष्मा का हस्तांतरण।
2: अब अंकल ये तापन की दर पदार्थ के प्रकार से भी प्रभावित होती है ना?
9: हाँ बेटा, अब जैसे धातुओं में कंडक्शन अन्य पदार्थ जैसे लकड़ी सख्त प्लास्टिक आदि की तुलना में तीव्र होता है। यानी कुछ पदार्थ बढ़िया कंडक्टर होते हैं तो कुछ बुरे होते हैं।
3: हाँ जैसे हवा ताप का एक बुरा कंडक्टर है।
9: बिल्कुल सही सृष्टि।
3: पर अंकल फिर हवा में ऊष्मा कैसे आती जाती
2: है? मानव इसमें काम आती है तीसरी प्रक्रिया यानी कन्वेक्शन, मतलब संवहन।
3: अरे मानव संवहन इस्लाम अंकल ने बताया भी था तो भूल गया। नहीं नहीं दीदी मुझे याद है।
5: ओए तो पुत्र विनोद अंकल को भी तो बताओ ना।
3: जी अंकल कन्वेक्शन यानी संवहन में पानी या हवा गर्म कर ऊपर उठती है और उसकी जगह ठंडा पानी या ठंडी हवा ले लेती है।
9: अच्छा तो तुम्हें प्रोफेसर शम्सुल इस्लाम पढ़ा कर गए हैं। वैसे शाबाश बेटा सही कहा तुमने। संवहन प्रक्रिया द्रव्य और गैसों में देखी जाती है। इस प्रक्रिया में तरल पदार्थ और गैस जब गर्म होते हैं ना तो वहां से उनकी सघनता कम हो जाती है।
3: हाँ जैसे भूमध्य रेखा पर सूरज की गर्मी से होता है।
9: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। फिर ये गर्म तरल पदार्थ ऊपर उठता है और उसकी जगह ठंडा तरल ले लेता है। बस यही प्रक्रिया चलती रहती है और उसी से बनता है महासागरों और वायुमंडल का संचरण।
3: हाँ अंकल, ये तो हमें भी पता है कि भूमध्य रेखा से महासागरों का पानी और हवाएं गर्म होकर ठंडे ध्रुवीय प्रदेशों की ओर जाती है।
9: वाह वाह बेटा मानव, बहुत बढ़िया, तुम्हें भी काफी कुछ पता है। वैसे मिसेस मल्होत्रा,
0: हाँ जी,
9: आप मानव के बारे में नहीं कहेंगे जो आप विवेक के बारे में कुछ कह रही थी?
5: ओ जी, ये भी हमारे कॉलोनी का सबसे होशियार पुत्र है।
9: वैसे मानव बेटा
3: जी,
9: तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगता है कि तुम्हें पृथ्वी की प्रकृति के परिवार के इन छोटे बड़े बलों के बारे में पता है। ये रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन आदि सब इस प्रकृति के परिवार के सदस्य हैं, जो लगातार काम करते रहते हैं और कभी भी काम से जी नहीं चुराते। हाँ।
1: और अगर ये काम से जी चुरा लें तो हमारा जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा। हाँ
10: बिल्कुल। हाय हाय हाय वसुधा, क्या बात कही है तुमने। आई एम सो प्राउड ऑफ यू।
9: वैसे यहाँ पर मैं एक बात कहूंगा, बच्चे तो बच्चे मारे माँ।
5: ओ जी, मैं चलती हूँ। असल में मैं भी अपने परिवार की एक सदस्य हूँ।
10: अच्छा,
5: उसी परिवार का बल हूँ। मेरे बगैर वो हैप्पी के पापा है ना जी, चाय के लिए तरस रहे होंगे।
10: ओके, हाँ।
5: मैं भी जाके अपना काम करती हूँ जी। नमस्ते।
10: नमस्ते, नमस्ते।
9: ये अचानक,
10: कोई बात नहीं विनोद, तुम्हारे इस लेक्चर से किसी को अपना परिवार और अपनी जिम्मेदारी याद तो आई।
9: ये क्या तुम लोग
1: कुछ भी बोलते हैं।
9: अच्छा सूर्य प्रकाश, ये छोटे बड़े बल जो किसी ना किसी प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाते हैं, जिससे जीवन चलता रहता है, ये एक परिवार की तरह ही तो कार्य करते हैं, जिससे इस नीले ग्रह पर जीवन चलता रहता है।
10: हाँ बिल्कुल सही बोल रहे।
3: पर अंकल, इससे जीवन कैसे चलता है?
2: अरे मानव, महासागरों का चक्र, हवाओं का चक्र, जो पोषक तत्व इधर से उधर पहुंचाते हैं, धरती पर वर्षा, हिमपात, जलवायु और मौसम बनाता है।
3: ओ।
2: वो इन बलों के कारण ही तो संभव है।
9: हाँ भाई, ये बल चाहे कन्वेक्शन हो, कंडक्शन हो या रेडिएशन हो, ये सब जो ऊर्जा यहाँ से वहां ले जाते हैं, इसी से तो धरती पर जीवन बना रहता है।
2: इन प्रक्रियाओं के कारण ही तो ये नीला ग्रह जीवन भरा ग्रह है। एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा का स्थानांतरण, सभी मौसमी चक्रों, जलवायु चक्रों आदि को ताकत देने वाले इंजन, ये सभी प्रक्रियाएं ही तो हैं।
3: भैया, सभी प्रक्रियाएं हैं या बल?
8: बल क्या है? ताकत, एक ऐसी ताकत जो इन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनती है।
9: शाबाश सृष्टि। हाँ, और इन सभी प्रक्रियाओं से दाब में फर्क आता है, सघनता में फर्क आता है,

0: कारण पूरा तंत्र गतिमान रहता है।
1: बिल्कुल
2: सच में ये सारी बातें कमाल की
0: होते हैं।
3: अंकल ये सूरज की किरणें जब धरती से टकराती हैं तो रास्ते में भी तो कुछ ऊष्मा खोती है ना।
0: बेटा तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर वायुमंडल कुछ ऊष्मा ना सोखे या वापस ना भेजे तो ये धरती तो तप कर भट्टी जैसी हो जाएगी।
1: पर अंकल सूरज की किरणों से वायुमंडल ज्यादा घन तो नहीं होता।
0: हाँ विवेक, पर ज्यादातर पराबैंगनी किरणें ऊपरी परतों द्वारा सोख ली जाती हैं और उन्हें ऊष्मा में बदल दिया जाता है।
3: ये ज्यादातर ओजोन की परत में होता है।
0: बिल्कुल ठीक, असल में वायुमंडल की अलग अलग परतें होती हैं, कुछ गर्म होती हैं तो कुछ नहीं। ज्यादातर ऊष्मा वायुमंडल की नीचे की परतों में बादलों और जल वाष्प द्वारा सोखी जाती हैं। इसके साथ साथ इन किरणों का अधिकतम बिखराव निचले और ज्यादा सघन वायुमंडल में होता है जहाँ ज्यादा धूल और जल वाष्प होता है।
1: और इन्हीं में से कुछ बिखरी तरंगें धरती की ओर मुड़ जाती है ना अंकल।
0: हाँ विवेक, पर ज्यादातर अंतरिक्ष में ही खो जाती हैं।
1: अच्छा,
0: अंतरिक्ष से जो धरती की तस्वीरें ली गई हैं उनसे पता चला है कि किसी भी पल धरती की आधी सतह बादलों से ढकी रहती है।
1: यानी कुछ मात्रा में आने वाली ऊर्जा को सोखने के साथ ये बादल काफी मात्रा में ऊर्जा को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर देते हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही समझे तुम, और ये परावर्तित ऊर्जा जो थोड़ी बहुत धरती तक भी पहुंचती है उसे क्लाउड अल्बिडो भी कहते हैं।
1: अच्छा,
0: और जब धरती की सतह से ऊर्जा परावर्तित होकर इसमें जुड़ जाती है तो इसे टोटल प्लैनेटरी अल्बिडो कहा जाता है।
4: भाई विनोद, ये धरती से ऊर्जा का परावर्तन तो बर्फ हिम आदि से ज्यादा होता होगा।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने सूर्य प्रकाश।
3: पर बर्फ या हिम से ऐसा क्यों ज्यादा होता है? अरे मानव, सफेद चीज किरणों को अधिक परावर्तित करती है इसलिए।
2: अच्छा
0: हाँ, परंतु जब सूरज सीधा महासागरों के ऊपर होता है तो ये ऊर्जा का परावर्तन कम होता है।
1: तो अंकल जैसा आपने कहा था कि धरती लंबी तरंग दैर्ध्य किरणों को पुनः परावर्तित करती है, तो पानी और वायुमंडल ज्यादातर विकिरण से ही गर्म होता है।
0: हाँ बेटा विवेक, थोड़ा बहुत कंडक्शन होता है और सतह की कुछ हवाएं कन्वेक्शन से भी ऊपर उठती हैं।
1: अच्छा,
0: परंतु मुख्य प्रक्रिया रेडिएशन यानी विकिरण ही है।
4: हाँ और भाई, ये जो लंबी वेवलेंथ यानी लंबी तरंग दैर्ध्य वाली ताप ऊर्जा होती है इसे वायुमंडल के सबसे निचले हिस्से में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प ग्रहण कर लेती है, इसीलिए तो धरती का तापमान गर्म हो पाता है।
0: बिल्कुल सही कहा सूर्य प्रकाश, संगत का असर कहीं ना कहीं तो पड़ता है। तो जैसा कि सूर्य प्रकाश ने कहा कि हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना वैसे वैसे ठंडक बढ़ती जाती है, क्योंकि ऊष्मा को नीचे का घना कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का वायुमंडल ही सोख लेता है।
1: तो अंकल ऊष्मा ना सिर्फ धरती से वापस जाती है बल्कि दोबारा पलटकर धरती पर ही आती है।
0: हाँ विवेक, और संवहन द्वारा जो सतह से जल के वाष्पन द्वारा ऊर्जा सोखी जाती है वही ऊर्जा ऊंचे स्तर पर जाकर संघनन के रूप में वापस छोड़ दी जाती है।
1: अच्छा,
3: यानी अंक एक संतुलन बना रहता है।
0: हाँ बेटे, टोटल प्लैनेटरी अल्बिडो और धरती से परावर्तित विकिरण की अंतरिक्ष में हानि सूरज की निरंतर आती किरणों से संतुलित हो जाती है।
1: यानी एक ऐसा संतुलन जिसमें निरंतर अंतरिक्ष में होती ऊर्जा की हानि लगातार सूरज की ऊर्जा आपूर्ति से पूरी होती है।
0: हाँ विवेक, और इस संतुलन में महासागर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
3: हाँ, ये महासागर ऊष्मा का भंडारण करते हैं और उसे ठंडे इलाकों तक पहुँचाते हैं, है ना अंकल।
0: अरे वाह मानव, तुम्हें तो काफी जटिल बातें मालूम हैं। सूर्य प्रकाश, अब तुम वो नहीं करोगे जब भी तारीफ करता हूँ तो कुछ ऐसा ही करते हो।
4: नहीं नहीं, वो इसलिए नहीं कहता क्योंकि मैं वसुधा को आते हुए देख रहा हूँ।
0: क्या बात है।
2: चलिए भाई साहब, खाना तैयार हो गया है। सृष्टि आओ बेटे मेरे साथ आके।
3: हाँ जी मम्मी। मम्मी मैं भी आपके साथ आता हूँ।
2: है
3: माना, कहाँ आता हूँ, बर्तन लगाने या खाना खाने? क्या दीदी, जब सभी बल एक परिवार की तरह कार्य कर रहे हैं तो मैं भी तो अपना बल प्रयोग करूँ ना।
2: तो बेटे वही तो पूछा जा रहा है, खाने में या बर्तन लगाने में?
3: अरे मम्मी, पहले बर्तन लगाने में और फिर खाने में।
0: वाह मानव बेटे वाह। अरे भाई, सबके थोड़े बहुत योगदान से ही तो जीवन का पहिया आगे बढ़ता है।
4: चलो भाई चलो विनोद खाना खा लो, आओ विवेक चलो,
0: चलो बढ़े खाने की ओर। भाई हाँ वसुधा भाभी खाना बहुत ही लाजवाब था। खाना वसुधा ने बनाया था, तुमने नहीं।
4: बीवी तो मेरी है ना।
2: आप भी ना, कुछ भी।
3: डीजे अंकल सौ लीजिए। अंकल आपकी बातों का मानव पर कुछ असर तो हुआ है, वरना आज तक इसने सिर्फ सौंफ मांगी है, दी नहीं है।
4: विनोद कितनी सारी प्रक्रियाएं इस धरती पर चलती रहती हैं, कितने बल काम करते हैं, सच में यार कमाल है।
0: हाँ सूर्य प्रकाश ये सब अद्भुत है यार।
3: अंकल धरती का एक महत्वपूर्ण बल भी है जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है।
5: कौन सा बल दीदी?
3: अरे गुरुत्वाकर्षण बल है ना अंकल, इसी के कारण तो पृथ्वी पर वायुमंडल थमा हुआ है।
0: बिल्कुल ठीक कहा सृष्टि, ये धरती इस गुरुत्वाकर्षण बल के साथ साथ एक चुंबक की तरह भी काम करती है।
3: हाँ धरती के भी चुंबक की तरह दो ध्रुव हैं, पर अंकल ये धरती एक बड़ी चुंबक कैसे बनी?
0: मानव वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती के चुंबकीय क्षेत्र बनने की शुरुआत शायद सूरज के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरम्भ हुई होगी, उस समय जब करोड़ों वर्षों पहले ये धरती एक आग का गोला थी।
3: पर करोड़ों वर्षों बाद भी धरती एक विशाल चुंबक की तरह ही तो बर्ताव करती है।
0: मानव तुम्हें धरती की संरचना पता है ना?
3: हाँ अंकल बिल्कुल पता है।
0: तो मानव धरती के केंद्र में जो कोर है वो अत्यधिक तापमान के होते हुए भीषण दाब के कारण ठोस है। अब अगली परत है तरल बाहरी कोर की जो करीब 2200 किलोमीटर चौड़ी है। अब इसके ऊपर कौन सी परत है?
3: मेंटल।
0: शाबाश। तो ये बाहरी कोर ठोस अंदरूनी कोर और मेंटल के बीच में परिसंचरित होता रहता है, यानी घूमता रहता है।
3: अंकल ये परिसंचरित होने वाला तरल बाहरी कोर निकल और लौह का बना होता है ना?
0: हाँ सृष्टि बेटे।
1: अब अंकल ये निकल लौह का मिश्रण तात्विक रूप से तो चुंबक नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी के कोर का तापमान इतना ज्यादा है कि कोई पदार्थ अपना चुंबकत्व नहीं बनाए रख सकता।
0: बिल्कुल ठीक विवेक, असल में धरती का चुंबकीय क्षेत्र इस पिघले मिश्रण में विद्युतीय प्रवाह के उत्पन्न होने से होता है।
5: वो कैसे भाई साहब?
4: अरे वाह आज तो वसुधा को भी बहुत रोचक लग रहा है विषय।
2: आप ना अपनी बातें तो रहने ही दो, किसी विषय में रोचकता बात को समझाने वाले से आती है। हाँ।
0: ये मेरी तारीफ में था कुछ।
3: वाह मम्मी क्या बात बोली है। पापा आपकी बात पर मम्मी का गर्म होना कंडक्शन का उदाहरण है।
0: क्या बात है बेटे। हो सकता है बेटे, पर धरती के अंदर ये पदार्थ कन्वेक्शन प्रवाह के कारण ही परिसंचरण करते हैं, और ये कन्वेक्शन अंदरूनी और बाहरी कोर के तापमान में भिन्नता के कारण होता है।
3: यहाँ अंदर भी कन्वेक्शन प्रक्रिया।
0: अच्छा तुम्हें कोरियोलिस बल पता है?
3: हाँ अंकल, ये बल धरती के अपनी धुरी पर घूमने के कारण हवाओं महासागरों के जल आदि पर प्रभाव डालता है।
0: शाबाश बेटा, तो एक विचार के अनुसार जो कोरियोलिस बल धरती पर भयानक चक्रवात लाता है वो पिघले भारी कोर को रोलर की तरह घुमा देता है।
1: ओहो तो ये घूमता द्रव डायनेमो में तार के कॉइल की तरह काम करता है, अब समझा। फिर परिसंचरण के कारण द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र बनता है।
0: बिल्कुल ठीक समझे विवेक, ये बिल्कुल एक डायनामो की तरह काम करता है।
3: डायनामो जिससे बिजली बनती है वही ना?
1: हाँ सृष्टि बिल्कुल वही। इस धरती की प्रक्रियाएं जितनी बाहर कमाल की हैं उतनी ही अंदर।
4: विनोद चलो भाई तुम आराम कर लो, फिर तुम्हें जाना भी तो है ना।
0: हाँ बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, हालांकि बात करने का मन कर रहा है।
4: हाँ ये सच बात है।
0: चलो ठीक है मैं थोड़ा सा आराम करता हूँ। अच्छा बच्चों
3: अच्छा,
0: थोड़ी देर में मिलते हैं। बहुत ही अच्छा लगा, सच कह रहा हूँ मैं, और इतनी सारी बातें पता हैं इसे मानव को, वाकई बहुत अच्छा
3: लगा। बहुत मजा
4: आया। चलो चलो चलो विनोद अब तुम्हारी फ्लाइट का टाइम होने वाला है।
0: अच्छा ठीक है। अच्छा बच्चों फिर लौट कर मिलते हैं। हाँ
3: जी। अच्छा अंकल नमस्ते और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: थैंक यू सृष्टि बेटा, थैंक यू।
4: विवेक बेटा सामान टैक्सी में रखवा
3: लाइए। अंकल आपका ये बैग मैं उठा लेता हूँ।
0: अरे मानव चलो ठीक है, ये हल्का है, इसे तुम उठा सकते हो।
3: ठीक है।
0: अच्छा वसुधा भाभी नमस्ते।
5: नमस्ते भाई साहब, नमस्ते।
3: मम्मी मानव देखो कैसे सामान रख रहा है।
2: बहुत ही अच्छा है सृष्टि, धरती के इन बलों की जानकारी से हमारे मानव का बुद्धि बल तो बढ़ा कम से कम।

नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।

0: लेकिन दोस्त, अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: जी हाँ, केवल 45 मिनट के रोजाना योग से दिमाग रहता है चुस्त, मन दुरुस्त और शरीर तंदुरुस्त, वो भी बिना किसी खर्चे के। भारत के इस विज्ञान को अब दुनिया भर के लाखों लोगों ने माना है। आप भी योग अपनाइए और अपने परिवार को भी कराइए।
1: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: लिए बैचलर सरप्राइज पार्टी अरेंज किए हैं।
1: सरप्राइज पार्टी?
5: हाँ।
1: हमें पता ही नहीं है।
5: अरे वो सब छोड़ो यार, तुम तो तैयार हो।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।
2: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
3: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: नेड़े होके भी दूरियां रहिंदियां ने, कुछ मोहब्बतां अधूरियां रह के भी पूरियां रहिंदियां ने।
1: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूं रण विजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: अखाड़ा यार लग गया, लगता किसका?
2: वही गैरी, वो अपना दोस्त है यार। सच्ची, चलो मिलने चलिए।
1: अपन चलिए, अखाड़ा शुरू होने वाला भाई।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: आपने को गीत सुना मेरा?
2: सुना है जी।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: आपने को गीत सुना मेरा? सुना है जी।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM. Suno Sharda.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

0: क्या खबर? कमला के घर में चार औरतें चोरी छिपे घुस गईं। कमला जी, कौन थी औरतें?
1: अरे मेरी सहेलियाँ, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज।
0: क्या है राज?
1: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ, और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ, दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में।
2: स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
4: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
5: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना

0: जी हाँ, केवल 45 मिनट के रोजाना योग से दिमाग रहता है चुस्त, मन दुरुस्त और शरीर तंदुरुस्त, वो भी बिना किसी खर्चे के। भारत के इस विज्ञान को अब दुनिया भर के लाखों लोगों ने माना है। आप भी योग अपनाइए और अपने परिवार को भी कराइए।
1: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकलकर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन B की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉनवेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: लेट्स गो क्रेजी।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: मैं तुमसे प्यार नहीं करती, कृपया आप रास्ता देंगे?
2: Please.
1: Thank you.
3: वर्षा जी, कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो.
1: तुम्हें कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे प्यार नहीं करती. अब पता चलेगा बच्चू कौन हूँ मैं.
3: अली का शरारती है. वो तो ऐसे मजा करती है, बहुत प्यार करती है मुझसे.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: ओले ओले ओले। ओ शोनक। हेलो, कौन?
3: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर, आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
4: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
3: जल्द मिलते हैं।
2: हेलो हेलो हेलो,
5: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
6: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: Sarah School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।
6: दो दीवाने शहर में, म्यूजिक प्रोड्यूस्ड एंड अरेंज्ड बाय जैकी वंजारी, सिंगर सोनू निगम एंड ऐश्वर्या भंडारी, लिरिक्स बाय कुमार, म्यूजिक बाय श्रेयस पुराणिक। दो दीवाने शहर में ओनली ऑन सारेगामा, सो लेट्स एंजॉय इट, केवल सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स हैं, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
1: शारदा। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का

उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चले।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है

0: एनिमेशन VFX गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
0: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
0: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: सुबह 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं बताइए। देखिए सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे यानी कि ये 5 जूस। वो कौन कौन से 5 जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए 5 हेल्दी जूस जरूर पिए। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में, तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
1: शारदा। स्मार्ट के सौजन्य से प्रोजेक्ट सेहत सही लाभ कई में आपका स्वागत है। इसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति, प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। यह एक विशेष सामुदायिक रेडियो पहल है जिसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य है समुदाय तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। तो आइए हाथ मिलाएं और सरकार द्वारा की गई इस पहल को सफल बनाएं।
2: नमस्कार श्रोताओं, हमारे साथ है डॉक्टर कालिंदी और जानते हैं हम उनसे कि इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का बचाव कैसे कर सकते हैं।
3: हेलो, मैं हूँ डॉक्टर कालिंदी सूद, सीनियर रेसिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ड्यूरिंग चेंजिंग वेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको थोड़ा स्मार्टली ड्रेस करना है। प्लीज वेयर लेयर्स सो दैट आपको अगर तो ठंड लगती है, यू आर इजिली एबल टू पुट ऑन अ जैकेट। देन स्टे हाइड्रेटेड टू कीप योर स्किन एज वेल एज योर इम्यून सिस्टम हेल्दी। सो प्रॉपर हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। अपने साथ पानी हमेशा कैरी कीजिए। अपनी डाइट का ध्यान दीजिए, इंक्लूड विटामिन सी रिच फ्रूट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शन आर वेरी कॉमन। अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर कीजिए, वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक केयर ऑफ योर स्किन, बिकॉज वेदर कभी भी ड्राई हो सकता है। आपको मॉइस्चराइजर जरूर यूज करना चाहिए ऐसे टाइम में। बाहर जाने से पहले हमेशा सनस्क्रीन यूज करें। अगर आपको कोई सीजनल एलर्जीज हो जाती हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल कि आप एक एयर प्योरीफायर में भी इन्वेस्ट करें अपने घर में। हाइजीन हमेशा मेंटेन करें। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जब आप बाहर होते हैं अपने फेस पे, आईज पे, कहीं पे भी टच ना करें। अपने साथ एक हैंड सैनिटाइजर रखें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेट एडिक्वेट स्लीप। थैंक यू।
2: तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर कालिंदी जिन्होंने हमें बताया कि बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का बचाव कैसे करें।
1: आप सुन रहे थे स्मार्ट के सौजन्य से हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, जिसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति, प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। तो आइए इस मुहिम को सफल बनाए।
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: शिशु के 6 महीने के होने के बाद
2: शिशु का शरीर मांगे उपयुक्त आहार।
1: खाने में 1 चम्मच घी या तेल है जरूरी,
2: जिससे आपके शिशु को मिलेगी ऊर्जा पूरी।
1: गाढ़ा मिलेगा भोजन,
2: तभी मिलेगा शिशु को संपूर्ण पोषण।
3: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय, मैं उरन विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @ 90.8 FM।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा।

0: मात्र 2 से 5 गोलियां ही लेनी पड़ेंगी और बच्चों के लिए पानी में घुलने वाली दवाइयां दी जाती हैं। आप अपना इलाज सहयोगी किसी को भी बना सकते हैं, दोस्त, घर वाले, पड़ोसी या अन्य। तो आइए मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
2: नमस्ते आशा दीदी,
1: सब ठीक बा?
2: साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
1: जी दीदी,
2: जैसे रहुआ कहल रही नी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी, ओकेरा के तुरंत साफ करें, जैसे कि पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे
3: और आसपास कहूँ भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कौनो भी चीज में पानी जमा

0: बस अब ली हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी, मिलके पड़प जा मच्छर बन पर भारी।
1: हाय दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेनी पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली है। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखे, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है। सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।
0: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। ट्वेल्थ पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना।